103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर M नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

अगर शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छाओं को शांत कीजिए। इच्छाएं अनंत और मन की चंचल लहरों की तरह होती है। इन पर नियंत्रण और सही दिशा ही जीवन को सुख और सफलता का आधार बनाती है। आध्यात्मिक चिंतन व सकारात्मक विचारों से आप अपनी इच्छाओं को सही आकार दे सकते हैं, और जिस किसी ने भी अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया वो अपने दुखों पर भी विजय हासिल कर लेता है।

चिंतन के बाद आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज की वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सभी कार्यों को मांगलिक बनाने वाले श्री गणपति जी की इस आराधना से।

महादेव शिव शंकर सभी के प्रिय इष्ट देव है, जो मात्र आपकी सच्ची लगन व सरल भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के भक्ति भाव को देखकर ही उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं।

राम नाम का सुमिरन कर इस संसार रूपी भवसागर से पार पा लेना सबसे सरल व आसान है। राम नाम की मिठास जिसके कानों में भी घुल जाती है उसका कल्याण होना निश्चित ही है।

श्रोता, इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

अभी आपने सुना मानस गान। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारी केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की।

7:10 पर आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम। 7:40 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान सकते हैं। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, दिन में 1 बजे, शाम 5 बजे, शाम 7 बजे, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुने जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे गाने सुहाने कार्यक्रम और 8:45 पर सुना जा सकता है कानून की बात कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:00 आप सुनेंगे गीतांजलि कार्यक्रम। आज का हमारा ये कार्यक्रम रहेगा आपकी फोन कॉल्स पर आधारित। तो इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391 पर। 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। इसके अलावा सुबह 11:00 दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर भी प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। ये प्रादेशिक समाचार रोजाना आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाते हैं। गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर कार्यक्रम और 11:05 पर सुनेगा महक पंजाबी कार्यक्रम। 11:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे सैनिकों के लिए कार्यक्रम और 12:30 का समय रहेगा सुनो सखी कार्यक्रम का। 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आप आनंद ले सकते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों का। हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत होती है शाम 5:10 पर भक्ति संगीत के साथ। 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे युवा मंच कार्यक्रम। 6:05 पर किसान बागवान श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम और मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम सुना जा सकता है 6:30 पर। 7:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे विशेष कार्यक्रम किसान सशक्तिकरण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:00 सुनिएगा सबरस कार्यक्रम और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम, जिसमें आपसे बात होगी संगीतकार JP कौशिक की। 9:30 पर आनंद लीजिए हिमाचली लोकगीतों के कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की का। रात्रि 10:00 आप सुन पाएंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से। हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 में अंग्रेजी में समाचार सुने जा सकते हैं, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इंडोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इंडोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा संपर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चंडीगढ़ नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य सीपीए इत्यस्य भारत क्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मंडल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, संपूर्ण देशस्य पञ्चदश विधानमंडलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:45 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केंद्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमंत्रिणः शुभेंदु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्ण पदके 2 कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर M. नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव पर बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जोरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।

0: final to win the French Open crowd at Roland Garros. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी।
2: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल श्रोताओं। ट्यून इन है आप इस वक्त 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर, फ्रिक्वेंसी वही जहां हम आपको एंटरटेन करने के लिए लेकर आते हैं खूब सारी जानकारियां और साथ ही साथ आपके लिए प्ले करते हैं कुछ प्यारे प्यारे से गीत। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी सुनने वालों का प्रोग्राम सुबह सुहानी में। जी हाँ श्रोताओं, जब ठंडी ठंडी हवा के झोंके आपको महकाते चले जाएं तो समझो सुबह सुहानी है। जब चिड़ियों के चहचहाने की मीठी सी आवाज़ कानों में पड़ जाए तो समझो सुबह सुहानी है। जब आपका दिल खुशी से झूमता हुआ कुछ गुनगुनाए तो समझो आपकी सुबह सचमुच ही सुहानी है। जब ये दिल प्रकृति के आगे सजदा करने लगे तो मानो आपकी सुबह सुहानी हो गई है। चलिए तो आपकी इस सुबह को और भी खुशनुमा और खूबसूरत बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप दिल से यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनिए सुबह सुहानी कार्यक्रम।

जी हाँ श्रोता, सुबह सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात करते हैं आज विशेष की। श्रोता, हर दिन कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ खास बातें आप सभी के लिए लेकर आता है, और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमेशा के लिए दर्ज हुई है इतिहास के पन्नों पर। तो चलिए बात करते हैं ऐसी ही घटनाओं की। आपको बता दें कि 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। रेडियो तब से ही अपनी स्थापना से लेकर श्रोताओं को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता चला आ रहा है। वहीं 8 जून 1948 में भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू करने वाला ये दिन साबित हुआ। वर्ष 1997 की अगर हम बात करें तो पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के महेश भूपति ने मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा था। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में मशहूर अभिनेता, पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक और कवि हबीब तनवीर का निधन हुआ था। वहीं बात करें आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो आपको बता दें 8 जून 1996 में भारतीय एथलीट एमपी जबीर का जन्म हुआ। वहीं 8 जून 1957 में मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का जन्म हुआ। 8 जून के दिन ही अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्म भी हुआ, जिन्होंने थ्रिलर मूवी बाजीगर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। तो कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आप सभी को सुनवा रहे हैं शिल्पा शेट्टी के पर निर्देशित, निर्माता निर्देशित और जो है वो फिल्माया गया मेट्रो फिल्म से ये गीत। आप कार्यक्रम में यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए

जी हाँ, कुछ मीठी मीठी सी अनकही बातें हम कह देते हैं हर रोज सुबह सुहानी प्रोग्राम में अपने सुनने वालों से। चलिए श्रोता, सुबह सुहानी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व महासागर दिवस की। श्रोता, आज हम मना रहे हैं विश्व महासागर दिवस। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में रखा गया था। इसे वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई और तभी से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा इसे मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना है कि महासागर हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण है। ये हमारी सांस के लिए ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। न ये केवल हमें जलवायु नियंत्रित करते हैं बल्कि हमें भोजन भी प्रदान करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि समुद्रों में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करना हम सभी का कर्तव्य है। श्रोताओ, हम सभी को महासागरों में रहने वाले जीवों, कोरल रीफ और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का ध्यान रखना भी जरूरी है। जब हमारी प्रकृति

जी हाँ, बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी कार्यक्रम। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट करवाते हैं आज की कुछ ताजा तरीन न्यूज हलचलों से। भारत इंडोनेशिया ने रक्षा व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर जो है वो चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई प्रदान की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई प्रदान की। आपको बता दें कि सैफ महिला चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। वहीं बात करें कुछ प्रदेश की हलचलों पर तो आपको बता दें कि आज से शिमला समर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा प्रतिष्ठित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो हर साल गर्मियों के शुरुआत में जून महीने में ऐतिहासिक रिज मैदान पर यानी कि माल रोड पर आयोजित किया जाता है। इस बार ये आयोजन 8 जून से लेकर 12 जून तक चलने वाला है। 5 दिवसीय उत्सव में हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख जो है वो इसमें माध्यम रहेंगे और इसमें कई तरह के आकर्षण शामिल रहेंगे। आपको बताते चले कि प्रसिद्ध बॉलीवुड, पंजाबी और कई हिमाचली गायक कलाकारों द्वारा इस प्रोग्राम में जो है वो लाइव प्रस्तुतियां दी जाएगी। स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटी का आयोजन किया जाएगा जिसमें कि पारंपरिक लोक नृत्य प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही आप यहां पर हिमाचली व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको रुख करना होगा समर फेस्टिवल की तरफ। फिलहाल सुनते हैं ये गीत और आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह सुहानी प्रोग्राम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, सुबह सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और देखिए, समय हमारी स्टूडियो की घड़ी दिखा रही है, ठीक 7:37 हो चुके हैं और ये जो है वो इशारा इस ओर है कि अब कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते चलते आपको मौसम का हाल भी बता देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ सुथरा और शुष्क बने रहने की संभावना है। दिन भर दिली जो धूप खिली खिली रहेगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना दर्ज की गई है। ऐसे में मौसम थोड़ा सा गर्म रहने के आसार है, लेकिन आप घबराइए मत, शाम तक हल्की हल्की बारिश की बौछारें होने की भी उम्मीद मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। आप आकाशवाणी धर्मशाला के साथ ही यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि यहां से हम आपके लिए प्यारे प्यारे से गीतों की बौछार तो यूं ही करते जाएंगे। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला 103.4 MHz पर।

श्रोता, इसी के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं शांति बिश और कमलेश शर्मा की आवाजों में गाए इस लोक गीत के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa. हिमाचली संस्कृति से रूबरू करवाता हुआ कार्यक्रम शुभ ब्याग इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आइए सुनिए विनय अवरोल की आवाज में।

0: दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में संवाद बहुत जरूरी है और यही कोशिश करता है आपका अपना आकाशवाणी धर्मशाला का परिवार।
1: जी श्रोताओ, चैटिंग और मैसेजिंग की इस दुनिया में आकाशवाणी धर्मशाला आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मंच जहां जुड़ती है आम जनता की आवाज, उनके विचार, उनके सुझाव और उनकी उम्मीदें।
0: आपकी इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी, जहां हर राय मायने रखती है, हर आवाज गूंजती है।
1: साथियों, जनवाणी सशक्त माध्यम है आपके और हमारे बीच संवाद का, जिसमें आप फोन कॉल्स के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं।
0: क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है, तो आइए मिलकर अपनी बातें साझा करते हैं कार्यक्रम जनवाणी में, हर शुक्रवार सुबह 9 बजे FM धर्मशाला पर।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just Rs. 399 per month. Also, get amazing benefits.

0: It's up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry! Offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: श्रोता, इसी के साथ आज का शुभ ब्याह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
5: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
4: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
7: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
8: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
4: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
9: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
10: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
9: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
11: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
9: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
12: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है।

0: ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुनो सखी,
1: क्या सुनना है,
2: क्या सुनाना है।
1: सोमवार को हिमाचली संस्कृति की बात हम करेंगे, जिसमें रंग बिरंगे रंगों में ढलेंगे।
3: मंगलवार को फोन इन महिला महफिल सजेगी, जिसमें बात करने के लिए सखियां स्टूडियोज में कॉल करेंगी।
4: ग्लैमर गलियारा होगा बुधवार का दिन हमारा, जिसमें दिखेगा खूबसूरती का नजारा।
3: जब वीरवार को होगी मिंजरा में बात, पहाड़ी झलक और मिट्टी की महक होगी साथ।
5: शुक्रवार को होगा कार्यक्रम उड़ान, जहां महिलाएं बनाएंगी अपनी खास पहचान।
4: आएगा दिन शनिवार, उसमें झलकेगा माँ बेटी का प्यार।
1: रविवार को होगा बच्चों का संग, जिसमें सजेगा बाल सभा का रंग।
0: सुना सखी, सब सुना सखी।
6: हाँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: गानी सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, कई बार कुछ ऐसे गीत बन जाते हैं जो हमें अपने अलग अंदाज से कभी हंसाते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, तो कभी उन्हें सुनकर हम बेवजह ही मुस्कुराने लगते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में, बॉबे फिल्म से।

0: खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता, इसी के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: कानून की बात कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नालसा एसिड हमला पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 विषय पर न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर श्री कुलदीप शर्मा से अनुज कुमार की बातचीत। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुन सकते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कानून की बात। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं माननीय न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर के

0: सचिव श्री कुलदीप शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है माननीय न्यायाधीश महोदय आकाशवाणी हमीरपुर के स्टूडियोज में।
1: धन्यवाद अनुज जी।
0: जी श्रोताओं, आज का हमारा विषय है नालसा एसिड हमलों के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016। कुलदीप जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि योजना की पृष्ठभूमि क्या है।
1: अनुज जी, एसिड अटैक एक ऐसा क्रूर अपराध है जो पीड़ितों को न केवल शारीरिक रूप से विकृत करता है बल्कि समाज में उनके अस्तित्व और आर्थिक स्वतंत्रता को भी गहरी चोट पहुंचाता है। पहले यह देखा जाता था कि ऐसे मामलों में पीड़ित को तुरंत उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिलती थी या फिर आर्थिक तंगी या जानकारी के अभाव के कारण वे कोर्ट कचहरी में न्याय से वंचित रह जाते थे और चक्कर लगाते रहते थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा निर्देशों के बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा बोलते हैं, ने वर्ष 2016 में इस विशेष योजना को तैयार किया। इसका मूल दर्शन यह है कि राज्य का यह संवैधानिक और कानूनी कर्तव्य है कि वे ऐसे पीड़ितों को तत्काल मुफ्त कानूनी सहायता, तत्काल और पूर्ण चिकित्सा उपचार, गरिमामयी मुआवजा और समाज में सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करे। यह योजना न्याय को केवल अदालत के कमरों तक सीमित नहीं रखती बल्कि पीड़ित के अस्पताल के बेड से लेकर समाज में दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने तक उसका हाथ थामती है।
0: जी माननीय न्यायाधीश महोदय, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि ये योजना एक संबल प्रदान करती है उस पीड़ित को, उस व्यक्ति को जिसको उस वक्त बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। इसी में आगे बात करें आपसे, तो पीड़ित को जो तुरंत मिलने वाली कानूनी और आर्थिक राहत है, क्या इसके लिए बड़ी लंबी कोई कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है या कितने समय बाद ये मिल जाती है?
1: इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की लाल फीताशाही या कागजी कार्रवाई को इलाज और न्याय की राह में बाधा बनने नहीं दिया जाता।
0: जी,
1: जैसे ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पुलिस, अस्पताल या पीड़ित के रिश्तेदारों या अन्य किसी भी माध्यम से घटना की सूचना मिलती है, हमारा तंत्र जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए सक्रिय हो जाता है। और इसके बाद जो है तीन स्तरों पर मुख्यतः काम किया जाता है। सबसे पहला होता है, वो है विधिक सहायता। पीड़ित व्यक्ति को बिना किसी आय सीमा की शर्त के पूरी तरह से मुफ्त एक वरिष्ठ और अनुभवी कानूनी सहायता के लिए वकील आवंटित किया जाता है। यह वकील पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने से लेकर माननीय अदालत में अंतिम फैसले तक पूरी पैरवी निःशुल्क करता है। दूसरा जो कार्य होता है वो होता है इंटरिम कॉम्पनसेशन, त्वरित अंतरिम मुआवजा जिसे बोलते हैं। तो कानूनी प्रावधानों और संशोधित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत जो एसिड अटैक पीड़ित होते हैं, इनकी चोट की गंभीरता को और इनके चेहरे के विकृतिकरण के आधार पर जो न्यूनतम मुआवजा है वो 3 लाख से 7 लाख तक का निर्धारित है। इसमें इस नालसा योजना का सबसे कड़ा और महत्वपूर्ण नियम यह है कि घटना सूचना मिलने के 15 दिनों के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए का इंटरिम जो मुआवजा होता है वो पीड़ित को दिया जाता है, ताकि वो शुरुआती और सबसे नाजुक दौर में पैसों की कमी के कारण उसका इलाज जो है प्रभावित ना हो, और जो शेष राशि होती है उसका भुगतान जो है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 2 महीनों के अंदर सुनिश्चित किया जाता है। जो तीसरा कार्य है वो यह है कि निशुल्क और अनिवार्य इलाज। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देश हैं कि देश का कोई भी अस्पताल, चाहे सरकारी हो या निजी, एसिड अटैक पीड़ित को इलाज देने से इनकार नहीं कर सकता है। अस्पताल को अनिवार्य रूप से तत्काल प्राथमिक उपचार और उसके बाद सभी प्रकार की रिकंस्ट्रक्टिव या प्लास्टिक सर्जरी और दवाइयां पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध करवानी होती हैं लोगों को।
0: जी कुलदीप जी, आपने अस्पतालों का यहाँ जिक्र किया। सरकारी अस्पतालों में तो ये चीज़ें अक्सर निशुल्क ही होती हैं, लेकिन आपने निजी अस्पतालों की भी बात करी, तो क्या निजी अस्पतालों में पीड़ित का निशुल्क इलाज किया जाता है? अगर इनकार करता है कोई इलाज करने से तो क्या इसमें किया जा सकता है?
1: अनुज जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सवाल है। मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को पूरी कानूनी स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूँ कि निजी अस्पतालों के लिए भी यह सख्त विधिक बाध्यता है, और यदि कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल एसिड अटैक पीड़ित का तुरंत और मुफ्त इलाज करने से मना करता है तो यह कानूनन एक गंभीर अपराध है, और इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है। यदि ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो पीड़ित परिवार का सदस्य या कोई भी जागरूक नागरिक हमारे राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1500 पर संपर्क कर सकता है, या सीधे हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर में कार्यालय में सूचना दे सकता है। हम बिना 1 मिनट गवाए इस मामले में कानूनी हस्तक्षेप करते हैं और तुरंत इलाज शुरू करवाना सुनिश्चित करते हैं।
0: जी, ये अच्छी बात है कि इसमें कोई देरी नहीं करते और तुरंत जो इलाज है वो किया जाता है। माननीय न्यायाधीश महोदय, इसमें देखिए शारीरिक कष्ट या शारीरिक दुष्प्रभाव तो होते ही हैं, एक पीड़ित की मानसिक स्थिति को भी बड़ा असर पड़ता है, तो क्या ये मानसिक स्थिति को संभालने के लिए भी इस योजना में कुछ खास है?
1: जी, नालसा की ये जो योजना है ये केवल आर्थिक या चिकित्सीय मदद तक सीमित नहीं है। यह पीड़ित की निजता, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी पूरी तरह संवेदनशील है। इसके तहत कई सुरक्षात्मक कदम उठाए जाते हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 या जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के सामने जब बयान दर्ज किया जाता है या फिर जब उसकी कोर्ट में गवाही होती है तो विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक स्पोर्ट पर्सन या महिला सुरक्षा अधिकारी या फिर एक काउंसलर हमेशा उनके साथ मानसिक संबल के लिए मौजूद रहता है। इसके अलावा विधिक प्रावधानों के अनुसार पीड़ित की पहचान, फोटो या और उसके पते को मीडिया या सार्वजनिक डोमेन में पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है।
0: जी
1: अदालती कार्रवाई के दौरान भी ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो पीड़ित है और आरोपी है वो सीधे संपर्क में ना आए, वो आमने सामने ना आए, इसलिए इन कैमरा सुनवाई की व्यवस्था की जाती है इसमें। इसके अलावा हमारा प्राधिकरण जो है पुलिस विभाग से निरंतर समन्वय बना के रखता है और सुनिश्चित करता है कि चार्जशीट जो है वो सही समय पे दाखिल हो, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पे हो
0: जी
1: ताकि आरोपी को जल्द से जल्द कानून के तहत कठोरतम सजा मिल सके।
0: जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा विशेष संबंधित जागरूकता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
1: जी, यद्यपि पिछले कुछ सालों में हमारे ज़िले में एसिड अटैक का कोई भी मामला नहीं हुआ है, फिर भी हमारा ये निरंतर और निष्ठापूर्वक प्रयास रहता है कि कानून केवल किताबों या अदालतों की फाइलों तक सीमित ना रहे बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए हम नियमित रूप से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करते रहते हैं, विशेषकर स्कूलों में, कॉलेजेस में, पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ हमारी कोशिश रहती है कि युवाओं, महिलाओं और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए।
0: जी, ये बहुत अच्छे प्रयास हैं और इस तरह के प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए। माननीय न्यायाधीश महोदय, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं इसमें?
1: अनुजी, चिकित्सा विज्ञान से शारीरिक घाव तो भर जाते हैं लेकिन समाज का सामना करने का जो मानसिक संकोच और डर होता है उसे दूर करना पुनर्वास होता है। तो कानूनी संशोधनों के तहत एसिड अटैक से उत्पन्न हुई शारीरिक या चेहरे की क्षति को जो है बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करवाने में मदद करवाता है जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, वजीफों और सरकारी नौकरियों में नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिल सके। हम विभिन्न सरकारी विभागों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से पीड़ितों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार निशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, वित्तीय साक्षरता, सिलाई कढ़ाई या अन्य कोई हुनर प्राप्त करने में भी मदद करते हैं।
0: जी
1: हमारा अंतिम उद्देश्य यह होता है कि समाज उन्हें केवल एक बेबस पीड़िता के रूप में ना देखे बल्कि वह एक सशक्त सर्वाइवर बनकर गरिमा के साथ समाज की मुख्य धारा में लौट जाएं।
0: कुलदीप जी, दया दृष्टि के बजाय उनको एक सर्वाइवर के रूप में देखना चाहिए, एक फाइटर के रूप में देखना चाहिए। लेकिन ऐसे मामले हो ही ना कुलदीप जी, तो तेजाब की जो खुलेआम और अवैध बिक्री होती है उसकी रोकथाम हेतु क्या कुछ खास है?
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, रोकथाम ही सबसे अचूक उपाय होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट और कड़े दिशा निर्देश देकर के ये जो तेजाब की काउंटर पे सेल होती है, खुली खुदरा बिक्री जिसे बोलते हैं, इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को तब तक तेजाब या एसिड नहीं बेच सकता जब तक कि वह ग्राहक का सरकार के द्वारा कोई जारी किया हुआ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड ना देख ले और उसका पूरा विवरण, नाम, पता, मात्रा एक विशेष रजिस्टर में ना दर्ज कर ले। इसके जो अतिरिक्त खरीदार को जो एक लिखित में घोषणा पत्र देना होता है कि वह किस विशिष्ट और वैध कार्य के लिए जो है इसको खरीद रहा है। सबसे महत्वपूर्ण नियम ये भी है इसमें कि 18 वर्ष से कम के किसी भी नाबालिग को तेजाब बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी और दंडनीय है। सभी थोक और ये जो खुदरा विक्रेता होते हैं इनको अपने स्टॉक की घोषणा जो होती है स्थानीय सब डिविजनों में संबंधित SDM के पास नियमित रूप से करवानी होती है। अब अगर कोई भी दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ साथ उसका लाइसेंस जो है उसको भी निरस्त कर दिया जाता है और इसके अलावा उसके ऊपर कानूनी मुकदमा भी चलाने का प्रावधान है। सभी व्यापारियों और प्रबुद्ध नागरिकों से भी अपील करूंगा कि वो इस नियम का पूरी कड़ाई और सामाजिक जिम्मेवारी के साथ पालन करें।
0: महोदय, जैसे ये तो बात करी हमने एसिड की, इसके अलावा कई अलग ज्वलनशील रसायन भी होते हैं या कोई पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हमला किया जाता है, तो क्या जो पीड़ित है वह मुआवजे के हकदार होंगे?
1: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कानून के तहत जो एसिड या कोरोसिव सब्सटेंस है, इसकी परिभाषा जो है बहुत व्यापक है
0: जी।
1: इसमें हर वह रासायनिक पदार्थ शामिल है जो मानव शरीर के संपर्क में आने पर जलन, घाव या शारीरिक विकृति पैदा करने की क्षमता रखता है। इसलिए चाहे हमला सल्फ्यूरिक एसिड से हुआ हो या किसी अन्य ज्वलनशील केमिकल या अत्यधिक तीव्र तेजाब से, पीड़ित को इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली मुफ्त विधिक सहायता, 3 लाख से 7 लाख तक का मुआवजा, 15 दिनों के अंदर 1 लाख रुपये की अंतरिम राहत और निःशुल्क इलाज के सभी अधिकार जो हैं पूरी तरह समान रूप से प्राप्त होते हैं। कानून तरल पदार्थ के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करता है, वह कृत्य की क्रूरता को देखता है।
0: जी दीप जी, अब इस कार्यक्रम में क्योंकि समय भी हो चला है, आप जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश का कानून आपकी सुरक्षा, सहायता और न्याय के लिए सदैव पूरी सजगता के साथ तत्पर है। यदि कभी भी आपके आसपास कोई भी अमानवीय या अप्रिय घटना घटती है तो डरे नहीं, मूक दर्शक बिल्कुल ना बने, तुरंत आगे आएं, कानून का सहयोग करें, स्थानीय पुलिस को सूचित करें और हमारे राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1500 पर या सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क करें। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपका एक त्वरित और सही कदम किसी पीड़ित की जिंदगी को बिखरने से बचा सकता है और उसे सही समय पर न्याय दिला सकता है। आइए हम सब मिलकर ऐसे संवेदनशील, सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करें जहां हर एक नागरिक, विशेष तौर पे हमारी महिलाएं और बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित और सशक्त महसूस करें।
0: माननीय न्यायाधीश महोदय, आपने बहुत ही अच्छी विशेष संबंधित जानकारी दी, अच्छा संदेश दिया कि महिलाओं और बेटियों को पूरी तरह से सुरक्षित और सशक्त महसूस करवाना चाहिए, तभी हमारा देश जो है आगे प्रगतिशील होकर बढ़ेगा। आकाशवाणी हमीरपुर को आज आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे कानून की बात कार्यक्रम के अंतर्गत नालसा एसिड पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 विषय पर न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर कुलदीप शर्मा से अनुज कुमार की बातचीत। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कानून की बात कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। जी हाँ, हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं लेकर आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम गीतांजलि।
1: जी दोस्तों नमस्कार, और आज का ये कार्यक्रम खास है। खास क्यों है नीमा जी आपको बताएंगी।
0: जी श्रोताओ, रेडियो ने अपने 90 वर्षों का खूबसूरत सफर आज पूरा कर लिया है और इसी उपलक्ष्य में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम गीतांजलि, जिसके साथ आप जुड़ कर सकते हैं अपने दिलों की बातें, जानेंगे आपसे आप ही की आवाज़ में आकाशवाणी के सुनहरे सफर की कुछ खट्टी मीठी यादें, जानेंगे आपके अनूठे अनुभवों के बारे में।
1: जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे समय से, लगभग एक या दो महीने से आप भी सुन रहे होंगे कि आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का सफर जो है वो पूरा कर रहा है, और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया और हम पहुंच गए हैं उस ऐतिहासिक दिन पर। और इस ऐतिहासिक दिन पर इन क्षणों में आप भी अपने विचार हम संग साझा कर सकते हैं, आप हिस्सा बन सकते हैं आज के इस प्रोग्राम का। 0-1-8-9-2-2-2-4-3-9-1 यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। कीजिए हमसे बात, अपने तरीके से शुभकामनाएं दीजिए और साथ ही रेडियो से जुड़ी अपनी यादों को ताजा कीजिए।
0: जी इसी बीच प्रोग्राम के पहले कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि वो कहां से हमें कॉल कर रहे थे। वेल, उनका जो है वो कनेक्शन हमसे टूट चुका है, कोई बात नहीं, दोबारा से डायल कीजिए, जल्दी ही आपसे हमारी बात हो पाएगी।
1: जी हाँ, और सभी श्रोताओं से हम अनुरोध करेंगे कि कृपया जब भी हमें फ़ोन करें, कृपया नेटवर्क जांच लें, नेटवर्क में रहकर हमसे बात करें, जिससे आपकी बात हम तक और हमारे सभी दोस्तों तक ठीक से पहुंच पाए। और साथ ही अपनी बात को संक्षेप में रखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमारे साथ आज जुड़ पाएं।
0: हेलो हेलो
2: हेलो नीमा, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे।
2: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव मैथापुर से महेंद्र सिंह राणा।
0: जी महेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस विशेष दिन के बारे में?
2: सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को और आकाशवाणी की पूरी टीम को मेरी तरफ से आकाशवाणी के 90 वर्ष होने की शुभकामनाएं और बधाई।
0: जी शुक्रिया,
1: क्या बात है। देखिए आपकी जो शुभकामनाएं हैं महेंद्र सिंह जी, हम तक पहुंच चुकी हैं, सभी श्रोताओं तक भी पहुंच चुकी हैं, और हमारे बहुत ही जागरूक और नियमित श्रोता हैं आप, तो बताइए आपकी क्या यादें जुड़ी हैं रेडियो के साथ?
2: संजीव जी, बात ऐसी है कि आकाशवाणी एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम जो जुड़ करके हमको सभी देश विदेश की जो भी अच्छी बुरी खबरें हैं, जो अच्छी बुरी बातें हैं, चाहे वो ज्ञान के बारे में हो, मौसम के बारे में हो, अपने शिक्षा के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, हर तरह की जानकारी जो है आकाशवाणी हमको परोसता है।
1: जी बिल्कुल,
2: इसके साथ साथ श्रोताओं का मनोरंजन भी किया जाता है, तो इससे इसमें और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके हमको ज्ञान प्रत्येक मिलता है और अपनी जीवन जीने का ढंग है जो उसमें जानकारी।
1: जी राणा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आप कब से जुड़े हैं आकाशवाणी से?
2: देखिए सुनील जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा सा था, 1962 की चाइना की लड़ाई लगी थी
1: जी,
2: तो गांव के लोग जो थे रेडियो के बैठते थे, मैं सोचता था ये डिब्बा रख करके क्या सुनते हैं,
1: क्या बात है।
2: उस वक्त मेरी इतनी समझ नहीं थी, और उसके बाद जब 65 में लड़ाई लगी पाकिस्तान की, तो फिर मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी कि ये तो खबरें सुन रहे हैं। और उसके बाद तो फिर 1971 के बाद तो मेरे के रेडियो से इतना लगाव हो गया कि मैंने रेडियो खरीद करके अपने गले में लगा ले। उस वक्त तो रेडियो का जो लाइसेंस फीस भरनी पड़ती थी।
1: जी बिल्कुल, और कितना शुल्क होता था उस वक्त लाइसेंस के लिए?
2: उस वक्त तो 15 रुपए होता था सालाना,
1: लेकिन उस वक्त ये 15 रुपए भी बहुत ज्यादा रकम होती थी।
2: हाँ जी हाँ जी, तो मेरे को इतना शौक था कि उस वक्त जो रेडियो होते थे उसमें एक चमड़े का कवर चढ़ा होता है, उसमें बेल्ट लगी होती है, उस गले में लटका करके मैं इधर उधर घूमता था।
1: जी बहुत अच्छा लगा महेंद्र जी आपसे बात करके। ये नीमा जी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं?
0: जी आप रेडियो के लिए अपनी दीवानगी यूं ही बरकरार रखिए और साथ ही साथ हमारे साथ यूं ही जुड़ी रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।

चलिए, आकाशवाणी से सेलिब्रेशन का मूड चल रहा है तो आप सभी के लिए हम प्ले करते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत। जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जी हाँ, लाइव फोन इन प्रोग्राम गीतांजलि इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, और हमारे श्रोता जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में।
2: जी देखिए, एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं।
1: हेलो
3: हेलो
1: हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से कॉल किया है?
3: जी सविता बोल रही हूँ मैम, रानीताल से।
1: सविता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप आज हमसे कौन सी अपनी यादें साझा करने वाले हैं।
3: जी मैम, पहले तो आपको 90 जो सालगिरह है ना, 90 साल हो गए।
1: जी जी,
3: बहुत बहुत बधाई।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बताइए सविता जी कि आप कब से जुड़ी हैं रेडियो के साथ?
3: जी सर, मैं तो बचपन से जुड़ी हूँ, जब मैं 10 साल की थी ना तभी से जुड़ी हूँ।
2: तो ऐसी कोई याद, इतने समय से आप सुनते आ रहे हैं रेडियो, कोई ऐसी याद हो आपकी जो आपको बार बार याद आती रहती है और आपको प्रसन्न करती रहती है?
3: हाँ जी, बस मैं सर ऑल इंडिया रेडियो सुनती थी ना पहले बचपन में।
1: जी,
3: तो वहाँ से फरमाइश वगैरह आती थी, गाने गुने आते थे, वो भी सुनती थी।
1: जी बहुत अच्छा। हाँ जी,
3: फिर उसके बाद धर्मशाला से जुड़ गई।
1: जी, तो धर्मशाला स्टेशन से जुड़ी हुई
3: आ रही हूँ।
1: धर्मशाला से जुड़ी कोई याद आप हमसे साझा करना चाहे तो?
3: हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं मैम, सभी सुनती आ रही हूँ, काम भी करती रहती हूँ और प्रोग्राम वगैरह भी सुनती रहती हूँ।
2: जी देखिए, वैसे तो सभी कार्यक्रम अच्छे होते हैं, लेकिन कोई खास कार्यक्रम जो आपको अच्छा लगता हो उसके बारे में बताना चाहेंगी?
3: जी हमें 12:30 बजे का आता है ना वो महिलाओं वाला प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनो सखी।
3: हाँ जी सुनो सखी
1: जी, वो खास रूप से हमने महिलाओं के लिए तैयार किया हुआ प्रोग्राम है।
3: हाँ जी मैम, बहुत अच्छा होता है वो वाला।
2: जी, तो इस कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियां दी जाती हैं, कुछ रेसिपीज बताई जाती हैं, कभी आपने ट्राई किया है कुछ बनाने के लिए?
3: हाँ जी सर, वो हर एक खाना पीना वगैरह बताते हैं और जानकारी भी देते हैं महिलाओं के बारे में।
2: जी, तो आपने कभी कुछ ट्राई किया है अपने किचन में कि हम ये बना देते हैं आज, आज तो बताया गया है?
3: हाँ जी हाँ जी, वो बताते हैं मैम तो सीख लेते हैं हम भी थोड़ा बहुत।
2: जी
1: चलिए, तो कार्यक्रम सुनते रहिए और साथ ही साथ अपने कार्य जो है वो घर के उनको भी निपटाते रहिए। फिलहाल आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं हम ये गीत। आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये बताइए कहाँ से कॉल किया है?
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से।
0: जी लोकेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आप सभी का, और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे रेडियो से जुड़ी हुई आपकी कुछ मीठी मीठी यादों के बारे में।
1: हाँ मैडम जी, रेडियो से तो बहुत ही पुरानी यादें हैं हमारी।
0: जी तो कुछ आकाशवाणी धर्मशाला से भी साझा कर दीजिए।
1: बिल्कुल मैडम जी, रेडियो तो मैं सन 1985 से सुनता आ रहा हूँ, बचपन से।
0: जी
1: मेरे पिताजी के समय से सुनता आ रहा हूँ मैं। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पिताजी वो बड़े जो वाल वाले रेडियो हुआ करते थे घर में,
0: जी जी
1: उसमें मेरे पिताजी सुनते थे, और अच्छे प्रोग्राम वो जो रेडियो पे गाने बजता था और वो जो भी बजता था, तो उसके वजह से फिर धीरे धीरे मुझे भी वो रेडियो सुनने का शौक लग गया।
2: जी
1: और
2: जी
1: 40 सालों से आज निरंतर हम रेडियो से जुड़े हुए हैं।
2: जी लोकेंद्र जी, और वो जो रेडियो होते थे वॉल्व वाले जो आप बता रहे हैं, उनमें आवाज तो बहुत ही मधुर आती थी।
1: बिल्कुल सर जी, उसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार रहती थी, क्योंकि इतना बड़ा रेडियो होता था, उसके अंदर जो कांच के वॉल लगे रहते थे छोटे छोटे लाइट के बल्ब जैसे
2: जी,
1: और उसकी क्वालिटी का एक वो पुराने दौर में आपने देखा होगा, अच्छी क्वालिटी और अच्छी फ्रिक्वेंसी पाने के लिए हम बाहर एक घर के बाहर एक तांबे का तार का ऐसा नेट वाला लगाते थे
2: जी, उससे थोड़ी आवाज जो है वो और भी स्पष्ट हो जाती थी।
1: हाँ वो जाली लगती थी और जाली से वो उसकी क्वालिटी और बढ़िया साफ सुनाई देती थी
2: जी। बिल्कुल, और शॉर्ट वेव और
1: आनंद कुछ अलग है।
2: शॉर्ट वेव और मीडियम वेव का जमाना था वो।
1: जी सर बिल्कुल, शॉर्ट वेव मीडियम वेव का जमाना था, और बीना का सिबा का गीत माला भी मैंने उसमें सुना है, और अच्छी 4 बैंड का रेडियो था हमारे उसमें
2: जी,
1: और सारी चैनल उसमें स्पष्ट सुनाई देते थे, पर थोड़ा बीना का कम आता था क्वालिटी, पर उसकी क्वालिटी हम कैसे भी मेंटेन करके उसको सेट कर लेते थे
2: जी। और लोकेंद्र जी देखिए, हमारे बहुत से ऐसे श्रोता आज भी हैं जिन्होंने उस रेडियो को संभाल कर रखा हुआ है।
1: हाँ जी जी, भी बहुत से लिसनर हैं ऐसे रेडियो आकाशवाणी के जो पुराने लिसनर हैं, और आज भी रेडियो आकाशवाणी की जो आवाज है, अब डिजिटल जमाना आ गया है, ऐप के माध्यम से है, तो वो देश के कोने कोने तक और विदेशों तक रेडियो पहुंच चुका है सर। और इसमें जो श्रोताओं की संख्या है, मेरे अंदाज से करीब 30 करोड़ तो श्रोता होंगे जो आज भी रेडियो को चाहते हैं सर।
2: जी बिल्कुल, और देखिए दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है संख्या।
1: जी जी जी बिल्कुल, संख्या बढ़ती जा रही है, और डिजिटल ऐप से ये फायदा हुआ है कि हम हमारे जो राज्य का चैनल हम सुनना चाहते हैं, वो मोबाइल ऐप के प्रसार भारती के माध्यम से हम कहीं पर भी रहें, हमारे शहर से बाहर रहें, तो भी हमारे मोबाइल में ऐप डाउनलोड रहता है, तो उससे हम सुन सकते हैं।
2: जी बहुत अच्छा लगा लोकेंद्र जी आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: यादें मेरी कुछ ऐसी हैं कि मैं मेरे पिताजी तो नहीं रहे, करीब 20 वर्ष हो गए उनको शांत हुए हुए, पर उनकी यादों को मैं आज रेडियो के सहारे दिलों में अपने जिंदा रखता हूँ, और आपके धर्मशाला का प्रोग्राम तो मैं हमेशा नियमित सुनता हूँ, और ऐप का जमाना आ गया तो ऐप से सुनते हैं सर।
0: जी जी शुक्रिया कॉल करने के लिए और इतनी तारीफ करने के लिए, आप यूं ही रेडियो के साथ जुड़े रहिए। जी हाँ श्रोताओं, गीतांजलि प्रोग्राम यूं ही जारी रहेगा फिलहाल आकाशवाणी धर्मशाला से। समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे, और इसके तुरंत बाद गीतांजलि कार्यक्रम हम फिर से लेकर लौटेंगे।
3: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
4: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
3: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
4: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निःशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
5: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
4: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी पेंशनरों के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए देगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज संजौली में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम और मशोबरा में नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल आज से ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा शुरू। 5 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व हिमाचली कलाकार मचाएंगे धमाल। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ने से पर्यटन व्यवसायी खुश।

0: ही हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के निकट संजौली में लगभग 3,18,00,000 रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। इस स्टेडियम में रसोई घर, चेंजिंग रूम, शौचालय व ओपन हॉल जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सहित विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री का बाद में मशोबरा में निर्मित नवजीवन, नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। ये केंद्र नशे की समस्या से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करेगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों से जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सेवा, समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। शिमला में उनसे मिलने आए भाजपा समर्थित नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जन प्रतिनिधियों की भूमिका लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने व संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है। इस अवसर पर सभी नव निर्वाचित सदस्यों ने क्षेत्र के विकास व जन कल्याण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन व जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के समीरपुर, बगवाड़ा व दाड़ी सहित अन्य स्थानों पर विशेष जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, जबकि उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा समर फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों की भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और फूड फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन जोरों पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, डलहौजी, मनाली व खजियार सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती तादाद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे शिमला जिला संवाददाता ने बताया कि शिमला में हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
1: वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं, जिससे न केवल होटल कारोबार में तेजी आई है, बल्कि शहर की सड़कों में जाम की समस्या भी बढ़ गई है। जाम के चलते आम लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। पिछले एक महीने में शिमला शहर में 8,00,000 वाहनों की एंट्री हुई है। हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शहर के होटलों में लगभग 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वीकेंड पर शिमला की ओर आने वाले वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शोघी, तारा देवी, टूटीकंडी बाईपास और ढली जैसे प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ी हैं। इस बीच आज से शिमला में समर फेस्टिवल का आगाज भी होगा, जिससे पर्यटकों की तादाद में और इजाफा होने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: उधर कुल्लू जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता के अनुसार

0: सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला है।
1: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है तथा आजकल यहां मौसम भी सुहाना बना हुआ है। पर्यटक यहां पर रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं। शाम के समय मनाली के माल रोड में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक वाहनों के आने से मनाली में जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है तथा स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को भी इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: सिरमौर जिले में किसान बड़ी संख्या में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जिले के 2200 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 12,000 किसान प्राकृतिक खेती से उगाई जा रही फसलों से अच्छे दाम प्राप्त कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: जिला सिरमौर में मौजूदा समय में करीब 2200 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है, जिसमें किसान गेहूं, मक्की, धान, हल्दी और अदरक का मुख्य रूप से उत्पादन कर रहे हैं। जिला में करीब 12,000 ऐसे किसान हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से उगाए जा रहे उत्पादों के भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। वहीं कृषि विभाग इन किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध करवा रहा है, साथ ही लगातार प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ है। मौसम विभाग ने कल यानी 9 व 10 जून को ऊना, बिलासपुर व सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 से 13 जून तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला व पंजाब केसरी की लगभग एक जैसी सुर्खी है, मंत्री, विधायकों, मुख्य सचिव, एसीएस और उपायुक्तों को अगले माह से मिलेगा पूरा वेतन। इसी खबर पर हिमाचल दस्तक लिखता है, मुख्यमंत्री ने वापस लिया 30% वेतन स्थगन का फैसला। दैनिक भास्कर की एक खबर है, हिमाचल का पहला सरकारी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा केंद्र चयन आयोग हमीरपुर में तैयार। मुख्यमंत्री के हवाले से दिव्य हिमाचल लिखता है, एचआरटीसी पेंशनरों को हर माह समय पर मिलेगी पेंशन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, एचआरटीसी पेंशनरों के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए देगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज संजौली में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम और मशोबरा में नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से समर्पण व जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल आज से ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा शुरू। 5 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व हिमाचली कलाकार मचाएंगे धमाल। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ने से पर्यटन व्यवसायी खुश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और दोस्तों, आपको याद दिला दें, आज का ये गीतांजलि कार्यक्रम जो है वो विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम पर आधारित है। और क्यों है नीमा जी, आप बताइए।
4: जी हाँ श्रोता, आप सभी जानते ही हैं कि ये जो आकाशवाणी है वो अपने 90 वर्षों का खूबसूरत सफर को आज जो है वो सेलिब्रेशन कर रहा है, और इसी के लिए आज हमने आपके लिए बनाया है लाइव फोन इन प्रोग्राम गीतांजलि। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अपनी फोन कॉल्स के माध्यम से। जल्दी से डायल कीजिए हमारे स्टूडियो का नंबर 01892224391।
3: जी, और नीमा जी को मैं देख रहा हूँ, आज बहुत खुश नजर आ रही हैं।
4: जी जी जी, देखिए ना संजीव जी, आकाशवाणी से जुड़ी हुई मेरे भी बचपन की बहुत ढेर सारी जो यादें हैं, हमने भी छोटी सी उम्र से लेकर जो है वो रेडियो सुना है, और जब खुद रेडियो से यहाँ आकर जुड़े तो ये एक्साइटमेंट जो है ना वो और नेक्स्ट लेवल की हो जाती है।
3: क्या बात है। और जब तक कोई अन्य श्रोता हमसे जुड़ते हैं, आप बोलना जारी रखिए, कुछ और यादें भी शेयर कर दीजिए अपनी।
4: जी, जो है बचपन में मैं तो जो है ना अपनी स्टडी करती थी ना, वो रेडियो को ऑन करके धीमी सी आवाज में पीछे गाने गुनगुनाते बजते रहते थे और मैं अपनी जो पढ़ाई वो पूरी करती रहती थी। और खेलते वक्त कभी धूप में कभी गर्मियों में बैठे बैठे हमने बहुत बहुत लंबे समय तक रेडियो सुना है और इस तरह से जो है वो रेडियो के साथ अपना टाइम बिताया है।
3: जी बिल्कुल, और देखिए वो फुर्सत के लम्हे होते थे, आजकल तो वो लम्हे कहाँ मिल पाते हैं, लोग मोबाइल फोन्स पर बिजी रहते हैं।
4: जी, और देखिए संजीव, मुझे ये लगता है कि रेडियो पर जो गाना सुनने का मज़ा है ना, वो आप यूट्यूब टेलीविज़न या किसी और भी जो है वो उस माध्यम से वो इतना मज़ा नहीं आता जो आप किसी को बिना देखे बिना जाने जो है वो सिर्फ बस आवाज़ सुनते हैं और यहाँ से हम आपके लिए प्यारे प्यारे से गीत प्ले करते हैं, उसको सुनने का कुछ अपना ही मज़ा है।
3: बिल्कुल, और कई बार देखिए श्रोताओं को मालूम ही नहीं होता कि अगला गाना
4: कौन सा आने वाला है। जी जी जी
3: जी, तो बातचीत हम जारी रखेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता की। तब तक सुनते हैं ये संदेश।
5: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
6: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
8: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ आप बने हुए हैं और इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम गीतांजलि।
5: जी हाँ, और ये कार्यक्रम विशेष है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर।
4: जी तो चलिए प्रोग्राम के अगले कॉलर से बात करते हैं, जानते हैं कहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो
5: जी, देखिए जब भी ये श्रोता हमें फोन करते हैं और हल्का सा ब्लिंक होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, नीमा जी के चेहरे पर एक अलग जी, ही जी, चमक जी, आ जाती है।
4: एक्चुअल में अपने जो लिसनर से जुड़ने की जो खुशी होती है ना, वो हमारे चेहरे से हमारी आवाज से झलकती है। हेलो,
6: हाँ जी नमस्ते।
4: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
6: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
4: योगेश जी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
6: जी शुक्रिया।
5: जी योगेश जी आज ढीला बोल रहे हैं, क्या बात है, आज तो बहुत जश्न का दिन है।
6: नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है।
5: क्या बात है, अब आपकी आवाज पूरी तरह से खिल कर आ रही है।
6: जी जी जी
5: जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे, आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है आज।
6: हम तो यही कहेंगे भैया, ये 90 वर्ष और भी लगातार आगे बढ़ता रहे, और हम स्वयं लगभग 23-24 साल से रेडियो से जुड़े हुए हैं, और इस दौरान भैया हम जीवन के अपने हर एक क्षेत्र में रेडियो के योगदान को भूल नहीं सकते।
5: क्या बात है,
6: वो पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, खेती बाड़ी के मामले में हो, या गीत संगीत तो लगातार चलते रहता है, मतलब कुल मिलाकर कहें हमारा सबसे अच्छा साथी है।
5: जी और कुछ कहना चाहेंगे?
6: और इस बीच में कई श्रोता साथियों से भी परिचय होता है, मुलाकात होता है, तो ये सब चीजें मतलब काफी अद्भुत है, रेडियो की देन है।
5: जी देखिए रेडियो एक को दूसरे से जोड़ता है, और ये बिल्कुल आपने सही बात कही है, हमारे बहुत से श्रोता हैं जो रेडियो फैन क्लब भी बना लेते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छा जुड़ाव रखते हैं।
6: जी
4: जी योगेश जी, आपका साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे और हम लगातार आपसे जुड़ते रहे अपने गीत संगीत अपनी बातों के जरिए, और आपके लिए बनाते रहे कुछ नए नए ऐसे प्रोग्राम्स। आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
5: जी शुक्रिया जांगड़े साहब, और इसके बाद एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं।
4: हेलो
7: नमस्कार जी।
4: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
5: जयकरण जी। जी कहिए जयकरण जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस दिन के बारे में?
7: पहले तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ 90 वर्ष पूर्ण होने पर।
5: जी
4: जी शुक्रिया,
7: आप सभी श्रोताओं को और जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं खासकर उनको।
4: जी शुक्रिया, कोई अपनी यादें हमसे साझा करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं।
7: और दूसरी बात ये है जी, ये रेडियो जो है ना वो मनोरंजन का एक बड़ा ही अच्छा साधन है ना, इसमें टाइम वेस्ट होता है ना, काम रुकता है।
4: जी जी, काम करते करते आप जो है हमारी प्रोग्राम सुन सकते हैं, गीत संगीत का आनंद ले सकते हैं, और ढेर सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आप तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं।
7: जो हम दूसरे जो बैठ के काम करते हैं, जैसे मैं सिलाई का काम करता हूँ
4: जी,
7: तो मेरे लिए तो एक टॉनिक का काम करता है।
4: जी थकावट दूर करने का सबसे बेस्ट जरिया जो रेडियो है।
7: हाँ जी हाँ जी
5: जी।
7: तो रेडियो जब आया था ना, जब मतलब बहुत पुराना जमाना था, जब को पता नहीं था ऑन कर लिया रेडियो और बंद करने का भी पता नहीं था।
5: जी कब से सुन रहे हैं आप?
7: मैं तो चल थोड़े से पर बातें सुनी है कुछ जी, मेरे को 40-50 साल हो गए सुनते।
5: रेडियो सुनते आपको 50 साल हो गए हैं।
7: हाँ जी।
5: और देखिए इन 90 वर्षों में 50 साल आप रेडियो सुनते आ रहे हैं, ये बताइए।
7: हाँ, तो दे दिया जी मैंने।
5: जी बिल्कुल, आधे से ज्यादा। ये बताइए, बहुत से कार्यक्रमों में बदलाव होता है समय समय पर, वो आपको कैसा लगता है?
7: बहुत ही बढ़िया जी, जैसे अब हमारे जो रेडियो प्रमुख थे गुरिंदर जी, वो तो सेवानिवृत्त हो गए हैं।
4: जी,
7: उनके जाने के बाद जो भी प्रोग्राम सुनते हैं ना सुबह से, कुछ कुछ नाम जो है वो बदल गए।
4: जी जी जी, तो टाइम के साथ
7: प्रोग्राम तो वैसा ही होता, पर सिर्फ नाम ही बदला है, काम नहीं बदला है।
4: जी,
5: काम नहीं बदला है।
7: जी
5: जी, और देखिए बदले हमारे श्रोता भी नहीं है।
4: और देखिए संजीव जी और अपने
7: मैं एक बड़े पुराने जमाने की बात करना चाह रहा था, पर बात आगे बढ़ गई ना।
5: जी जी, करिए आप बताइए।
7: कि रेडियो जब शुरू में आया था, तो मेरे को भी किसी बुजुर्ग ने बताया था कि जो ऑन एक बार तो कर लिए, पर बंद करने का पता नहीं था सर
5: जी।
7: और रेडियो सुनते गए, जब उनका जी भर गया तो रेडियो बंद तो हो नहीं रहा था। फिर बाद में एक टोकरी लाए उठा के, शायद इस

0: रखने से शायद बंद हो जाएगा।
1: क्या बात है।
0: और फिर भी टोकरी से कैसे बंद होता वो, तो उन्होंने फिर गुस्से में आकर वो पटक दिया, तब जाके वो बंद हुआ।
1: जी देखिए, आपने बहुत बेरहमी से ये कार्य किए हैं।
0: मैंने नहीं किए है, पर सुना है जी।
1: लेकिन आप उसके साक्षी हैं। आपने कहीं सुना है।
0: हमारे भी घर में रेडियो जब आया था, एक मेरा मौसा जी आर्मी में थे ना
1: जी, जी
0: उनसे एडवांस की तो लाए थे फिलिप्स का रेडियो ना हमारे घर में
1: जी।
0: तो हम 12 बजे तक जी सो ही नहीं सके, प्रोग्राम सुनते सुनते, चाहे खबर हो चाहे गीत हो चाहे कुछ भी हो।
1: जी देखिए, बहुत कुछ ऐसा होता है, कुछ अच्छी आदतें ऐसी होती हैं जो हमें रखनी भी चाहिए और हमारे लिए काफी फायदेमंद भी होती हैं ये।
0: अब तो जब रेडियो खराब हो जाता तब तक हमारा जी नहीं लगता काम में, जब तक उसकी रिपेयर न करा के घर ले आए।
1: जी देखिए, आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे श्रोता हैं, उन्हीं के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं।
0: हाँ जी
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: धन्यवाद,
1: जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग,
2: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए इसी बीच अगले कॉलर से भी संजीव बात कर लेते हैं। हेलो।
3: हेलो।
2: हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम का। कौन बात कर रहे हैं?
3: मैडम जी नमस्कार, मैं राकेश जिंदादारी से बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको समस्त आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष रेडियो के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं मैडम जी।
2: जी शुक्रिया, हमारी ओर से भी आप सभी को, सुनने वालों को भी बधाई। ये बताइए।
3: धन्यवाद मैडम जी। हाँ जी मैडम, मैं भी ना बहुत पुराना आकाशवाणी से जुड़ा हूँ।
2: जी 77
3: से मैं जुड़ा हूँ आकाशवाणी। पहले हम ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से जुड़े थे, जलंधर से जुड़े थे
2: जी।
3: और जब 94-95 में धर्मशाला आकाशवाणी आरंभ हो गया, तब से हम आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़े हुए मैडम जी।
2: जी जी,
3: तो हमारी यादें बहुत बहुत ही पुरानी है आकाशवाणी से। तो मेरे को अभी भी याद आती, बिल्कुल हम जब छोटे छोटे थे मैडम जी, तो 1970 की बात है, मैं काफी छोटा था, 7-8 साल का होगा, 6-7 साल का। तो सैलून से आता था, बिना का प्रोग्राम आता था
2: जी।
3: तो उसमें फरमाइश, उसमें ना जी कौन सा गाना फर्स्ट आएगा उसके बारे में भी हर बुधवार को प्रोग्राम था कि इस सप्ताह में कौन किसने टॉप किया बोल के। तो 31 दिसंबर को जो पूरे साल का जो जिसने भी गाने का टॉप किए होते थे ना, उनका प्रोग्राम आता था पूरा। तो क्या हुआ कि इसका नाम क्या, मेरे को अभी भी याद है, तो उस टाइम शर्त लग गई आपस में ना कि इस बार कौन सा गाना फर्स्ट आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो 1970 की बात है, उस टाइम बिंदिया चमके की गाना ने टॉप किया था उस टाइम मैडम
1: जी। हाँ, दूरस्थ मूवी का ही गाना था।
3: हाँ जी, मेरे को अभी तक भी याद है उसकी। सर हम छोटे छोटे होते थे, तो जो हमारे थे फादर वगैरह जो भी थे, उन्होंने आपस में एक किस्म की शर्त लगाई थी कि कौन आएगा फर्स्ट। तो बहुत समय भी था सर
2: जी।
3: और सर, हाँ जी, और सर आज के समय में चाहे हम टीवी देख लें कुछ, पर जब तक भी मैं आकाशवाणी से अगर समाचार ना सुनूं ना जी, तो मेरे को तब तक तसल्ली नहीं मिलती है, क्योंकि अथेंटिक अभी आकाशवाणी अथेंटिक प्रोग्राम देता है
2: जी, जी,
3: समाचार जो भी हो अथेंटिक होते हैं ना, उसमें बिल्कुल तसल्ली होती है मैडम
1: जी। देखिए तो राजेश गुप्ता जी, आप जैसे जो श्रोता है वो हमें प्रेरित करते हैं अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आपके लिए।
3: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर और थोड़ी सी मैं एक जानकारी और अपने श्रोताओं के लिए देना चाहता हूँ।
1: जल्दी से
3: कहिए। आकाशवाणी से ना सर, तो ये सर 1900 इसका नाम किया 30 में ना, ये सरकार के नियंत्रण में आया था जी। और 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर आकाशवाणी के अंदर रखा था
1: जी। और उसी की वर्षगांठ हम मना रहे हैं।
3: हाँ जी, हाँ जी, उसकी वर्षगांठ बना रहे हैं। और 1957 को इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो रख लिया था सर।
1: क्या बात है, आप बहुत जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई और आप

0: जी दोस्तों, कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। और कार्यक्रमों में अक्सर आपने सुना होगा कि तकनीकी सहयोग विकास पठानिया का है, तो विकास पठानिया हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और कुछ कहना चाहते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर।
1: मैं तो संजीव जी, सबसे पहले आकाशवाणी को अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे करने की शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आकाशवाणी परिवार का एक सदस्य हूं। मैंने लगभग 2008 में आकाशवाणी ज्वाइन किया था और तब से लेके अभी तक काफ़ी चेंजेस जो देखने को मिले हैं, मतलब चेंजेस अब आपको पता ही है कि चेंजेस जरूरी होते हैं। पहले एक प्रोग्राम बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते थे, आज वही टाइम 10 मिनट या 5 मिनट का रह गया, तो इसमें फ़र्क होता है
0: जी। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: मैं तो लगभग अपने पिताजी के टाइम से सुन रहा हूँ। मुझे तो इतनी पता भी नहीं है कि जब से मतलब हो संभाला है तब से ही रेडियो चला हुआ है लगभग।
0: तो कभी ऐसा सोचा कि सुनते सुनते आप रेडियो का एक हिस्सा भी बनने वाले हैं?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक्चुअली आप रेडियो में सुने तो आपको पता नहीं होता है क्या ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब इस अब फील्ड में आ जाते हो तब देखने को लगता है नहीं, यहाँ पे मतलब एक आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसके पीछे कितनी इंजीनियरिंग है, कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसे आप तक आवाज़ पहुँच रही है।
0: जी जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये पूरी तरह से एक टीम वर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।

0: जी नीमा जी, देखिए हमारे कार्यक्रम में अगले श्रोता कौन जुड़ रहे हैं।
1: जी जी, आइए जानते हैं। हेलो, लगता है इनका संपर्क हमसे टूट चुका है। कोई बात नहीं, ये दोबारा से ट्राई करेंगे और जल्द ही हमसे जुड़ेंगे। फिलहाल अपने लिसनर्स को बता दें कि गीतांजलि प्रोग्राम में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 90 वर्षों का सुहाना सफर। हेलो हेलो
2: हेलो जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से हमें कॉल किया है?
2: हाँ जी मैडम जी, मैं पॉल बोल रहा हूँ, जलंधर पंजाब से।
1: जी।

0: जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम अपने श्रोताओं से सुन रहे हैं उनके रेडियो से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस और साथ ही साथ उनकी मीठी मीठी सी यादों को जो हमसे साझा कर रहे हैं। आप भी कुछ अगर कहना चाहें।
1: हाँ मैडम जी, मैं तो बताना चाहता हूँ कि हम तो 1970 से लेकर रेडियो से जुड़े हूँ।
0: जी
1: बचपन में थे हम, जब हमारे घर में रेडियो चलता था, जब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की जो बार हुई है, जैसे बांग्लादेश जिस टाइम आज़ाद हुआ, तो उस टाइम हमारे घर में रेडियो होता था। तो बाकी आजू बाजू के सभी घर हमारे घर में पहुंच जाते थे कि उधर जाके न्यूज़ सुननी है।
0: जी जी
1: तो ऐसा बहुत बदलाव हुआ है तब से लेकर अब तक। फिर हम बड़े हुए तो हम हमारे फादर साहब भी चिट्ठियां डालते थे, हम भी चिट्ठियां डालने लग गए। उसके बाद में फिर टेक्स्ट मैसेज का जमाना आ गया है।
0: जी जी
1: टेक्स्ट मैसेज फिर बाद में अभी तो देख लो कि सारा कुछ ही हो गया है, बड़े सब कुछ बहुत।
2: जी,
1: तो
2: काफी
1: अभी
2: लंबे
1: तो
2: समय से आप जुड़े हैं आकाशवाणी से। ये बताइए
1: जी,
2: कि पहला रेडियो कब खरीदा था आपने?
1: पहला रेडियो मेरे को तो पूरा याद नहीं, 1970 से पहले ही मेरे फादर साहब ने खरीदा था। तो मेरे को तो अभी बाहर से हमारे रिश्तेदार गए हैं,
2: जी
1: उन्होंने भी मेरे को प्रेजेंट किया है कि रेडियो बहुत छोटा है, 12 है। रेडियो हमारे पास थे, सलोन रेडियो सोचे थे दूसरे बैंड पे लगा के।
2: जी, तो किस तरह के कार्यक्रम, क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता था आपको? फिल्म संगीत के कार्यक्रम या लोक संगीत भी आता है आकाशवाणी पर, या कोई और कार्यक्रम आपको अच्छे लगते
1: देखो, लोक संगीत बहुत अच्छे लगते थे, जैसे खेती बाड़ी का प्रोग्राम होता था, हम
2: थे?
1: किसान किसानी करते थे तो हमारे जो खेती बाड़ी प्रोग्राम चलता था
2: जी
1: वो भी हम सुनते थे। तो गीत संगीत तो चलता ही रहता था ना, साथ में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी भी साथ में चलती रहती थी कि क्या क्या नया कुछ हो रहा है और
2: जी
1: क्या क्या
2: और देखिए,
1: देश में चल
2: पंजाब की
1: रहा है।
2: जो लोक संस्कृति है, लोक संगीत की विरासत है, वो बहुत समृद्ध है। तो क्या आप भी
1: बिल्कुल
2: कोई गीत गाते हैं?
1: जी,
2: तो थोड़ा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के
1: हमारे
2: लिए।
1: हमारे जैसे कहते हैं कि पंजाब की कोयल है सुरिंदर कौर, प्रकाश कौर, इन्होंने बहुत गीत गाए हैं। हमारे जो गुरदास मान है उन्होंने बहुत गीत गाए हैं,
2: जी
1: तो बहुत अच्छे उम्दा कलाकार पंजाब में हुए हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने सारा कुछ लोगों को भी दिया है और अपनी संस्कृति को भी संभाल के रखा है।
2: जी बिल्कुल, आप भी कुछ गुनगुनाना चाहें तो गुनगुना सकते हैं।
1: एक गुरदास मान का गीत है, हम सुनाते हैं, बाबे भंगड़ा पाउंदे ने
2: क्या बात है,
0: जी।
2: सुनाइए, हम
1: ओ
2: भी भंगड़ा पाएंगे।
1: बह के देख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, बह के देख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने। बस इतनी लाइन ही
2: क्या
1: हम लोग
2: बात
1: बोलते
2: है,
1: हैं
2: क्या बात
1: पंजाबी
2: है, दिल खुश कर दिया जी
1: बोलते हैं।
2: आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़ने के लिए।
1: बिल्कुल जी, हम तो तब से हुए हैं जब से हम हमारे इधर मीडियम में भी चल जाता है ना, ऐसे एफएम में चल
2: जी
1: जाता है,
2: जी
1: रेडियो चल जाता है।
2: जी आप किसी भी
1: अभी
2: माध्यम से सुनिए, लेकिन सुनते रहिए
1: तो
2: आकाशवाणी
1: न्यूज़ ऑन
2: धर्मशाला।
1: एआरआई, अभी तो न्यूज़ ऑन एआरआई ऐप में।
2: जी लगता है फोन कॉल कट चुकी है, लेकिन न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप का जिक्र किया है और इस माध्यम से भी हमारे बहुत से श्रोता हमसे जुड़ते हैं।
0: हेलो
3: हेलो। हाँ जी नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से हमें कॉल किया है?
3: हाँ जी मैम, मैं शारदा बात कर रही हूँ, बैजनाथ गांव सोनपुर से बात कर रही हूँ।
0: शारदा जी, पहले तो हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, फिर जानना चाहेंगे आपके रेडियो से जुड़े हुए कुछ मीठे मीठे अनुभवों को।
3: हाँ जी मैम, धन्यवाद। साथ में सर जी को भी नमस्कार।
2: जी
3: हाँ जी मैम,
2: नमस्कार
3: ओ हाँ जी नमस्कार सर जी।
2: जी कहिए, क्या
3: हाँ
2: कहना
3: जी,
2: चाहेंगे आज के दिन के बारे में?
3: आज के दिन में मैं कहना चाहूंगी कि रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी स्टाफ सभी को शुभकामनाएं और रेडियो को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, सारे श्रोतों को शुभकामनाएं।
0: जी शुक्रिया।
3: हाँ जी मैम, तो रेडियो के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मैम। जब सुबह से शुरू होती है तो टाइम समय जो साथ साथ चलता रहता है, काम
0: जी,
3: भी
0: जी.
3: होता रहता है और मनोरंजन भी होता रहता है, साथ में देश विदेश की खबरें और सब कुछ मनोरंजन इसमें होता है। और मैम मैं अपने पापा के साथ, मेरे पापा आर्मी में थे तो मैं 1985 से रेडियो के साथ जुड़ी हूँ।
0: जी बहुत
3: तो हम, हाँ जी सारे बहन भाई ना उसमें से जुड़े हुए हैं हम, तो
2: जी
3: हम सारे बहन भाई ये रेडियो सुनते हैं मैम।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, आप सभी मिलजुल कर रेडियो सुनते हैं और रेडियो का भी।
3: हाँ जी, धर्मशाला के साथ में एक बहुत प्यारी सी याद रखना था कि
2: जल्दी से बोलिए।
3: हाँ जी,
2: समय कम बचा है।
3: हो गया तो मैंने रेडियो सुना, अच्छा सुना, पापा के साथ सुना। हाँ जी, हाँ जी सर, धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया।
3: हाँ हाँ जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है। ये बताइए कौन है और कहाँ से कॉल कर रहे हैं।
1: जी, नमस्कार मैम, मैं रचिता हूँ, मैं पठानकोट से बात कर रही हूँ।
0: नमस्कार रचिता जी, कार्यक्रम में स्वागत है। जल्दी से, हमारे पास समय बिल्कुल जो है वो कम बचा हुआ है, आप जल्दी से अपनी यादें हमसे साझा कीजिए।
1: जी मैम, ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये रेडियो जो है ये तो परिवारों को भी जोड़ के रखता है। मुझे ये
0: जी
1: रेडियो की आदत मेरी मम्मी से मिली है। वो फौजी भाइयों का कार्यक्रम सुनते थे, तब से हम सुनते आ रहे हैं। अगली जनरेशन को भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं,
0: जी जी
1: क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, जो भी हो जाए, पर जो रेडियो सुनने का मजा है, जो उसके थ्रू माध्यम से बात करने का मजा है,
0: जी
1: वो इसी में है।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी यादों को साझा करने के लिए, और इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, हम भी यही दुआ करते हैं कि आप सभी इसी तरह से जुड़े रहें आकाशवाणी धर्मशाला के संग, और हम भी इसी तरह से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत जो हैं वो आपके लिए पेश करते रहें।
1: जी, आज का ये कार्यक्रम अब संजीव जो है समाप्ति की ओर है।
0: जी हाँ बिल्कुल, और चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपने दोस्त संजीव
1: और नीमा शर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप है आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ सुबह के 10 बज चुके हैं और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गाने सुहाने प्रोग्राम।

सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज धड़कन फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है अलका याग्निक और साथियों ने। नदीम श्रवण ने संगीत दिया है इस गीत का और बोल हैं समीर के।

कारवा गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। कार्यक्रम की अगली पेशकश शान और सुनिधि चौहान की युगल स्वरों में। विशाल शेखर ने इस गीत का संगीत दिया है और बोल हैं जावेद अख्तर के।

मोनाली ठाकुर और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म थी बागी। कुमार की शब्द रचना को संगीत में ढाला था मीत ब्रदर्स ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
3: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
7: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
6: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
7: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
6: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
7: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। और लीजिए अब सुनिए सिंघम फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल ने और बोल है इस गीत के लिखे स्वानंद किरकिरे ने।

श्रोताओं, ये रही गीतों का कारवां कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, जिसे हमने लिया है फिल्म हीरोपंती से। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने इस गीत को गाया है, संगीत दिया है साजिद वाजिद ने, और बोल हैं कौसर मुनीर के।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतों का कारवा यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

प्रेम सिंह और साथी का गाया ये हिमाचली लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए महेंद्रू राम का गाया ये लोकगीत।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अंजना रीता और उस सखियों का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं नरोत्तम और साथियों की आवाज़ में।

नरोत्तम और साथियों के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम पहाड़ों के सुर यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के निकट संजौली में लगभग 3,18,00,000 रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। इस स्टेडियम में रसोईघर, चेंजिंग रूम, शौचालय व ओपन हॉल जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सहित विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री का बाद में मशोबरा में निर्मित नवजीवन, नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। ये केंद्र नशे की समस्या से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करेगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों से जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सेवा, समर्पण

0: जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। शिमला में उनसे मिलने आए भाजपा समर्थित नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि जन प्रतिनिधियों की भूमिका लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने व संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन जोरों पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, डलहौजी, मनाली व खजियार सहित अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती तादाद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे शिमला जिला संवाददाता ने बताया कि शिमला में हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
1: वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं, जिससे न केवल होटल कारोबार में तेजी आई है बल्कि शहर की सड़कों में जाम की समस्या भी बढ़ गई है। जाम के चलते आम लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। पिछले एक महीने में शिमला शहर में 8 लाख वाहनों की एंट्री हुई है। हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शहर के होटलों में लगभग 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वीकेंड पर शिमला की ओर आने वाले वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शोघी, तारादेवी, टूटीकंडी बाईपास और ढली जैसे प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ी है। इस बीच आज से शिमला में समर फेस्टिवल का आगाज भी होगा, जिससे पर्यटकों की तादाद में और इजाफा होने का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: उधर कुल्लू जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता के अनुसार सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला है।
2: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है तथा आजकल यहां मौसम भी सुहाना बना हुआ है। पर्यटक यहां पर रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं। शाम के समय मनाली के माल रोड में पर्यटक की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक वाहनों के आने से मनाली में जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है तथा स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को भी इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ है। मौसम विभाग ने कल यानी 9 व 10 जून को ऊना, बिलासपुर व सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 से 13 जून तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी, और कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं प्रवगिल की आवाज में गाए इस पंजाबी गीत के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर

0: और सुखविंदर सिंह सुखू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रही हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपके रेडियो हम सफर सीमा।
3: असी मार्ग

बबू मान के गाए इसी गीत के साथ थे। कार्यक्रम महक पंजाब दी यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 होने को है, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से

0: उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से। अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
0: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
0: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बुद्धू बनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना। क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर उफ,
3: अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
4: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
4: ठीक है।
3: चल चल चल चल, चल।
4: हाँ, हाँ,
3: हम दोनों
4: हाँ,
3: झाड़ियों में छुप जाते हैं।
4: हाँ, ठीक है,
3: चल, चल,
1: है। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
5: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया कोचू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।

0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
1: कहाँ है कोची और मंगला है?
2: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
0: रवि
4: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
4: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेंसन,
5: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
5: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
5: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से

0: कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। दोपहर के 12 बजे है, अब आप सुनेंगे सैनिकों के लिए कार्यक्रम।

सैनिक भाइयों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के सैनिकों के लिए कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म के इस गीत के साथ।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाजों में। फिल्म है माय नेम इज खान।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। और कार्यक्रम में सैनिक भाइयों, जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म झूम बराबर झूम से।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। कार्यक्रम में अगला जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सैनिकों के लिए कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एयरलिफ्ट फिल्म से।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे सुनो सखी कार्यक्रम।

0: परिवार
1: कार्यक्रम है सुनो सखी। और कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो सखी सीमा जी। सखियो, कैसी हैं आप और क्या कुछ चल रहा है इन दिनों? सखी, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और हाँ, व्यस्त भी होंगी अपने अपने घर परिवार के संग, और साथ ही गर्मियों के इस मौसम में खूब नज़ारे ले रही होंगी पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाओं के। जी हाँ, हिमाचल की ये खूबसूरत वादियाँ, देवदार और चील के घने जंगल, दूर तक बर्फ से ढकी चोटियाँ और सुबह शाम बादलों और पहाड़ों का शांत संगम, मानो ये खूबसूरत नज़ारा किसी और ही दुनिया में हमें ले जाता है। सच में सखियो, पहाड़ों में गर्मियाँ सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक अलग ही सुकून का एहसास है। तो आपने भी महसूस करना हो ये अनुभव तो ज़रूर रुख कीजिएगा इन शांत पहाड़ों की ओर, जहाँ जितनी ऊंची यहाँ की बर्फीली चोटियाँ हैं उतनी ही समृद्ध है यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के खान पान जो सादगी और सरलता से सबका दिल जीत लेते हैं, यहाँ के रीति रिवाज जिनमें पहाड़ों, देव परंपराओं, लोक संगीत, ग्रामीण परिवेश और प्रकृति से गहरे जुड़ाव का कण कण में आभास करवाते हैं। जी हाँ, यही तो है हमारा हिमाचल, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध है यहाँ के फल फूलों के लिए, ये जानी जाती है धरती सेब और चाय के बागानों के लिए, इसकी पहचान है यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर मठ, और अपने आप में सांस्कृतिक विरासत को संजोए है यहाँ के पौराणिक किले। सखियो, यहाँ की विभिन्न जातियाँ, धर्म और संप्रदाय अनेक होने के बावजूद भी एक हैं। तो सखियो, सोमवार के इस खास कार्यक्रम में चलिए हिमाचली संस्कृति को थोड़ा और करीब से जानें, और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आज की इस कड़ी में जोड़ते हैं चंबा भरमौर के क्षेत्र को, जो जाना जाता है अपने पर्वतीय और चुनौतीपूर्ण रास्तों के लिए, देवी देवताओं पर अटूट विश्वास के लिए, रावी नदी के कलकल करते जल और उसके तेज बहाव के लिए, 84 मंदिर और मिंजर मेले में पर्यटकों के सैलाब के लिए। बहुत कुछ अलग और अनोखा है हमारे हिमाचल के इस क्षेत्र में। जानेंगे कुछ अनोखे तथ्यों को भी जो अपनी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता स्वयं ही साबित करते हैं। लेकिन सखी, उससे पहले मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। तो बने रहिए FM धर्मशाला के साथ और सुनते रहिए सुनो सखी।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो सखी और सखियो। आज के इस कार्यक्रम में हिमाचल की संस्कृति को जानते हुए हम पहुंच चुके हैं चंबा। जी हाँ, रावी नदी के किनारे बसा ये गांव, या जिसे हम शहर भी कहते हैं, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। चंबा का नाम राजा साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर पड़ा और उनके नाम से ही एक मंदिर भी यहाँ बनवाया गया। बात करें यहाँ के मशहूर मिंजर मेले की, तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये मेला और जो चंबा के चौगान में लगता है। सखियो, ये मेला रावी नदी और मक्की की अच्छी फसल के सम्मान में मनाया जाता है। इसके साथ ही सखियो, सुई मेला भी अपनी ऐतिहासिकता और बलिदान के लिए जाना जाता है, जो खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ा हुआ है। बात करें इस मेले की सखियो, तो ये मेला बिल्कुल रानी सुनैना को जो है वो समर्पित है। ऐसा माना जाता है सखियो कि जब चंबा में पानी की भारी कमी हो गई थी, तो राज पुरोहितों ने राज परिवार से किसी का बलिदान मांगा था, तो रानी सुनैना ने अपना बलिदान दिया और वहीं बाद में सुई माता कहलाईं। ये मेला त्याग, जनकल्याण, महिला सम्मान और सामाजिक एकता का प्रतीक है। ये मेला प्रतीक है हम महिलाओं के अदम्य साहस का भी, जो समय आने पर अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। रानी सुनैना प्रेरणा है हम सब महिलाओं के लिए और वो हिम्मत और समर्पण की साक्षात देवी थी। जी हाँ सखियो, चंबा की संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, तो ये संस्कृति प्रकृति से भी गहरी जुड़ी हुई है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, देवदार के घने जंगल और ग्रामीण जीवन यहाँ की लोक परंपराओं में स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि चंबा सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि हिमाचली संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। बात करें यहाँ की हस्तकला और शिल्पकला की, तो चंबा रुमाल इसमें सबसे पहले आता है। इसमें हाथों से बहुत ही सुंदर कढ़ाई की जाती है और धार्मिक और सांस्कृतिक दृश्य भी बनाए जाते हैं। साथ ही इसमें रामायण, महाभारत, रासलीला और लोक जीवन के भी दृश्य बनाए जाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी सखियो कि इसे यूनेस्को द्वारा भी पारंपरिक कला के रूप में सराहा गया है। अब बात चंबा थाल की, ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, बल्कि चंबा की सांस्कृतिक पहचान और हस्तकला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। न जाने कितनी पीढ़ियों से बनता आ रहा ये चंबा थाल अपनी सुंदर नकाशी और पहाड़ी कला की झलक खुद में दर्शाता है। इसे कारीगरों द्वारा पीतल से बनाया जाता है और हाथों से ही सारी कलाकारी इसमें की जाती है। इसे विवाह शादियों में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है सखियो। साथ ही इसे सुख, समृद्धि, वैभव और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों में विशेष प्रसाद और देवी देवताओं को भोग परोसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही शादियों में इसे एक अच्छे शगुन स्वरूप दिया जाता है। इसी तरह सखियो, चंबा चप्पल भी अपनी एक विशेष पहचान रखती है। इसमें हुई जो सुंदर कढ़ाई, मजबूत चमड़े और आरामदायक डिजाइन के लिए ये जानी जाती है। और बात करें यहाँ के खान पान की, तो यहाँ की धाम बहुत ही स्वादिष्ट रहती है, जिसमें राजमा का मद्रा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और साथ ही साथ सखियो, इसे शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। और पहनावे की बात करें, तो चंबा के कुछ क्षेत्रों में लुआंचड़ी या चोला डोरा पहना जाता है और कई क्षेत्रों में पट्टू भी यहाँ पहना जाता है जिसे चांदी की एक डोर से लगाया जाता है। तो सखियो बातें अभी और भी, जी हाँ, हिमाचल की संस्कृति की हम बात कर रहे हैं और ये इतनी समृद्ध है कि किसी एक कार्यक्रम में तो इसे हम नहीं जो है वो पूरा कर सकते हैं। और यूं कहें गागर में सागर भरने वाली बात है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें और इस कार्यक्रम में हमने शामिल की हैं और साथ ही साथ शामिल किए हैं कुछ प्यारे से गीत भी। तो चलिए रुक करते हैं गीत संगीत की तरफ और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला से कार्यक्रम सुनो सखी।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को स्वागत है। इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: तेरी वाइफा है ना।
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
6: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
7: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
8: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: सुनो सखी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो सखी सीमा के संग। जी हाँ, और आज है सोमवार और सोमवार को रहती है हिमाचल की संस्कृति से जुड़ी जानकारी। जी हाँ, चंबा की हमने बात कर ली और अब थोड़ा सा चंबा से आगे बढ़ें तो आता है पहाड़ों में बसा भरमौर क्षेत्र जिसका पुराना नाम ब्रह्मपुर था। 400 वर्षों तक ये रियासत जो है वो राजधानी रहा चंबा की और बाद में इसे बदल दिया गया। यहाँ का प्रसिद्ध 84 मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र है जिसमें सखियों 84 सिद्धों की मूर्तियों के साथ भगवान शिव साक्षात विराजमान है। साथ ही दुनिया का एकमात्र यमराज मंदिर भी भरमौर क्षेत्र में ही है। मान्यता है सखियों कि मृत्यु के पश्चात आत्मा सबसे पहले यहीं अपनी हाजिरी देती है। चलिए मान्यताओं की बात है। और साथ ही साथ सखियों यहाँ के और मंदिरों की बात करें तो लक्ष्मण माता मंदिर यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ माँ महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में विराजमान है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो पहाड़ों में बसा कुगती क्षेत्र में कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय जी का मंदिर है और ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव के बड़े पुत्र जी हाँ कार्तिकेय जी को, जिसे स्थानीय भाषा में केलांग वजीर कहा जाता है। शिव शक्ति मंदिर छतराड़ी भरमौर तहसील में ही आता है और ये मंदिर 650 ईस्वी जो है वो पुराना माना जाता है और इसे लकड़ी की नक्काशी और वास्तुकला के लिए बहुत ही इसे जो है वो मशहूर माना जाता है। और जी हाँ, बात हमने कर ली इन यहाँ के मंदिरों की और आपको याद होगा सखियों जी हाँ हिमाचल की उस यात्रा की। जी हाँ, हिमाचल में जो है वो मणिमहेश यात्रा भी शुरू होती है और श्रद्धालु जो हैं वो ये यात्रा भी भरमौर से शुरू होती है और भगवान शिव की उस पद यात्रा पर पैदल चल देते हैं और ये शुरू होती है जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक। जी हाँ, मणिमहेश की पावन झील में स्नान करने के बाद ये यात्रा संपन्न होती है। इसी यात्रा के साथ एक और पौराणिक मान्यता जुड़ी है जी हाँ, छड़ी यात्रा की। तो छड़ी यात्रा इसकी प्रमुख परंपरा है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के मुकुट की मणि चमकती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम मणिमहेश पड़ा। ये केवल धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि हिमाचली संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यात्रा के दौरान लोकगीत भजन और पारंपरिक रीति रिवाज देखने को मिलते हैं और सच भी है सखियों, हमारी संस्कृति की झलक इन्हीं लोकगीतों और रीति रिवाजों में ही मिलती है। यहाँ के लोकगीत हमें ले जाते हैं उस दौर की तरफ जहाँ पुराने राजाओं और वीरों की वीर गाथाएं गानों के माध्यम से सुनी सुनाई जाती थी। लोक संस्कृति बसती है हमारे लोक नृत्यों में भी। यहाँ के लोक नृत्य हमारी भावनाओं और लोक जीवन की परंपराओं को अभिव्यक्त करते हैं, हमारी प्रथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित बनाए रखते हैं। ये प्रतीक है आनंद, उत्साह और सामाजिक जीवन के। जी हाँ, सामाजिक जीवन को ये प्रस्तुत करते हैं। ये झलक दिखाते हैं हिमाचल की सादगी की और यहाँ के इतिहास की। जी हाँ, प्रकृति, जीवन शैली, धार्मिक आस्थाओं के ये प्रतीक हैं और साथ ही साथ प्रतीक हैं सामूहिक एकता के भी। कई प्रकार की नाटियाँ यहाँ की जाती है, जैसे डंडारस, गदी नाटी, घुरई नृत्य, नवाला नृत्य और साथ ही साथ डांगी नृत्य। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मिली जुली सी संस्कृति है यहाँ की, और जितनी समृद्ध संस्कृति उतने ही मिलनसार यहाँ के लोग। तो जब भी दिल करे पहाड़ों की तरफ रुख करने का, ज़रूर चंबा और भरमौर क्षेत्र की तरफ आप जाएं और वहाँ की संस्कृति को करीब से जानें और गहराई से उसे और जानें। और चलिए अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। ये रहा अगला गीत, सभी सखियों की नज़र

जी सखियो, तो आज हमने जाना चंबा भरमौर क्षेत्र की संस्कृति के बारे में, वहाँ के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। अगले सोमवार इसी कड़ी में जानेंगे एक और क्षेत्र की संस्कृति को, विरासत को और वहाँ के भौगोलिक विभिन्नताओं को भी।

0: तो जानकारियों के सिलसिले को अब यहीं पर जी हाँ थाम देते हैं और लेते हैं आपसे अनुमति, लेकिन उससे पहले बता दें इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपनी रेडियो सखी सीमा को दें अनुमति। प्यारी सखियों नमस्कार।
1: Me

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfers, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding healthcare coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not implemented in the state. Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. The arrest comes in the wake of the Paltta Assembly re-election held on the 21st of last month. Just 48 hours before polling, Jahangir Khan dramatically withdrew from the contest, announcing at a press conference that he was stepping aside in support of a special development package promised by Chief Minister Shubhendu Adhikari. Despite his withdrawal, Khan's name remained on the ballot beside the Trinamool symbol and he finished fourth while the BJP candidate won the election. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren suffered a major legal setback today after a special PMLA court rejected his discharge petition in a money laundering case linked to 8.86 acres of land in Ranchi's Batgai area. The court had earlier reserved its order after hearing arguments from both sides. But while delivering its verdict, the court said there were sufficient grounds and materials on record to proceed with the case. It ruled that the accused could not be discharged at this stage and dismissed Soren's plea. In his discharge petition filed in December last year, Mr. Soren argued that the allegations were baseless. The Central Board of Secondary Education, CBSE, today said the application window for verification and re-evaluation for Class 12 examination 2026 remained fully functional during the 2nd to 7th of this month. During the period, more than 1,60,000 candidates successfully submitted requests for over 3,08,000 answer books. The system remained under continuous monitoring by dedicated cybersecurity teams throughout the operational period to prevent malicious traffic and cyber threats. It reminded that only those candidates who had applied for their scanned answer books during the preceding stage were eligible to avail the subsequent stage. Akashwani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashwani in 1956. Today, Akashwani operates through 591 stations across the country. Israel and Iran have traded fresh missile attacks on each other, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, launched a fresh wave of strikes on key Israeli military installations. The IRGC Aerospace Force said the operation, named Operation Nasr, targeted core sectors of two of Israel's most important air bases, Nevatim and Tel Nof. According to media reports, the operation was carried out in direct retaliation for recent Israeli missile strikes that hit Iranian radar sites at three separate locations across the country. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.6% lower during afternoon trade today. The Sensex fell 434 points to 73,809, while the Nifty dropped 145 points to 23,222 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

मेरी हद है कहाँ तक। जी हाँ, इस बात को हमें याद ज़रूर रखना चाहिए कि हमारी हदें कहाँ तक है। सागर के किनारे हम जाते हैं, अटकेलियाँ करते हैं, आनंद लेते हैं पानी के आने और जाने का, लहरों का आनंद लेते हैं, वहाँ की जो ठंडक होती है उसको महसूस करते हैं। दूर तक दिखता हुआ सागर, जहाँ उसका कोई किनारा नहीं दिखता है, सूरज डूबता रहता है, वो जो मंज़र होता है बहुत खूबसूरत होता है। क्या हमें इस खूबसूरती को बरकरार नहीं रखना चाहिए? ये प्रश्न अभी हमारे सामने है। जब हम समुद्र किनारे जाते हैं, बहुत सारी गंदगी फैला करके आते हैं, उसे गंदा करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी हदें हैं। तो इस बात को बताता हुआ ये गाना आपने सुना। मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर और शोमा आनंद पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समंदर सिर्फ पानी का विशाल संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं का आईना है। उसकी खामोशी में भी एक शोर महफिल है, इसकी हर लहर में एक रहस्य छुपा हुआ है, तो गहराइयों में दबी है एक असीम दुनिया। सदियों से बहता फिर भी ताज़ा लगता है, उसकी गहराइयों में कितने रहस्य दफन हैं, उसके हर मोती में कितने ख्वाब छुपे हैं। समंदर की शरण में जिंदगी मुस्कुराती है, उसकी विस्तृतता में एक आज़ादी का एहसास है। देखने में अथाह और शक्तिशाली समंदर फिर भी कितना बेबस है। यह बेबसी इंसानी फितरत और भावनाओं से भी मेल खाती है, जहाँ हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ खास चीज़ों के लिए लाचार होते हैं। अब आपको हम आगे जो गीत सुनवाने वाले हैं, ये झुक गया आसमान इस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, राजेंद्र कुमार और सायरा बानू पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि आज की इबारत में विशाल अनंत कभी शांत चित्त तो कभी विकराल रौद्र रूप सिंधु की महिमा बखान है, कभी अटखेलियां करती लहरों और ज्वार भाटा से पर्यटकों को आनंदित करती है तो कभी पर्यावरण असंतुलन से असंतुष्टि का प्रदर्शन अपने रौद्र रूप चक्रवातों और सुनामी से करती है। समंदर मानव कल्याण के लिए खनिज जीव जंतु संचार परिवहन देश सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ भी है। अनेकों रहस्यों को समेटे सिंधु आज भी दहाड़ते हुए आकर्षण की प्रधानता स्वयं प्रमाणित करती है। सागर की लहरों संग का मनोरंजक सफर का हमें इंतजार है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज बातें होंगे समुद्र की, जिसे हम सागर जलधि पयोधि रत्नाकर अर्णव आदि नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है, जिसमें महासागरों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। ये सूर्य की हानिकारक और तीव्र गर्मी को सोखकर वैश्विक तापमान को संतुलित रखता है। अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले सबसे बड़े सिंक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। गाना है सागर जैसी आंखों वाली, अभिनेत्री कौन है, उनका आज जन्मदिन भी है तो उन्हें हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनकी फिल्म का ये गाना सुनते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ से जावेद अख्तर के बोल संगीत आरडी बर्मन का।

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना है, सागर जैसी आंखों वाली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया। आज उनका जन्मदिन भी है, तो एक बार फिर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र केवल खारे पानी का अथाह विस्तार नहीं, बल्कि पृथ्वी का धड़कता हुआ हृदय है। दूर तक फैला उसका नीला कैनवास जितना मनोहारी है, उतनी ही गहरी उसकी संवेदनाएँ हैं। उसकी लहरें तट से मिलने की उत्कंठा में दौड़ती है, टूट जाती है, फिर भी जाते जाते सीप, शंख और मोतियों जैसी अनमोल सौगातें दे जाती है। मानव की उपेक्षा, प्रदूषण और प्रकृति की चुनौतियों को सहते हुए भी वो एक मौन तपस्वी की तरह बिना किसी शिकायत के सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सृष्टि के लिए जीवन संतुलन तथा समृद्धि का आधार बना रहता है। अनंत गहराइयों, असीम धैर्य और मानवीय भावनाओं के इस जीवंत दर्पण में अनगिनत कहानियां, रहस्य और जीवन के सूत्र समाये हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अनोखी रात फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज़, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत, संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। संजीव कुमार इस गाने में एक वाहन चलाते हुए दिखाई देते हैं, वो वाहन कौन सा है आप हमें बताइए।

अनोखी रात फिल्म का ये गाना संजीव कुमार पर फिल्माया गया है और इस फिल्मांकन में वो बैलगाड़ी चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि समुद्र हमें सिखाता है कि गहराई में ही असली खजाना छिपा होता है। ऊपर लहरों का शोर होता है लेकिन भीतर अनगिनत मोती पलते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि इसका यानी कि समुद्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी पृथ्वी को करीब 70% घेर के रखता है और हमें हवा पानी मुहैया करवाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। इसके किनारे खड़े होने पर अलग अलग समय में अलग अलग दृश्य देखने का रोमांच अलग ही होता है। ठंडी हवा के झोंके से मन आनंदित होता है तो कभी दूर तक शांत दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि समुद्र केवल भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि एक भावना है। इसे देखकर मन में असीम शांति और कभी कभी विचारों का ज्वार भाटा उठता है। यह बाहर जितनी अटखेलियां करता है इंसान के भीतर भी उतनी ही गहरी हलचल पैदा करता है। समुद्र की लहरें जब तट की रेतीली किनारे से टकराती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। लहरें अपने साथ गहरे समंदर में सुंदर सीप शंख और मोती तट पर छोड़ जाती है जिन्हें लोग यादों के तौर पर समेट लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगोली फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल और संगीत है शंकर जी जयकिशन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है आप बताइए हमें।

अभिनेत्री वैजयंती माला ये गीत गा रही हैं फिल्म में जो हमें दिखाई देता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सागर की लहरें किनारे से टकराकर लौट तो जाती है लेकिन हार कर नहीं, वे फिर जाती है, फिर कोशिश करती है। शायद इसी में जीवन का सबसे सुंदर संदेश छिपा है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व महासागर दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वस्थ महासागर ही स्वस्थ पृथ्वी और उज्जवल भविष्य की नींव है। बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाएं, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र, सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य, स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो, सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है, जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबां पर बस प्रकृति का साज। शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है। सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है। मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें, जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी दहशतें। समुद्र कहता है बहते रहो, ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत। प्रकृति का अटूट समर्पण यही कहता है, जो प्रेम में डूबा हो वही मोती बन पाता है। धन्यवाद आपका। और अब प्यार का सागर, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे हैं तो वहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी, हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे, और हमारी बातें अधूरी रह गई। हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुँचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ और साथ में कुछ और भी आवाज़ें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और ईला देसाई की इसमें आवाज़ें हैं, और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो, बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का सोलह श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयाँ हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है, जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपने सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आज़मी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज़ किसकी है बताइए हमें।

जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आज जिधर भी नजर जाती है सब दौड़ रहे हैं धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। इस अंधी दौड़ में हमारा सुख चैन कहीं खो गया है। न जाने कितने लोग इस रैट रेस के कारण अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बलि चढ़ा देते हैं। सारा धन और वैभव हमें मानसिक शांति नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए तो संतोष रूपी धन की आवश्यकता होती है। सब कुछ झटपट पा लेने की बजाय संतोष के साथ थोड़ा थोड़ा संचय ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए।

कई बार हम देखते हैं कि रहने वाले तो एक दो ही हैं और कई कमरों का मकान है। आभूषण और धन इकट्ठा करने की मानो होड़ सी लगी है। सोचकर देखिएगा, हमारी आवश्यकता तो बेहद कम होती है और बाकी संचय तो हमारे ईगो को तुष्ट करने के लिए ही होता है, है ना? और इस चक्कर में हमारा जीवन पिसता रहता है। अगर हम संतोष धन को अपना लें तो हमारा परिवार सुखी परिवार लगेगा और अपना छोटा सा घर भी मानो सोने के महल जैसा मालूम होगा।

सुना सुना है। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सुना सुना है। मन में झूम कहूंगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।

0: भारत ऋषियों मुनियों का देश रहा है। यहाँ त्याग और संतोष को महान गुण माना गया है। इन गुणों को हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानो भूलते से जा रहे हैं। आज आवश्यकता है सहज रूप से जीवन यापन की, मस्त मौला होकर बेफिक्र अंदाज में जीने की। संतोषी व्यक्ति अपने आप में, अपने अंतर्मन में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है।
1: मैं हूँ झुम झुम झुम।

तो दोस्तों, जीवन में संतोष हमारे मन को शांत रखता है और हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाता है। तभी तो कहते हैं, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र,
3: गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
4: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
5: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
6: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
7: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
8: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज

0: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
2: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
0: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
5: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
4: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं, इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
4: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का

0: ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आज और कल। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया सी रामचंद्र ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज़ लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में है, बी डी मिश्रा ने लिखा है, एस एन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजे हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुँच सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के संजौली में लगभग 3,18,00,000 रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नशा मुक्ति का संदेश देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से ही मशोबरा में महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार का पहला नशा मुक्ति केंद्र भी आरंभ हो गया है और जल्द ही दूसरा महिला नशा मुक्ति केंद्र कांगड़ा में खोला जाएगा।
4: समर फेस्टिवल शिमला का आगाज हर वर्ष होता था, इस बार इस कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम को जोड़ा गया है जो चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीमें वो सम्मिलित हो रही है और इसमें चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल जो हमारा ये आयोजन है इसके लिए आज शिमला समर फेस्टिवल से आज इसकी शुरुआत। मशोबरा में पहला डी एडिक्शन सेंटर जो हमारी लेडीज है उसके लिए खोला जा रहा है।
2: इस बीच अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत है, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती विवाद पर पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन और निराधार है। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी नेता या कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए किसी भी सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति की बैठक में नीरज भारती घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी। विनोद जिंटा ने यह भी कहा कि भविष्य में यदि कोई नेता या कार्यकर्ता इस तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने नीरज भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। इस बीच प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप निभारद्वाज ने नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर है और इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीप निभारद्वाज ने दावा किया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के भीतर चल रही खींचतान अब सार्वजनिक मंचों तक पहुंच गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार के भीतर भारी असंतोष और सरकार दिशाहीन हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब उसके नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर उसका उचित जवाब देगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
5: ये थे प्रादेशिक समाचार। आइए अब सुने सामयिक चर्चा। विषय है, मोदी सरकार के 12 वर्षों ने भारत के निर्माण में जन आकांक्षाओं को दिया नया आकार। वाचक हैं राकेश शर्मा।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल ने भारत को अवसरों, इनोवेशन और आत्मविश्वास से प्रेरित एक आकांक्षी देश में बदल दिया है। गवर्नेंस में सुधार, टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण और नागरिकों पर केंद्रित नीतियों ने भारतीयों के अपने भविष्य को देखने के नजरिए को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, अगले 7 से 8 वर्ष में बढ़कर लगभग 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। भारत का अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम कुछ साल पहले एकल अंकों की संख्या से बढ़कर आज लगभग 400 हो गया है, जिसमें से एक स्टार्टअप ने हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य अब लगभग 9 अरब डॉलर है और अगले 7 से 8 वर्ष के अंत तक इसके 45 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम 2014 में लगभग 350 से 400 स्टार्टअप से बढ़कर वर्तमान में 23 लाख से अधिक हो गया है, जिससे लगभग 24 से 25 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। इनमें से लगभग आधे स्टार्टअप द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों में स्थित है, जबकि 35 से 39% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित है। हाल ही में हुए एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण में लगभग 1500 मीडियाकर्मी और लगभग 10,000 दर्शक शामिल हुए, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। सरकार के कुछ शुरुआती सुधार नागरिक केंद्रित शासन मॉडल की ओर बदलाव का प्रतीक थे। इन सुधारों से ये विश्वास पैदा हुआ कि सफलता प्रभाव या सिफारिश की बजाय योग्यता और कड़ी मेहनत से प्राप्त की जा सकती है। पिछले 12 वर्षों में प्रक्रियात्मक के साथ साथ सबसे गहरा परिवर्तन मनोवैज्ञानिक भी रहा है और भारत में एक नई महत्वाकांक्षी संस्कृति का उदय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में मानसिकता में जो बदलाव आया है, वो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। ये बदलाव छोटे शहरों और गैर महानगरीय पृष्ठभूमि से उभरने वाले सिविल सेवा परीक्षा के शीर्ष विजेताओं की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अवसरों के लोकतंत्रीकरण का दर्शाव है। सरकार ने एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया है जिसमें नागरिक राष्ट्रीय वैज्ञानिक उपलब्धियों से अधिकाधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और नवाचार को एक साझा राष्ट्रीय प्रयास के रूप में देखते हैं। मोदी ने असफलताओं के बाद वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और उनकी सफलताओं का जश्न मनाया, जिससे ये धारणा सामान्य हो गई है कि विफलता नवाचार और प्रगति का एक हिस्सा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारत की सफल लैंडिंग ने विज्ञान में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई है, जबकि भारतीय लूनर मिशन की पिछली खोजों से चंद्रमा पर पानी के अणुओं के सबूतों का पता लगाने में मदद मिली थी। मोदी सरकार ने दशकों से सीमित पहुंच वाले रणनीतिक क्षेत्रों जैसे कि अंतरिक्ष और परमाणु इकोसिस्टम के कुछ हिस्सों को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। ये क्षेत्र परंपरागत रूप से बंद दरवाजों के पीछे संचालित होते थे, लेकिन अब उद्योग, उद्यमियों और स्टार्टअप्स के साथ एकीकृत हो गए हैं। इस नीतिगत बदलाव ने करियर के अवसरों का विस्तार किया है, नवाचार को गति दी है और भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया है। विकसित भारत जैसी पहल घरेलू तकनीक तुलनाओं की बजाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारत की प्रगति का मूल्यांकन करने पर व्यापक जोर देती है। कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में भी सार्वभौमिक और पारदर्शी कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति हुई है। आवास और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत जाति, धर्म या किसी अन्य संबद्धता के आधार पर भेदभाव किए बिना लाभ वितरित किए जा रहे हैं, जिससे सार्वजनिक संस्थानों और शासन प्रणालियों में अधिक विश्वास पैदा हो रहा है। भारत के विकास के सफर में सार्वजनिक निजी सहयोग को और मजबूत करना, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों का निरंतर विस्तार करना और प्रदर्शन एवं नवाचार के वैश्विक मानकों का पालन करना आवश्यक होगा। सरकार का दीर्घकालिक उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि एक सशक्त और महत्वाकांक्षी समाज का निर्माण करना है जो 2047 तक एक विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान दे सके। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
1: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
3: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
2: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
3: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे। किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका ये सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा ये सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हांफकर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या, लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच,
4: तुमसे मतलब?
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
3: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
4: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
0: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात

0: बात नहीं कि वो रूपहीन हो, शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
1: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
2: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
1: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
2: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है, उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी, क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके, इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
1: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहाँ पर मिलती ही मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
1: ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांधी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर हैं। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहाँ स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, प्रकृति के उन नज़ारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
0: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
1: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए, सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है, बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल साथ द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
0: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवबर्मन ने संगीत दिया। फिल्म बारूद।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले
0: अरे
1: हैं,
0: आपने मुझे बोल ही नहीं दे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से मतलब ये तपाक से बोलना हुआ लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया लेकिन आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए, तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं, कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है, और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी, और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल,
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो, तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को पर वार करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए, पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है, इन्होंने ये बात लिख करके।
0: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहाँ लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है, इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं, सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में ना काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं, तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए, एक बड़ा मज़ेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी की
0: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
1: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है, अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुँचाऊँ।
0: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट
1: तपाक से
0: ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही बात
0: तो ये क्या वजह है? हमें लगता है कि
1: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती हैं?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हमें
1: आज ही कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से, तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी।
0: तो ये रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं कि बनाया भी है, कभी बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
1: अभी तो
0: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
1: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे, आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही हैं?
1: आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी। आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए, और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटा चम्मच अमचूर, और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है, और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए, और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो लोई आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का ब्रावन भरिए, और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आँच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियाँ तैयार हो जाए।
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये टाली भी नहीं जाएगी
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल, 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ, और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकाल कर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आँच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें, अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी।
0: और अब ये गाना सुनिए।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज़ थी। और अब घड़ी की ओर ज़रा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और हमारे केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और या बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफ़ी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज़ होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
1: सी, डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
0: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नज़रिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
1: टाइप वन के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वज़न कम होना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफ़ी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
0: ओहो,
1: इतना ज्यादा शुगर होता है।
0: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
1: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
0: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वज़न कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज़्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
1: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा, बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत ज़रूरी है।
0: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप
1: श्रोताओं को। मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
0: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज़ आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज़ है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है, या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज़ का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते
0: तो कभी
1: हैं।
0: कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज़ का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज़ का रोगी है क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं,
1: सही
0: पूरा
1: बात,
0: हिस्ट्री मालूम पड़ता है।
1: यस।
0: कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज़ मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफ़ें क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
1: पेशेंट्स को दूर बहुत टेंशन होती है।
0: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे एमडी के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज़ होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज़ को डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ,
1: तो इसमें जो है इंसुलिन

0: जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज़ इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है। कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज़ आ जाता है?
1: ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज़ हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज़ आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज़ होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे ही डायबिटीज़ के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता है?
1: टाइप 1 डायबिटीज़ में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज़ है कि नहीं। बट अगर बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन इज़ द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
1: जी सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
0: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दौर्बल्यता आती है?
1: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
1: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स हैं जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दें, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशंस है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार हैं।

0: है जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वज़न मोटापा जिसे हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज़ की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है। इसके कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली हैं।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे ज़मीं पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे ज़मीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन हैं। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि हैं, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज़ देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है।
1: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है, ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी स्टडीज़ है जो बताती हैं कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो। बीच में जो दिमाग है उसको, बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
0: जी।
1: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी, काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
0: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
1: जी। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
0: जी।
1: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊँ तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरेक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं।

0: ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज़ का असर होता है।
1: ओहो
0: तीसरा असर डायबिटीज़ का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीज़ों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में ज़ख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये ज़ख्म बढ़ता जाता है और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा, मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुटवेयर जो है वो प्रॉपर फुटवेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज़ फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहने और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: में जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूँगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम ख़त्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज़ है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए और तली हुई चीज़ें, फ्राइड स्टफ़, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज़्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज़ की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।

0: एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री। तो व्हाट इज शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स हैं जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है।
0: जी
1: स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
0: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
1: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
0: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार आप सुनेंगे। 5 बजे हिंदी में, 5:05 पर अंग्रेजी में ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहे।
4: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का

0: सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रमीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाया है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी नेता सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान 112 रन ही बना सका। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 146 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अनूप जलोटा का गाया ये भजन अभी आपने सुना। दोस्तों, जीवन में जब भी हम हताश निराश हो जाते हैं, प्रभु नाम का स्मरण एक ऐसी ताकत है जिसे अपने साथ अगर हम रखें तो हर राह सरल लगती है और हर परिस्थिति से हम आसानी से निकल जाते हैं। प्रभु नाम के इस गुणगान को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये कृष्ण भजन।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप जुड़े हुए हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। गैर फिल्मी भजनों का आनंद आप ले रहे हैं। कार्यक्रम में अगला भजन आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। इस भजन को गाया है नरेंद्र चंचल ने। माँ के नाम की जोत जब हम अपने हृदय में जगा लेते हैं तो हमारे दिल का हर अंधकार दूर हो जाता है और माँ के नाम की रोशनी हमारे जीवन को प्रकाशित कर हमें सही राह दिखाती है।

अभी आप सुन रहे थे कुछ गैर फिल्मी भजन। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने इसे ट्यून किया है और शाम के 5:30 हुए हैं। लेकर के हम हाजिर हैं युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

प्रोग्राम है युवा मंच। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम। और जी हाँ, आज भी कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातें करेंगे। अगले कुछ मिनट तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जी हाँ, 5:55 तक हम आपके साथ होंगे और बातें होंगी, कुछ गीत संगीत होगा और बीच में कमर्शियल ब्रेक्स के लिए भी हम रुकेंगे। युवा मंच का श्रोताओं, आज है सेगमेंट नई उड़ान, जहां बात करेंगे सपनों की, जुनून की और हौसलों की, जो साधारण रास्तों को भी खास बना देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कुछ सबक हमें किताबों से नहीं मिलते, जिंदगी हमें कुछ सबक सिखाती है और उसी तरह जो हमारी मंजिलें होती हैं वो हमें किसी नक्शे पर या किसी मैप पर नहीं मिलती, उनके लिए हमें खुद कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। रास्तों से गुजर कर हमें अपनी मंजिल

0: खोजनी पड़ती है। और जब अपनी मंजिल की ओर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे साथ एक अनोखा सा जुनून होता है और उसी जुनून की साथ साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। और आज नई उड़ान के अंतर्गत श्रोताओं, जैसा कि हम बात करते हैं, हमारे साथ कोई ना कोई युवा प्रतिभा जुड़ती है। और आज हमारे साथ जो युवा प्रतिभा है उनसे आपको रूबरू आज हम करवाएंगे, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे, जानेंगे उनका ज़िंदगी में कैसा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ उनके लिए ख़ास है। और नाम उनका बता दें, गंगा इनका नाम है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही धार्मिक सा ये नाम है। अपने आप में बहुत कुछ लिए हुए ये नाम है, हमारी आस्था के साथ ये नाम जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। गंगा, स्टूडियोज़ में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद दी
0: जी। बताइए गंगा, अपने बारे में कुछ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अलग सा आपका नाम है, क्या कुछ कहानी है, किसने रखा आपका ये नाम?
1: मेरे पिताजी ने रखा है मेरा नाम ये
0: जी। और कुछ रीज़न, कुछ कारण है इस नाम को रखने के पीछे उनका?
1: जी हाँ, रीज़न है
0: जी।
1: जैसे हमारे नए घर का पूजन हो रहा था, तो जैसे कि ये भी पवित्र है, पवित्र स्थल पर हुआ था जी। मेरा जन्म भी उसी घर पर हुआ था, तो जैसे कि पंडित ने भी गौ शब्द से मेरा नाम रखना चाहता, तो मेरे पिताजी ने खुद मेरा नाम गंगा रखा है
0: जी।
1: तो मुझे इस पर गर्व है
0: जी। बहुत बढ़िया, और हमें भी बहुत अच्छा आज आपके साथ मिलके लग रहा है, क्योंकि ऐसे नाम बहुत कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे नाम होते हैं। और ऐसे भगवान को हम बेशक याद ना कर पाए, लेकिन अगर आपका नाम घर में दिन में 10-12 बार दोहराया जाता होगा तो हम लोगों को भी आज पुण्य मिल रहा है, जैसे आपके घर वालों को मिल रहा होगा। गंगा, बताइए आप क्या करती हैं, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को, हमारे युवा दोस्तों को बताइए।
1: रिसेंटली मैं अभी MA कर रही हूँ, अभी मैं 4th सेम में हूँ, अभी मेरा MA की डिग्री हो जाएगी
0: जी। MA कौन से सब्जेक्ट में है आपका?
1: इंग्लिश।
0: इंग्लिश में आपका MA हो रहा है। और जिस चीज़ में आप रुचि रखती हैं और जिस लिए आज हमारे साथ आप जुड़ी हुई हैं, वो है संगीत। संगीत से कैसा रिश्ता है आपका, क्यों आपका रुझान है इस और?
1: संगीत मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेरे पिताजी भी गुनगुनाते रहते हैं
0: जी जी,
1: तो इसीलिए मैं भी ऐसे जैसे 3rd से मैं ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ। और मुझे स्टेज भी 3rd क्लास से मिला है, जैसे स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होते हैं, एक्टिविटी होती है और नाटी वगैरह जाती है कहीं बाहर डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक लेवल में, तो मैं वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करती आई हूँ और उधर जीतती भी आई हूँ। तो उससे लगता है मेरे पिताजी वगैरह को कि ठीक है म्यूज़िक में कर रही है, तो घर में बहुत खुशी रहती है कि म्यूज़िक में कर रही है हमारी लड़की
0: जी। बहुत अच्छा। गंगा, आपने बात की नाटी की, तो पहले ये बताइए कि किस इलाके से आप हैं, कौन से ज़िले से संबंध रखती हैं आप?
1: मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हूँ, तो कुल्लू में हमारे नाटी बहुत फेमस है
0: जी। कुल्लू में कौन सी जगह से हैं आप?
1: बंजार
0: जी। बंजार से आप हैं, तो ये बताइए गंगा के म्यूज़िक की तरफ आपका झुकाव, जैसे आप बता रही हैं कि आप अंग्रेज़ी विषय में, इंग्लिश में आप कर रही हैं MA, तो कैसा लगता है, एक तरफ आप इंग्लिश पढ़ रही हैं दूसरी तरफ संगीत, बिल्कुल दोनों अलग रास्ते हैं, ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से, तो इंग्लिश के साथ साथ म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट कैसे बना हुआ है आपका?
1: म्यूज़िक के साथ साथ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, जहाँ कहीं भी जाना हो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसलिए
0: जी। उसके आपने संगीत के साथ इंग्लिश,
1: हाँ जी,
0: तो इंग्लिश को आपने ऐसे एज सब्जेक्ट नहीं चुना है, आपने इंग्लिश में कोई प्रोफेशनल डिग्री वगैरह की है?
1: जैसे मेजर मेरा ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश ही रहा था
0: जी। तो संगीत आपने कहाँ सीखा?
1: संगीत जैसे गॉड गिफ्ट ही है, पहले से
0: गॉड गिफ्टेड है आपको जी। तो हमारे श्रोताओं को, हमारे युवा दोस्तों को कुछ गाकर गुनगुनाकर बताएंगे?
1: जी हाँ
0: जी, हम भी आपकी मधुर आवाज सुने। क्या सुना रही हैं?
1: सिटी लाइट की सॉन्ग एक, मुस्कुराने की वजह
0: जी। गाइए फिर।

0: बहुत अच्छा गंगा, आप जैसे गंगा की निर्मल लहरें होती हैं, पावन सी, वैसी ही आपकी प्यारी सी मधुर सी आवाज़ है। तो आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं गंगा?
1: नहीं, सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ।
0: नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकती हैं। और जैसे आपको गाने का शौक है तो आपकी प्रतिभा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हम चाहेंगे आप सोशल मीडिया पर भी आएं। और आज हमारे कार्यक्रम में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और एक वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, और कमर्शियल ब्रेक के बाद आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: सजदा
0: सजदा जी, माय नेम इज़ खान फिल्म का ये गीत आपने सुनना है। बिल्कुल, आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through six airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
5: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
6: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
5: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
6: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
5: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
6: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: प्रोग्राम है युवा मंच और नई उड़ान के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आज अपनी युवा प्रतिभा से जो है गंगा। गंगा एक बार गीत के बाद कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम
0: जी। गंगा, अब आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत हमारे लिए रहता है जिसको सुनकर या जिसको देखकर हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा कौन है जिससे आपको प्रेरणा मिली इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की?
1: वैसे तो मेरे पिताजी से, पर वो टीवी चैनल पे जैसे मस्ती चैनल हो गया, 9X हुआ, जैसे ओल्ड सॉन्ग जिस पे लगते हैं। मेरे पिताजी रेडियो भी सुनते थे
0: जी,
1: तो ऐसे पहले से ही ऐसे सुनते थे, तो प्रेरणा स्रोत तो वैसे तो कोई नहीं है
0: जी। और कोई ऐसे गायक हैं हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म

0: इंडस्ट्री में जिन्हें आप सराहती हैं, जिन्हें आप सुनती हैं?
1: जी हाँ, लता मंगेशकर जी।
0: जी, लता मंगेशकर जी स्वर कोकिला हैं, और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसने लता मंगेशकर को ना सुना होगा। तो लता मंगेशकर जी के गाने आप सुनती हैं, तो कोई गीत उनका जो आपको अच्छा लगता हो हमारे लिए गुनगुनाएंगी?
1: हाँ जी बिल्कुल
0: जी,
1: लग जा गले गाती हूँ
0: जी बिल्कुल।

0: जी गंगा, बहुत अच्छा। गंगा ये बताइए, आप अभी एमए इंग्लिश कर रही हैं, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स पढ़े? आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है म्यूजिक क्या?
1: ग्रेजुएशन में मेरा फाइनल ईयर में जेनरिक सब्जेक्ट था।
0: जी जेनरिक, इस चीज़ को बताएं क्या है ये?
1: जेनरिक जैसे आप इंटरेस्ट के हिसाब से फाइनल ईयर में कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में था।
0: तो आपने एक साल म्यूजिक वहाँ पढ़ा है?
1: जी।
0: तो आपने कॉलेज लेवल पे कोई फेस्टिवल्स जैसे होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है?
1: यूथ फेस्टिवल में जाती थी मैं।
0: जी, तो अभी हाल फिलहाल में किसी यूथ फेस्टिवल में आप जाके आई हैं?
1: शिमला में गई थी मैं।
0: जी शिमला में, वहाँ क्या गाया आपने?
1: मैंने वहाँ कुल्लू का एक लामन बोलते हैं, जैसे गजल में होता है मूड के हिसाब से पैशन चेंज हो जाता है एक्सप्रेशन, वैसे।
0: जी तो सुनाएंगी जरा?
1: हाँ
0: जी बिल्कुल।

0: जी बहुत अच्छा। गंगा, इसका क्या मतलब है इस गीत का?
1: जैसे कि जनवरी का मंथ होता है ना हमारे,
0: जी
1: तो जैसे पहाड़ों में चारों तरफ बर्फ गिरी होती है,
0: जी
1: तो ये लवर अपनी बिलवर्ड को
0: जी
1: गा
0: जी
1: रहा है
0: जी
1: कि याद के तौर पर।
0: जी याद
1: जी
0: करते हुए।
1: हाँ जी
0: जी गंगा, आपने जैसे अभी इंग्लिश विषय लिया है, तो आपको नहीं लगता कि संगीत विषय के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए था?
1: लगता तो ऐसे ही था,
0: जी, तो आपने संगीत क्यों नहीं चुना?
1: पर मैं थोड़े मेरे जो क्षेत्र है ना
0: जी जी
1: वहाँ पे म्यूजिक को थोड़ा अच्छा नहीं मानते, थोड़ा बैकवर्ड टाइप का, इंटीरियर टाइप।
0: जी बिल्कुल, आपकी बात हम समझ रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? थोड़ा सोच का फर्क है, लोगों को लगता है कि संगीत में शायद अच्छा भविष्य नहीं है। जी, तो लोगों को वक्त के साथ अपनी सोच बदलनी चाहिए। संगीत में बहुत सुनहरा, बहुत उज्जवल भविष्य है। आप टीवी पर अक्सर देखती होंगी जो आजकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जहाँ पर विजेता जो है उनको बहुत बड़ी बड़ी इनाम में राशि मिलती है ना, और साथ ही साथ उनको मौके भी मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में गाने के। चलिए, जैसा आपका है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपका परिवार, आपके दोस्त जो हैं, वो तो आपके साथ हैं हमेशा, आपका हौसला अफजाई करते हैं?
1: मेरे घर वाले तो मेरे साथ है, और मेरे फ्रेंड सर्कल भी, अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है श्रुति, बाहर है अभी।
0: जी बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि जीवन में आपके माता पिता, आपके परिवार जन जितने भी हैं, उनका सहारा, उनका आशीर्वाद, उनका साथ आपके साथ यूं ही बना रहे, आपके दोस्त आपके साथ यूं ही बने रहें। और आप आज हमारे स्टूडियोज़ में आई, हमसे बातचीत की आपने, और हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे आप ही की तरह जैसे और भी युवा हैं, वो भी अपनी जो शौक है उसमें आगे बढ़ें और अपना शौक पूरा करें। कार्यक्रम में चलते चलते एक गीत आपको और सुनाएंगे, आप ही की पसंद का। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: सजदा,
0: सजदा तो हमने सुना दिया आपको, उसके अलावा बताइए।
1: साजन फिल्म को।
0: साजन फिल्म का कोई भी गीत सुना दें।
1: हाँ जी
0: जी चलिए, बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको आपकी पसंद का एक और गीत सुना रहे हैं।

0: जी गंगा, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम आकाशवाणी धर्मशाला में मुझे बुलाने के लिए।
0: जी और श्रोताओं, आप चलते चलते यही कहेंगे कि अपने जुनून को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, अपने जुनून का हाथ थाम कर आपको आगे बढ़ना है और एक ना एक दिन आपको उड़ान जरूर मिलेगी। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ आज की नई उड़ान कार्यक्रम का सफर अब यहीं पर समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल शर्मा। आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से। 6:05 पर किसान बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा। 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजां गराइंदियां। 7:00 समाचार आप सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही विशेष कार्यक्रम किसान सशक्तिकरण रिले किया जाएगा। सात बजकर 42 पर आकाशवाणी शिमला से आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। रात 8:00 मिले जुले गीतों का आनंद लीजिएगा, कार्यक्रम होगा सबरस। 8:30 पर देशगान सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार आप सुनेंगे और आज के कार्यक्रम में संगीतकार क्रम में हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार जेपी कौशिक द्वारा संगीत पथ किए कुछ फिल्मी गीत। हिमाचली गीतों का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10:00 आप सुन सकते हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। ये कार्यक्रम रात 10:00 से 11:00 तक आप सुनेंगे और 11:00 यानी सभा के अंत में समाचार आपको सुनवाए जाएंगे। 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे, इन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये था कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही पलों में यानी 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, जिनके लिए कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे जिम्मेदार, संवेदनशील और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नागरिक बन सकें। राज्यपाल आज शिमला में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमारी पहचान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्वतों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। रामनाथ कोविंद आज कुल्लू के घुड़दौड़ स्थित ऋषि भूमि योग आश्रम परिसर में नवस्थापित ऋषि भूमि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति और मानव का संबंध अत्यंत गहरा और हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने संजौली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कहा कि चक्का जाम किसी समस्या का हल नहीं है और सरकार किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए उपलब्ध है।
5: जो भी कानून हाथ में लेगा वो गलत बात है। अगर ये सोचे कि इतने लोग ट्रैफिक में चलते हैं, वही प्रॉब्लम है, समस्या मिल बैठ के समाधान किया जा सकता है। मैं तो सबकी समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन ये इस प्रकार का राजनीतिक चक्का जाम अच्छा नहीं होता।
4: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जाँच की मांग की है ताकि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब उसके नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इसका उचित जवाब देगी।
6: कांगड़ा से संबंध रखने वाले नीरज भारती जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पे जिस तरह से आरोप लगाए हैं, किस तरह से सूटकेस में हिमाचल प्रदेश से पैसे इकट्ठे करके दिल्ली जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के कार्यालय में बंट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में इसलिए नहीं लाया कि वो इस तरह के कार्य, इस तरह की कुरीति करें, और वो आरोप भी इनके अपने लोग जो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उन पे लगा रहे हैं। जो भी आरोप है वो गंभीर है और हिमाचल की जनता आने वाले 2027 में इसका जवाब देगी।
4: लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने आज जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोकसर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार ये व्यवस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इन निर्देशों के तहत रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने टांडा मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर का सरकार द्वारा स्थानांतरण किए जाने का विरोध किया है। डॉक्टर जनकराज ने आज कहा कि एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर के तबादले का हजारों मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस तबादले को तुरंत रद्द करने की मांग की। डॉक्टर जनकराज ने हृदय रोग विभाग में और अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करने का भी सरकार से आग्रह किया। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में फिर से मौसम के बिगड़े तेवरों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य के 4 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश के मैदानी इलाकों में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को कड़क धूप का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि यहां सुबह शाम मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
7: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए किसान बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान कने बागवान भाइयों भैणों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी लेने टियाले पर पुजी आ तुहां दा लोका पाओ कने जितने भी किसान बागवान इस वेले अहां दा कार्यक्रम सुना देन उन्हां सारयां दा टियाले पर स्वागत। कने किसान साथियों अज दे कार्यक्रम च गुलाबो जी जिहड़ां से आई पुज्जे ने। गुलाबो जी मैं देखिया हा तुहां तां गदाल उगदूल चुक्या हा, क्या गल?
1: बिल्कुल कदारुआ चुक लेंदे पर पहले आराम सलाम तक कर लेंदे। देखा हाड़े जितने भी श्रोता हैं कने तो जो भी मेरी तरफ ते भी राम राम।
0: मुझे ये लगा कदारुए दिखी के मैं सोचा भाई उरे पानी जड़ा सा गुलाबों में देता होना है ना।
1: उरे पानी तो दही छड़े ना पर मैं चलिए गुड़ाई ही लगी हो।
0: अच्छा अच्छा हाँ। गुड्डी पाइया चलिया?
1: ओ गुड्डी भी पाइया कने दिखा लिपे आ साड़ा।
0: अच्छा
1: लगी हो है ओले ओले भाई तो पछता लगी नहीं होंदा।
0: हां हां तो तब बड़ी बात
1: है समझा बे आगा जड़ा सा थोड़ा थोड़ा करी लांदी ऊपर ते सीरा हपाया सी जणा।
0: अच्छा
1: कणक पाई हो सी जणा वाले सीरा बनांगी कने दिखा साले दा बर्तन होंदा कने दिखा टाइम टाइम दी सीजन दी गल होंदी है ना।
0: हां जी
1: कने दिखा कोई भी चीज है एक बारी सीजन होंदा कने दिखा मैले सीरा पाणा कने दिखा पहले ता क्या होंदा है कि भाई बड़ा मुश्किल होंदा हा बड़ी भरी गसाई पटाई पौंदी ही लेकिन हुण क्या है जे मशीना जड़ियां से चल पईयां ना।
0: आई हां जी हां जी
1: कने दिखा मैं 30 दिना दी जड़ी से कणक पाई हुई पर कणका दा पानी जड़ा से ना बदलना बड़ा जरूरी हुंदा दिना दा 2-3 बारी जड़ा से पानी बदल गया हां ता ते च से मुश्क जड़ी हुंदी से नहीं हुंदी है ना
0: जी। गुलाबो नहीं बहंदी ओ नहीं बहंदी ए कुछ ना कुछ कम्मे कार है जड़ा से लगी हुई रहंदी है ना गुलाबो जी।
1: जी बिल्कुल।
0: ता दिखा साड़ी गल्लां बातां दा कार्यक्रम च चलदियां रहणियां पर पहले जरूरी जानकारी जड़ी है ना गुलाबो जी से अपने किसान श्रोतियां तक पहुंचाई लई है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो अज जड़ी गल करनी है हां सै प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग दे बारे च जड़ा सै गलबात करनी है ना।
1: जी बिल्कुल। लोक बहु देखा ना हाड़े जड़े पुराने सियाने है ना
0: हां जी हां जी
1: सै जैविक की खेती करदे है पहले है ना।
0: हां जी हां जी।
1: ता लेकिन हुण जड़ी सै जनसंख्या दी वृद्धि दे कारण जड़ा सै कुछ एक ऐसियां चीजां हां इस्तेमाल कीतियां जिदे कारण जड़े सै हाड़े खेत खलियान जड़े सै मिट्टी जड़ी सै पूरे तरीके ने जड़ी सै बिगड़ी चुकी है ना।
0: बिल्कुल ठीक
1: है। हुण कोशिश करा करदे ने 21-22 साल च जड़ा सै किसान भी हाड़ी सरकार भी कने अहां तो हां भी कोशिश करा कर देन कि अहां कोई भी उत्पाद अपनी मिट्टी ने उगाना है ता सै जैविक तरीके ने उगाना है ना। ता इसी दौर पर जड़ा सै आज अहां गल करनी है कि जैविक खेती हाड़े ताई कितना जरूरी है ना।
0: जी गुलाबो जी गल करिए दे उद्देश्य दे बारे च ता दिखा खेती दी लागत जो जड़ा सै शून्य कर दी है ना कने जमीना जो जड़ा सै उपजाऊ बनांदी कने इंसान ना जहरीले रसायन ते भी जड़ा सै बचांदी है ना। ता कहे नहीं अहां इस खेतीबाड़ी जो अपनान है ना।
1: बिल्कुल।
0: कने प्राकृतिक खेतीबाड़ी दे चार मुख्य स्तंभ है ना जिखा सुभाष पालेकर जड़े ने ना जड़ा सा ये मॉडल दिते प्राकृतिक खेती दा है ना। इस जड़ा पहला आंदा तुहां दा सा आंदा बीज अमृत इस जड़ा सा देसी गा दे गोबर कने गोमूत्र चूना हुई है तुहां दा स्थानीय मिट्टी लेके तुहां गोला कने जड़ा सा बीजों दा उपचार करना कने इहदे कने जड़ा सा बीज जनित रोग जड़े हुंदे ते ना सुरक्षा जड़ी सा मिलदी है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: ता एक गल ता किसान साथियों तुहां गठी बन्नी लैणी पई अगर तुहां प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग करनी है ते तुहां जड़ा सा देसी गा होना बड़ी बड़ी जरूरी है ना। दूई गल ए कि इस जड़ा सा जीवामृत भी बनदा जिस तुहां पानी होई आ देसी गाय दा गोबर होई आ गोमूत्र होई आ गुड़ होई आ बेसण लई के कने मिट्टी अपने मेड़े दी मिट्टी लई के ना सह मिलाई देनी ते दा गोल बनाई देना ता ए जड़ा मिट्टी दा मित्र जीवाणु जड़े होंदे केंचुआं दी संख्या बढ़ाई देंदे कने अहां दी जमीन जड़ा सह उपजाऊ बनांदे ने है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: कने त्री गल इस च होंदी है मलचिंग कने आच्छादन दी दिखा इस खेत दी मिट्टी जो जड़ा फसलां दे जड़े अवशेष होंदे रहिंदे सुखे पत्ते होईए घाह फूस होई आ इस इहदी कने जड़ा सा नमी जड़ा सा बणी रहिंदी कने केंचुए जड़े इनसे सक्रिय होई जांदे कने खरपतवार भी जड़ा सा घट उगदी है ना।
1: जी
0: चौथी गल है कि इस चौंदा वापसा इस जड़ा सिंचाई के समय पानी हवा दा संतुलन जड़ा सा बणिया रहिंदा कने इस कने जड़ा सीधे पानी देने दे बजाय जड़ा सा मिट्टी च नमी जड़ा सा वाफ दे जरिए बणी रहिंदी जिसने पानी दी भी भारी बचत जड़ा सा हुंदी है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: प्राकृतिक खेती ने सब ते वधिया कने बाकी गल लगदी है इस च कि जेबे दा खर्चा जे जालू मैं बोलिया घटदा ता इस च ना ता तुहां यूरिया पाना डीएपी नहीं पानी कोई भी सिंथेटिक केमिकल दा उपयोग पूरी तरह वर्जित है ना।
1: बिल्कुल। देसी गाय देसी गाय दे देसी गोबर कने इसदा गोमूत्र जड़ा सा कीटनाशक दवाइयां ताई यहां इस्तेमाल करने है कने इदे इसने क्या हुंदा है कि जी हां तुहां दस्या कि जड़ा घास फूस हुंदा है मिट्टी दा साडे अवशेष हुंदे ने
0: जी
1: जे सा मिट्टी च जांदे ने ता क्या हुंदा है कि मिट्टी जड़ी है सा हवादार बनी रहंदी है नहीं ता सीमेंट हाई सेट होई जांदी जां लोहा पानी दिंदे ता है ना। ते इहदे कारण क्या हुंदा है कि बड़वार जड़ी से फसल फसला दी रुकी जांदी
0: रुकी जांदी बिल्कुल ठीक लाया कने देखा अगर अहां कीटा दा नियंत्रण करना ता प्राकृतिक घोल अहां बनाना पौणे है ना इस च तुहां जिहड़ा सै नीमास्त्र बनाई सकते ब्रह्मास्त्र बनाई सकते अग्निअस्त्र दा छिड़काव जिहड़ा सै अपने खेतरां च करी सकते है ना कने देखा इस दे तां फायदे फायदे ने जियां किसान साथियो इसी तुहां अपनांगे तां तुहाडी लागत च वी भारी कमी आउणी क्योंकि खादां कने कीटनाशकां दा जिहड़ा तुहाडा खर्च है सै घटना है ना कने पानी दी विधि ने बचत हुंदी है ना तां मल्चिंग कने वापसा तकनीक दे कारण जिहड़ा सै फसलां यो जिहड़ा सै आम खेती दे मुकाबले गुलाबो जी 60-70% ताईं जिहड़ा सै पानी दी बचत जिहड़ा सै हुंदी है कने मिट्टी दे स्वास्थ्य च वी सुधार हुंदा है जमीन की उपजाऊ शक्ति जी सै बनी रही है अहां दे मित्र कैंचू जड़ा सै वापस आते हैं है ना स्वास्थ्य ताई भी जड़ा सै सब ते वधिया कने बाकी है कहो बाकी है तो देखा तुहां बिना कैमिकल ते जड़ी उगियां फसलां इंसाना पशुआं ताई जड़ा सै उन्हां दे स्वास्थ्य ताई जड़ा सै अमृत समान है ना
1: जी बिल्कुल
0: ता कर्ज ते भी मुक्ति मिलदी कहे कि देखा किसानां दी शुद्ध आय बढ़दी कने सै कर्ज दे जाल ते भी जड़ा सै बचदे है ना
1: बिल्कुल लोका बाबू देखा एदियां एदियां जानकारियां अहां तुहानू तिकर पहुंचाने दी कोशिश करदे ने ताकि हां जो कोई भी नुकसान ना होवे कने कार्यक्रम है किसान वाणी इहदे विच अहां लोक जानकार दे सोगी सोगी एदियां महत्वपूर्ण जानकारियां इस दे सोगी ही कृषि संबंधी जानकारी बागवानी पशु पालन या फिर कृषि ने जुड़ी जड़े भी व्यवसाय हैं जी मशरूम उत्पादन हुई है मछली पालन हुई है मधुमक्खी पालन हुई है या फिर होर कोई व्यवसाय से सारी जानकारी हाड़े ट्याले ते तो जानती है कोशिश यही रहती है कि तुहां जागरूक हुई के जड़े से कम करन कने इन्हां गल्लां बातां दा तुहां फायदा लैन है ना
0: बिल्कुल गुलाबो जी तो प्राकृतिक खेती ने जुड़ी सरकारी योजना कने ट्रेनिंग दी ज्यादा जानकारी ताई तुहां जिहड़ा सै भारत सरकार दी अधिकारिक वैबसाइट नैचुरल फार्मिंग पोर्टल पर जाई के भी उत्थी जिहड़ा सै दिखी सकदे ने ना तो ए तथी गुलाबो जी जानकारी कने हुण जिहड़ा सै जानकार लगाईए ट्याले पर है ना
1: बिल्कुल
0: कने अपने किसानां दा करिए मनोरंजन है ना
1: जी
2: दिस जून मेक

0: किसान साथियों, सुनील राणा दी आवाज़ च तुहां तक पुजाया ये प्यारा देया लोक जानकार। कने गुलाबो जी, आशा करदे नहां दे किसान स्रोतें पसंद भी आया होना है ना।
1: तां
0: कार्यक्रम च गां बद्धे होए गुलाबो जी, हुण वेला उहदा भेंट वार्ता दी अंक दी जानकारी करने दा सांझी है ना।
1: तां
0: दिखा जिस च विषय जिहड़ा सै फुल्लां दी खेती बाड़ी जो कियां जिहड़ा सै फायदेमंद बनाई सकदे ने, है ना।
1: तां
0: इस पर जिहड़ा सै भेंट वार्ता दा अंक अहां अपने किसान स्रोतियां ताईं लई के आए, हुण तां देरी नहीं करदे, कने सुणांदे ने भेंट वार्ता दा अंक।
1: जी,
2: सभी सुनने वालों को सुमित की ओर से नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं डॉक्टर भव्य भार्गव, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में ये कार्यरत हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आज आपका हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और आपसे जिस विषय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करना चाहेंगे वह ये है कि फूलों की जो खेती है उसे किस तरह से हम फायदेमंद बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक लंबे अरसे से यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो आम जो लोग हैं, किसान लोग हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, क्या उनकी सोच है फूलों की खेती को लेके, कितने संजीदा हैं वो इसके बारे में और कितनी जानकारी है।
3: धन्यवाद सुमित जी मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए और किसानों के साथ वार्ता करने के लिए। जैसे फूलों की खेती की बात करूंगा तो मैं, फूलों की खेती एक बागवानी का एक ऐसा आयाम है जिसमें हम काफी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इतनी विविध जलवायु है, यहाँ पे इतनी मृदा की हमारी पास विविधताएं हैं कि हम हर प्रकार के यहाँ फूल लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी आमदनी होती है, जैसे हम कंपेयर करें जैसे फलों की खेती से या वेजिटेबल्स की खेती से, तो फूलों की खेती से काफी आमदनी हो सकती है। आप अगर हिमाचल को ऐसा परिपेक्ष में देखना चाहें भारतवर्ष के में, तो हमारे पास जितनी जलवायु है हम पूरे भारत को ऑफ सीजन फूल दे सकते। तो अगर मैं फूलों की बात करूं कि पूरे विश्व में तकरीबन $50 बिलियन का व्यवसाय है और जो हमारा भारत है वो तकरीबन इसमें 8,000 करोड़ का ही बिजनेस है। जैसे आपको पता होगा कि गाजीपुर मंडी जो दिल्ली के पास है वो सबसे बड़ी एशिया की मंडी है जहां पे फूल आते हैं और वहां से बिकते हैं। यह जो फूलों की व्यवसाय है तकरीबन 15% के दर से बढ़ रहा है, तो तकरीबन हम देखते हैं कि 2029-30 तक ये जो प्रोग्रेशन है तकरीबन 15,000 करोड़ तक चला जाए। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग फूलों को चाहते हैं, लोग हर ओकेजन पे फूल चाहते हैं।
2: शादियां हो, महत्वपूर्ण फंक्शन हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, फूलों के बिना वो पूरा नहीं होता।
3: सही बात।
2: और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, विकास के कदम उठाते जा रहे हैं, तो जाहिर है कि इस प्रकार के समारोह, इस प्रकार के उत्सव, इस प्रकार के फंक्शन जो है वो ज्यादा होते हैं और ज्यादा हमें मांग है इन फूलों की। पर क्या हमारे हिमाचल के और खासतौर पर कांगड़ा के जो किसान लोग हैं उन्हें इस बारे में जानकारी है, इस तरफ उनकी सोच है?
3: देखिए, धीरे धीरे हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हम कांगड़ा में देखें तो लोग ज्यादा गेहूं और चावल ही लगाते हैं। धीरे धीरे हम अपने संस्थान में पिछले 35 वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो हमने देखा कि हमारे फूलों की मांग कहाँ होती है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हमारे कांगड़ा में सबसे ज्यादा शक्तिपीठ है और शक्तिपीठों में आप देखेंगे कि कितने सारे फूल चढ़ते हैं और उन फूलों को कहाँ से मंगवाया जाता है। मैं बोलना चाहूंगा कि ये हमारे हिमाचल से नहीं आते, ये हमें बाहर से आयात करने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि दो तीन वर्ष पहले हमने देखा, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा ज्वालाजी मंदिर का, हमने वहां तकरीबन 35 किसानों का एक समूह बनाया, उनको बोला कि आप गेंदे की खेती करें या आप गुलाब की खेती करें जो माता को चढ़ते हैं, आपके पास यही मार्केट, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और हमने उनका हैंड होल्डिंग कराया, जो वहां पे दुकानें थी ज्वालाजी के पास। अब वो क्या हो गया कि साल में 2 बार जितने भी नवरात्रे आते हैं वो फूल जो है जो मंदिर में चढ़ते हैं वहीं के किसानों के, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि उन्होंने एक समूह बना के उन्होंने खेती ये शुरू करी। तो वैसे ही हम हिमाचल में देख सकते हैं कि कांगड़ा में, जैसे मैंने ये तो बताया आपको कि जो गेंदा और गुलाब की खेती है ये ओपन में हो सकती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम जैसे हरित गृह में हम करते हैं खेती, पॉलीहाउस में खेती करते हैं, उसमें कार्नेशन है, जरबरा है, एल्स्टोमीरिया है, लिलियम है, ये काफी अच्छी क्रॉप्स हैं जिनसे हमारे किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और इनको बाजार में भेज सकते हैं।
2: तो आपसे ये जानना चाहेंगे इस पॉइंट पर, इस मुकाम पर, कि क्या कांगड़ा का जो जलवायु है और जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है उसमें फूलों की जो गुणवत्ता है वो अच्छी रहती है, क्या यहाँ का माहौल जो है वो फूलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है?
3: जी, मैं कांगड़ा की अगर बात करूंगा तो कांगड़ा में हमें ऐसी सारी सिचुएशन मिलती हैं, सारे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, जिसमें हमारे लो एल्टीट्यूड भी हैं, जिसमें हम लो हिल्स बोलते हैं, मिड हिल्स बोलते हैं और हाई हिल्स बोलते हैं। तो हम तकरीबन हर एल्टीट्यूड पे ऐसे पौधे लगा सकते हैं। जैसे लो एल्टीट्यूड में मैंने बात की, जो हमारा कांगड़ा का निचले का इलाका है, जहाँ हम गेंदे की खेती कर सकते हैं, ग्लैडुलस की कर सकते हैं और गुलाब की जो ओपन की कल्टीवेशन है हम कर सकते हैं। जैसे मिड हिल्स में आ जाएं जिनका एल्टीट्यूड तकरीबन 1500 मीटर या 1400 मीटर है, वहां पे हम कार्नेशन की खेती कर सकते हैं। कार्नेशन में तकरीबन 500 वर्ग मीटर में भी अगर किसान हमारी खेती करते हैं तो आराम से साल में वो 5 लाख रुपए कमा सकते हैं सिर्फ 500 वर्ग मीटर की खेती से। और जैसे मैंने पॉलीहाउस में बताया, जरबरा की कर सकते हैं, लिलियम की कर सकते हैं, विकेट आपको पता चलेगा कि हम तकरीबन 15 टाइप की हम जो कट फ्लावर्स हैं वो यहां लगा सकते हैं, जिसमें ग्लैडुलस भी हो गया, जिसमें क्रेजेंथिमम हो गया, गुलदाउदी जिसे हम बोलते हैं, और एल्स्टोमीरिया हो गया। यहां का जो हमारा तापमान है तकरीबन, गर्मियों में आपको पता ही है चाहिए, 30 से 35 तक मैक्सिमम चला जाता है, उससे ज़्यादा जाता है तो बारिश हो जाती है। तो ये जो टेम्परेचर जोन है हमारा 25 to 30 एकदम अनुकूल है सभी प्रकार के फूलों के लिए। और यहाँ की जो मिट्टी है वो आपको पता ही है भौगोलिक अच्छी है और मिट्टी सपोर्ट करती है हमारे फूलों की खेती के लिए। आप अगर ओपन में करते हैं, पॉलीहाउस में करते हैं, कांगड़ा के जिले में हम तकरीबन सारी क्रॉप्स हम इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं।
2: यानी कि यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ही उपयुक्त है, मुफीद है फूलों की खेती के लिए, मगर पारंपरिक तौर पे यहाँ पे फूलों की खेती की नहीं जाती। तो उसके क्या कारण रहे हैं आपके हिसाब से? जानकारी का अभाव होना,
3: एक तो जानकारी का अभाव है, और दूसरा है जैसे हम बोलते हैं कि हमने अगर सोच भी लिया हमने करनी है खेती, तो हमें प्लांटिंग मटेरियल चाहिए होगा। प्लांटिंग मटेरियल कौन सा अच्छा प्लांटिंग मटेरियल है, कौन सी वैरायटी लगाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी बात हो जाती है जब लगा लिया हमने उसके बाद मार्केट कहाँ होगा। तो जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि किसानों को अच्छे प्लांटिंग मटेरियल के साथ एक ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है, और टाइम टू टाइम पे। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग दे दी और किसान खेतों में जाके लगा लेगा, उसको टाइम टू टाइम उसको एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि जहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका निदान कैसे हो सकता है, उसको अगर मार्केट की प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे निदान हो सकता है। तो एक ये होल प्रोसेस होता है, अगर एक इस होल प्रोसेस से अगर 5-6 महीने लग के किसानों के साथ अगर हम कार्य करेंगे तो उनको एक 6 महीने का उनको एक पता चल जाएगा कि पूरी खेती के में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके बाद वो खुद ही इसमें एक्सपर्ट होता जाएगा और दूसरे किसानों तक वो चीज़ जा सकती है।
2: तो जैसे हम बाकी खेती करते हैं उस तरह से क्या जो फूलों की खेती होती है उसमें भी कोई फसल चक्र रहता है? किस किस्म के जो खेती है यहाँ पर की जा सकती है, समय अवधि क्या रहती है?
3: जी जैसे मैं बात करूँ गेंदा की सर, तो गेंदा हमारे पास 2 सीजन हम यहाँ लगा सकते हैं। जैसे हम अगर टारगेट करें अप्रैल महीने के नवरात्रों को, तो हम उसकी जो गेंदे की प्लांटिंग है वो फरवरी में कर सकते हैं, और दूसरी जो हम क्रॉप लेना चाहते हैं वो हम अक्टूबर या नवंबर के महीने में जब नवरात्र आते हैं तब हम लग सकते हैं। तो उनकी जो हम प्लांटिंग करें वो तकरीबन जुलाई अगस्त में करें। जुलाई अगस्त में अगर हम 15-15 दिन पे भी प्लांटिंग करते हैं तो वो हमारी जो उपज है वो हमारी जो गेंदे के फूल हैं तकरीबन हमारे दशहरा, नवरात्रे, शादियाँ, क्रिसमस सीजन, न्यू ईयर सीजन वो सारे तक चलता है, और इसमें शादियां भी आ जाती हैं उस टाइम पे, बहुत शादियां होती हैं तो इसकी मांग काफ़ी हो जाती है। अगर आप गेंदे की 1 किलो की कीमत सुनेंगे पिछली बार जो किसानों को यहाँ पे जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन लगाए थे, तकरीबन 150 रुपये से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जब मार्केट में बहुत पीक डिमांड आ जाती है, वैसे ये तकरीबन 60 से 70 रुपये किलो तक बिक जाता है जो नॉर्मल सीजन है। हम किसानों को ये बोलते हैं कि आप उस टाइम पे अपनी जो फ्लावरिंग है उस टाइम पे लेके आए जब डिमांड बहुत अच्छी होती है। तकरीबन किसानों ने काफ़ी अच्छा कमाया है, तो ये बहुत कम इसमें लेबर लगती है, कम इसमें खरपतवार आते हैं, कम इसमें शस्यक्रियाएं होती हैं, तो इसमें 4 महीने में तकरीबन जो फार्मर है इस फसल चक्र को पूरा कर सकता है। और जो दूसरी क्रॉप्स हैं जैसे हम कार्नेशन की बात करें तो ये पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं, 3 साल तक एक पॉलीहाउस में चलती हैं, 3 साल बाद हमको इसको रोटेट करना पड़ता है। और जैसे ग्लैडुलस हो गई, ये एनुअल क्रॉप,
2: आपने एक बार लगा दिया तो 3 साल
3: तक आपको रख रखाव करना है और 3 साल तक वो अच्छी क्रॉप देती है। जैसे कार्नेशन भी और जरबरा भी ये 3 साल चलती है। जैसे ग्लैडुलस हो गया या गुलदाउदी हो गया, ये एनुअल क्रॉप्स हैं, इनकी एक बार साल में एक ही बार प्लांटिंग होती है। जैसे मई के महीने में हम गुलदाउदी की करते हैं, ग्लैडुलस की हम नवंबर के आसपास करते हैं, तो इनका जो पुष्पन भी आता है वो साल में एक ही बार आता है। तो ऐसे हम फसल चक्र को,
2: तो इसमें फिर क्या आप सुझाव क्या देते हैं कि ये इस खेती जो है वो मिलीजुली खेती करें या एक ही पौधे के ऊपर, एक ही फूल के ऊपर ज्यादा ध्यान दें?
3: देखिए, मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर हमारा जलवायु अनुकूल है तो हम उस हिसाब से करें। अगर हमारा हल्का ठंडा तापमान है हमारे स्थान का, तकरीबन अगर 25 से 30 जाता है तो हम कार्नेशन एकदम अच्छे से कर सकते हैं पॉलीहाउस में। और अगर जहाँ गर्मी ज़्यादा है और तराई का क्षेत्र है वहाँ पे हम गेंदे की खेती कर सकते हैं। गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, ग्लैडुलस हो गया, वहाँ पे इनकी खेती करें तो अच्छा होगा। जहाँ ठंडे तापमान है वहाँ पे कार्नेशन बेस्ट क्रॉप।
2: तो इसको अगर हम दूसरी तरह से समझना चाहें तो ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे फूलों की खेती की जा सकती है, और किस किस्म के फूलों की खेती किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में की जा सकती है आमतौर पर? हालांकि एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया बहुत बड़ा होता है, तो कैसे आप इसको समझें?
3: वैसे ही मैं जैसे एल्टीट्यूड के हिसाब से मैं बोल रहा था कि हम एल्टीट्यूड के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे हमारे लोअर डिस्ट्रिक्ट्स, लोअर एल्टीट्यूड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे ऊना हो गया या फिर हमारा कांगड़ा हो गया या सोलन का क्षेत्र हो गया, सिरमौर हो गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप हम गेंदे और गुलदाउदी की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ग्लैडुलस की खेती भी अच्छी होती है। और जैसे हम थोड़ा सा ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं जो मिड हिल जोन हैं, वहाँ पे हम कार्नेशन की खेती, जैसे मंडी का इलाका हमारा आ गया और हमारा जैसे सोलन का एरिया आ गया मिड हिल्स का, और हमारा जैसे बिलासपुर आ गया, हमीरपुर आ गया, तो यहाँ पे लोग कांगड़ा आ गया, जो कांगड़ा में हमारे पालमपुर और धर्मशाला में लोग काफी कार्नेशन की खेती करते हैं। इनसे भी ऊपर अगर आप जाएं जैसे लाहौल स्पीति का क्लाइमेट है, वहाँ पे हम क्या करवाते हैं, वहाँ पे ट्यूलिप और लिलियम की खेती होती है। वो ये होता है कि पूरा ऑफ सीजन है और लिलियम का जो कंद है, कंदीय फसलें जो है वहाँ पे हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि आलू बड़े अच्छे हैं लाहौल के, तो वैसे ही

0: पहला ट्यूलिप गार्डन पालमपुर में
1: जी
0: 2021 में माननीय राज्यपाल महोदय ने इनॉग्रेट किया था। उसके बाद इस वर्ष हमने तकरीबन ये इनॉग्रेट किया था और इस बार हमारे चीफ मिनिस्टर सर भी आए थे। उसके बाद तकरीबन 70,000 टूरिस्टों ने वहाँ विजिट किया, तो हमें इसको एज अ एग्रो टूरिज्म की तरह भी हमको देख सकते हैं कि अगर फूलों की खेती अगर हम
1: ये एक दूसरा आयाम है, आप ठीक कह रहे
0: जी
1: हैं
0: जी
1: कि
0: जी जी
1: लोग फूलों को
0: तो
1: देखने आए तो
0: देखने आए
1: उससे भी
0: उसे
1: तो
0: भी काफी
1: आमदनी
0: आमदनी
1: होती
0: हो
1: है
0: सकती
1: लोगों
0: है।
1: को।
0: हमारे प्रदेश सरकार का भी ये फोकस है कि कांगड़ा को हम एक टूरिस्ट प्लेस बनाएं, तो टूरिस्ट प्लेस बनने के लिए ये आयाम काफी अच्छा हो सकता है कि जिसमें हम एग्रो टूरिज्म को डेवलप करें ट्यूलिप गार्डन के साथ। इसमें एक खास बात यह है कि जैसे आप श्रीनगर में भी ट्यूलिप गार्डन देखेंगे, श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन हमारे ट्यूलिप गार्डन से डिफरेंट क्यों, हमने कोई कॉपी तो नहीं किया है, बट ये है कि ये जो ट्यूलिप के फूल हैं जो इसके कंद होते हैं वो हमारे स्वदेशी हैं, यानी कि हमने किसानों के द्वारा ही वो तैयार किए हुए हैं और उनको हमने किसानों से लिया है और वो हमारे पालमपुर में लगे हैं। तो यानी कि अगर ट्यूलिप की बात करूं तो मैं इसका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो सारा हमारे को हॉलैंड से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो हमने संस्थान ने क्या किया कि इनके बल्ब्स को खुद ही तैयार किया है और खुद अपना एक गार्डन बनाया है। तो ये
1: पूर्णतः
0: स्वदेशी
1: स्वदेशी है।
0: स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है ये गार्डन। तो अगर किसान बंधु ये भी देखना चाहें कि अगर एज अ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इसकी खेती को ही आप एज अ टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर सके, तो वो भी एक अच्छा आयाम
1: जब
0: हो
1: आपका
0: सकता है।
1: खेत सुंदर सा खेत हो जिसमें फूल लगे हों और साथ में कुछ आप उनके रहने का अगर इंतजाम कर सकें तो
0: जी
1: बहुत
0: जी जी
1: सारे लोग
0: बहुत
1: जो
0: सारे
1: है आकर्षित होंगे कि आइए हम फूलों में ही रहते हैं।
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: इस तरह से फूलों की खेती को हम और फायदेमंद बढ़ा सकते हैं। और आपने अपना दूरभाष नंबर अगर आप बताना चाहें अपने संस्थान का या अपना, ताकि किसान आपके संपर्क में आ सकें।
0: हाँ जी, मेरा हमारा दूरभाष नंबर है 01894,
1: 01894
0: हाँ 233 333
1: 233
0: 9
1: 233
0: 9
1: 339
0: हाँ जी
1: 233 339 ये आपका नंबर है और जो स्थानीय कोड है वो है 01894।
0: 94 जी।
1: तो डॉक्टर भव्य भार्गव साहब, आपसे बहुत अच्छा रहा मिलके बातचीत करना और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमें पूरी उम्मीद है कि किसान भाई इस जानकारी का लाभ उठाएंगे, आपके संपर्क में आएंगे और आप सब लोग मिलजुल के कांगड़ा को एक और ज़्यादा सुंदर प्रदेश बनाएंगे। आप हमारे साथ रहे डॉक्टर भव्य भार्गव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, ये भेंट वार्ता का अंक तुहें सुनाया, कने आशा करते हैं तुहां इस ते जड़ा सा लाभ लेना है ना,
1: जी
2: तो
1: बिल्कुल
2: ट्याले पर हूँ गां बदना हाँ। कने गुलाबो जी, सब्जी मंडी दे भाव बुझिए ट्याले पर, कने हाँ अपने किसान स्रोतें दसी दें है ना।
1: जी बिल्कुल
2: मंडिया च अज आलू रहा गुलाबो जी 8 ते 12 रुपए प्रति किलो, प्याज तुहां दा रहा 24 ते 25, टमाटरे की गल करिए टमाटर 18 ते 22, कने लहसुन जड़ा सा 120 ते 130, कने अदरक भी यही भा रहा, शिमला मिर्च जड़ा सा 35 ते 40, कने अरबी तुहां दा किसान साथी हो 35 ते 38, खीरे जड़ा भा मिला सा मिला 16 ते 30 रुपए, कने मटर तुहां दा मंडिया च रहे अज किसान साथी हो 52 ते 55, कने फुल गोभी तुहां दी रही अज 45 ते 50। गल की जाए बंद गोभी की, तो बंद गोभी किसान साथियों 12 ते 14, कने बैंगन तुहां दे रहे अज 25 ते 30, कद्दू रहे अज मंडिये च 12 ते 14, मूली की गल करिए किसान साथियों मूली रही तुहां दी 15 ते 20, टिंडा रहे 18 ते 20, कने पालक रहे 25 ते 30, कने हरी मिर्च की गल करिए हरी मिर्च तुहां दी रही 35 ते 40, कने धनिया तुहां दा रहा 80 ते 90, तोरी की गल करिए तोरी 25 ते 26, कने भिंडी जिहड़ी है सै 25 ते 28, घीए की गल करिए घीआ रहा किसान साथी हो 15 ते 25, कने कटहल भी आई है कने यदा भा रहा अज मंडिये च 50 ते 55। करेला किसान साथी हो अज भा मिला करेले तुहां दा 18 ते 25 रुपए प्रति किलो, फ्रास बीन की गल करिए वधिया भा मिला दा इसी हो 80 ते 100 रुपए प्रति किलो। गाजर तुहां दी किसान साथी हो 25 ते 30, कने हुण गल करिए फलां दी।
3: जी बिल्कुल लोका भाऊ, फलां दी गल करिए तां सेब जड़ा सह रहा है 120 ते 140 रुपये प्रति किलो, केला 40 ते 50 रुपये दर्जन, कने अनार रहा 120 ते 130 रुपये प्रति किलो, अनानास दी गल करिए तां 40 ते 50 रुपये, अमरूद 90 ते 100 रुपये, मौसमी दी गल करिए तां 90 ते 100 रुपये, कने पपीता रहा है 40 ते 45 रुपये प्रति किलो, खरबूजा जड़ा सह 20 ते 30 रुपये, तरबूज 10 ते 15 रुपये, कने सोगी आड़ू दी गल करिए 70 ते 75 रुपये प्रति किलो रहा है। किसान साथियों पलम जड़ा सै 140 ते 150 रुपये प्रति किलो रहा है। इस दे सोगी ही अंब जड़ा सै 70 ते 80 रुपये प्रति किलो, कने तोता अंब जड़ा सै रहा है 50 ते 55 रुपये प्रति किलो। इस दे सोगी ही दशहरी अंब जड़ा सै 50 ते 60 रुपये, कने नींबू रहा है किसान साथियों 70 ते 80 रुपये प्रति किलो कांगड़ा सब्जी मंडी दे विच, है ना।
2: जी गुलाबू जी, ये ता सब्जी मंडी दे थोक मोल भाव थे, कने मौसम दी गल करिए ता मौसम दिखा धुप जिहड़ी है सै है अली ना, दिनों दिन तापमान जिहड़ा सै बोला दे हुण जिहड़ा सै बदण आई है ना,
3: जी
2: कने
3: बिल्कुल
2: बाद कुछ एक दिन बाद दसियो भी है वर्खा।

साथियों इसी मिठे दे लोक भजन कने अहां दा टियाले दा बेला भी ओदा जाने ते पहले दस दईए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग दित्ता अंकित दिमान होरां प्रस्तुति जिहड़ी है सजतेंद्र पाल होरां दी उन अहां दुनिया दे अनुमति अच्छा जी जय हिंद।

0: श्रोताओ 6:35 हो ये ने कने हुण वेला उहदा अहां दे कार्यक्रम मौजां ग्राएं दीआं दा है ना
1: जी
0: तां लई चलदे ने अपने श्रोतायों कार्यक्रम दे पाहे है ना
1: बिल्कुल ग्राम दी सैर करने ताईं है ना जी बिल्कुल कने किसान साथियों हाड़े

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags, the Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओ, इन संदेहां ते बाद फिर ते तुहां दा जेड़ा सा कार्यक्रम च स्वागत है, है ना
2: जी? बिल्कुल।
1: तो गुलाबो जी, तुहां के नाटी च फराटियां तन लग पियो है लगाना।
2: देखा ग्राएं दी रौनक कियां लगदी है ना।
1: हां,
2: लोक बाऊ देखा फराटियां भी लाना पोनी है ना टाइम टाइम दियां।
1: बिल्कुल ठीक लाद
2: है। थकी रही हो ना? आज मैं नहीं लाई फराटी, पर लाने वाले लाई होनी है ना।
1: हां हां बिल्कुल। ता ओणा हां गल करनी है थोड़ी देर अपने पर्यावरण दी, देखा है ना
2: जी।
1: ता देखा गुलाबो जी, आहां दे पर्यटक एथी दूरे दूरे तक क्या लेना आंदे? सोदा वायथु दी ठंडा पानी, हरे भरे जंगल है ना
2: जी।
1: ता इने दिखना जेड़ा अंश है दूरे दूरे ते पर्यटक जेड़े से आंदे ने है ना। ता आज तरक्की ता होई हो ना, पर कुछ एक आहां ए जेड़े दौलत है खोई के ए नहीं खोना चाहंदे हां से दौलत है ना।
2: थोड़ी है पता नहीं हाड़े स्याने लाया था हां जो कितनी छां जड़ी से मिला कर दी हाड़े जड़े पक्षी है ना तिना जो छां मिला कर दी कने दिखा ये पता नहीं कितने साल पुराना जड़ा सा ये दरख्त जड़ा सा है ना।
1: बिल्कुल ठीक ला दे। तहां दे स्याने भी बोलदे हे हरी भरी धरती तिथु जड़ा से सुखी जिंदगी है ना
2: जी। बिल्कुल।
1: कने जे आज अहां पर्यावरण जो नहीं बचांगे तो आने वाली पीढ़ी यहां क्या दे के जाना है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो देखा आज अहां सारे मिली के संकल्प करदे ने कि अहां अपनी देव भूमि जो जड़ा सा स्वच्छ कने हरा भरा जड़ा सा बनाने च अपना योगदान जड़ा सा देना है ना। तो इस कियां करी सकते? देखा अहां दे स्याने बोलदे हे रुख बूटे साड़े प्राण, इन्हां दा करा सम्मान है ना
2: जी। बिल्कुल।
1: रुख बूटे हुण जालू धुप लगी होंदी दिन है तालू धुप दे कुथु है तूत कने कुथु है पिपल कने कुथु है बड़ है ना।
2: बिल्कुल।
1: सह तो साढ़े स्याणे लगाए तो झटपट अहां तिथि दौड़ी के चली आंदे
2: कने तिथि
1: ठंडी ठंडी छां थले जड़ा सा बेही आंदे है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो हुण अहां दा
2: भी बच्चे छां तोपनी तो अहां लंघे तो तिने छां मिलदी है ना।
1: मिलगी। हां जी हां जी।
2: कने नहीं लंघे तो नहीं मिलनी। देखा ना लोका बाऊ हाड़ी प्रकृति है ना, ये हांजो हाड़ा जड़ा सा पोषण ही नहीं करदी है, हांजो होर भी सीख भी दिंदी है, मता कुछ दे के जांदी है। हां एकांत च बेही करी सोचन था हाड़े जड़े नालू खोड़ू न ए भी हांजो सिखांदे कि हांजो लगातार निरंतर जड़ा से आगे बढ़ना जड़ा से चाहिदा है। इस तो सोगी हाड़े पहाड़ हमने दुसा दे ट्याले ते ए हांजो सिखांदे कि कोई भी हांजो कोई भी मतलब परिस्थिति हो है, ठंड है, गर्मी है, तूफान है, कुछ भी है, ता हां अपने लक्ष्य च जड़ा से अडिग जड़ा से रहना है, करना अपना लक्ष्य जड़ा से कोई भी मुसीबत होया तो घबराना नहीं है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
2: हरी प्रकृति मता कुछ हांजो सिखांदी है, कोशिश है हांजो एक किले बेही करी सोचने दी कि हाड़ी प्रकृति दिखा आपूच हाड़े जंगल है ना, ता ए आपसी इना दा मेल मिलाप है, दिखा ही लगदा कि भई इना दा संसार है ना। ता आपूच जड़ा सा मिली जुली के रहंदे ने, ए सुख दुख जड़ा सा आपूच जड़ा सा कठुई करी जड़ा सा संभाल देना ना।
1: बिल्कुल बढ़िया। कने बाकी कल गुलाबो जी तुहां गलाई कने इसी वेले अहां दी धरती माता भी पुकार करा दी कि प्लास्टिक दा जड़ा कूड़ा कचरा होता इस जो भी अहां बंद करना, ये बारे च भी अहां जड़ा सा थोड़ा गहन तक ने सोचना पौना है ना
2: जी। बिल्कुल।
1: क्योंकि दिखा प्लास्टिक जिस हिसाबे ने बड़ा करता है कचरे दे ढेर लगा देन, ता आने वाले अहां अपनी पीढ़ियां फिर क्या दे के जाना है ना।
2: बिल्कुल क्या दे के जाना। दिखा मैं ओ करदी ही ना, ता खेतां ने जड़ी खेता च हुण धान दी फसल बाणी आ, ता जड़ी कुल थी ना इच तुहां प्लास्टिक दी गल कीती, ता दिखा इतने इतने प्लास्टिक दे दिखा डब्बे बोतलां प्लास्टिक दे लिफाफे होइए बोरू होइए कुछ भी कूड़ा करकट कने जालू से फसी आंदा, ता और भी गा जड़ा से उगी आंदा, ता कुल पता ही नहीं लगा था कि ये थू कुल है।
1: अच्छा।
2: ना कने दिखा ए कुणी करना भी पक्की कुल है, तिदे विच भी अहां कूड़ा करकट डाली इंदे ता से थोड़ा दे मुश्किल हो जांदा। कोशिश है दिखा कुछ एक इलाके ऐसे रहंदे जिथू की अज भी कोली जड़ा से आंदा है ना, ता से हर महीने जड़ा से कुल अख पांदा कि भाई कुल दी साफ सफाई भी ग्रां वासी जड़े से किट्ठे होंदे, कने दिखा कुलां दी सफाई भी करदे, कने कुला जो जालू बनना आंदा पानी जड़ा से छड लाना होंदा खेतें हो तमी से अकबांदा, पर कुछ एक इलाके ऐसे जिथू कोली नहीं होंदा, ता अहां जो अप्पू ही जड़ा से इकट्ठे मिली जुली करी जड़ा से कुलां दी सफाई भी जरूरी नहीं है कि हर कोई काम जड़ा से सरकारा पर निर्भर अहां रहना है ना। ता अहां छोटे मोटे काम कठुई करी जड़ा हाड़ा युवा वर्ग है खास करी अहां बड़े तिना जो अगे जड़ा चल गए ता हाड़े जड़े बच्चे न से भी सीखदे है ना।
1: बिल्कुल ठीक ला दे गुलाबो जी। कने एक और गल अहां अपने ਟਿਆਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਗਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਤੂਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇਖ ਸੁਣ ਵੀ ਤੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ
2: ਦੇਖਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਸਹਿ ਪੇੜ ਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ
2: ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਪੇੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇੜ ਬਣੀ
1: ਛੁੱਟੀ ਪਾਈ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ
2: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੰਜੋ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਅਸੋਕੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਸੋਕ ਟਰੀ ਬੋਲਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਹ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਕਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਕੁਛ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਹਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੈ
2: ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇਖਾ ਮੰਜੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਦਾ ਮਸਟਰਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਮੰਜੋ
1: ਅੱਛਾ
2: ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪੌਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬੋ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੇ ਤਿੰਨ ਬੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਿੰਨੇ
1: ਅੱਛਾ ਤਾਂ
2: ਮੈਂ ਤਿੰਨੋ ਸਹਿ ਲਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਨਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਈ ਗੁਡਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿ ਹਾਂਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨਾ ਖਾਈ ਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਘਾਹ ਵੱਢਦੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀੜ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ ਪੇੜ ਲਾਇਆ ਨਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰ ਪਾਇਆ
2: ਜੀ।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
4: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
5: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
6: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: यदि कने श्रोताओ अहां दा कार्यक्रम इत्थे मुकदा तां जाने ते पहले दस दईए, कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग दित्ता अंकित दी मान होरां, प्रस्तुति जितेंद्र पाल सिंह होरां दी, उहनां दोनी दी अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।
8: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनिए।
9: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
10: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
9: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. President Draupadi Murmu today conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police. The awards were conferred during the defence investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kewat and Rameshwar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh along with other union ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. West Bengal has become the 36th state and union territory in the country to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The scheme provides health cover of up to 5,00,000 rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and Government of West Bengal signed a Memorandum of Understanding in New Delhi today for the implementation of the scheme in the state. The MOU was signed in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari. The Trinamool Congress TMC led by Mamata Banerjee today moved the Calcutta High Court challenging the decision of West Bengal Assembly Speaker to recognize Ritabrata Banerjee as the leader of the opposition in the Legislative Assembly. According to reports, TMC has contended that Speaker's decision to appoint Ritabrata Banerjee as leader of the opposition is contrary to established parliamentary norms and procedures. The petition is understood to seek judicial review of the Speaker's decision and recognition of the party's nominee S. Chattopadhyay for the post. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today launched the Bhavya portal to accelerate development of 100 industrial parks across the country. Addressing the gathering in New Delhi, Mr. Goyal said the portal is aimed at creating integrated industrial ecosystems with multimodal connectivity, reliable utility systems, digital governance mechanisms, worker support infrastructure, and sustainable development features.
11: To develop the industrial ecosystem and promote large-scale job creation through greater investments across the length and breadth of India, we have launched the Bhavya scheme. Bhavya will set up 100 industrial parks of different sizes. This time we are also going to be looking at earmarking more area for startups, deep tech or technology-oriented businesses, R&D and innovation-oriented businesses.
2: India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia. In a statement, the External Affairs Ministry said that these developments are a matter of utmost concern to the international community. India has called on all parties to immediately de-escalate tensions and ensure that civilians are not harmed. The ministry also appealed to conclude ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The statement comes as Israel and Iran traded fresh missile attacks, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. The Indian embassy in Iran has also advised Indian nationals to avoid any travel to Iran in view of the recent developments in the region. Akashvani is celebrating 90 years of exemplary service today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio, ushering the country into a special journey of culture, information and broadcasting to echo through generations. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Akashvani brings forth a voice that echoes through generations, carrying the nation's stories, values, aspirations to listeners across the country. Reports of Akashvani's 90th anniversary celebrations are also pouring in from several states and union territories. In cricket, India registered their biggest ever victory in Test cricket, crushing Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. After declaring their first innings at 564 for 8, India bowled Afghanistan out for 152 before lunch on day 3 and enforced the follow-on. The visitors were then dismissed for 112 in 35.5 overs, handing India a record victory inside 3 days. And that is the end of this news bulletin.
8: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है. शाम के 7:10 हुए हैं. अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम किसान सशक्तिकरण.
2: Now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants are Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator is Sonu Sood.
12: Ye Akashvani hai. Prastut hai vishesh shrinkhla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभुदत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
13: Over the past 12 years, empowering India's Andatas, agricultural policy has widened its scope beyond welfare support to focus on structural and sustainable reforms which have strengthened productivity, income security, market access, modern infrastructure and institutional resilience. Record agricultural output, smart irrigation, easier credit, stronger insurance coverage and surged agricultural exports and allied sectors have empowered the farmers like never before, moving towards a more diversified, technology-driven and farmer-centric agricultural ecosystem. To discuss the various aspects of this robust 12-year journey of farmers' empowerment, the targeted interventions at the policy level, we have with us three distinguished guests, Mr. Binod Anand, member of government's High-Powered Committee on MSP and Agricultural Reforms, and senior journalists, Mr. K.V. Prasad and Mr. Prabhudat Mishra. A warm welcome to you gentlemen on Akashvani.
14: Thank you very much.
15: Thank you. Namaskar.
13: So we start with you, Mr. Anand. You know, the kind of transformational changes that we have seen in Indian agriculture over the past 12 years, the way the agricultural production has gone up, the productivity has grown by leaps and bounds, the exports have shown very, very robust figures. Can you tell us, according to you, what are the three major areas of the agricultural ecosystem which you feel have received the maximum reforms, the most significant and the most crucial reforms in these 12 years?
14: Certainly. Many thanks for inviting me on this very visionary program we have completed these many years. You see, the thing is that the investment in agriculture and structural reforms in all the sectors, this has given a new different kind of arrangements. GVA, especially, which is called the gross value in agriculture, that's in 2014-15, when the government has started this government, it was merely 20.9 lakh crore. Around 21 lakh crore, we can say. Today, it is pumping 49 lakh crore. So it's almost 2.5 times. MSP, we have seen that whatever the previous government has done, 2.5 times of that government is already invested in MSP. There are five commandments over which the structural reform has taken place. First is how to beyond welfare points, that is adding farmers' welfare in the ministry name as per the recommendation of the Swaminathan Committee. The strengthened productivity, income security, the market access given, the kind of infrastructural reforms and institutional resilience. So over these five commandments, government has done a lot of activities. I will go one by one for them for the better understanding of what has been done. You see, in 2014, they started with a Rashtriya Gokul Mission. Thereafter, certainly there are two different ministries has been carved out. A fisheries department have been separated. But when there are Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Soil Health Card Scheme, what the government has thought about in 2016. And the most important one where we need to take a pause is a National Agriculture Market, that is ENAM Mission. So through ENAM, there is spot market is very active. And millions of farmers and thousands of businessmen, especially the Adatiyas, are registered over there and doing seamless businesses. Minimum support price, we must have seen, while in 2018, it was 0.1, 0.5 times it has gone up, whatever the recommendations were from A2 plus FL. So these are the few different kind of initiative has taken. The most important among them was the creation of Ministry of Cooperation, where all sort of Sahakar Se Samriddhi has been taken up. Three different multi-state cooperative has been created. One to create an export system, second to create organic farming ecosystem, and third, which is a very important one, to make the export market very robust. So that from the diversification to aligned activities to bioenergy and to creating additional income opportunity, a resilient and integrated agriculture system, this kind of structural reforms have given a big flip. And whatever you are watching at this moment this year, that's a mission for Atmanirbhar in pulses. So these are a few visionary steps which earlier has not been taken up. And yes, these all schemes what I am talking about is administratively quite implementable, and it is environmentally sustainable, economically viable, and most importantly, farmer-centric and very well diverse and technology-driven. So this is what in the first response I have given to you.
13: So Mr. Anand has so extensively outlined the various path-breaking changes which have taken place in these 12 years and what they really mean for the agriculture sector in a nutshell. If we come to you, Mr. Prasad, what do you think are the three most important initiatives of the government in these 12 years which really leap out, which you feel have transformed the Indian agriculture ecosystem and empowered the annadatas of our country and moved our country towards food security?
15: Sunilji, all of us do realize that agriculture is the backbone of a large section of a society. Depends almost 60% of the population is in this sector. It is own contribution, and the farmers of this country have worked hard through the ages to make India food secure. In fact, just recently I was talking to High Commissioner of African Nation, South Africa. He was mentioning in the context of the India-Africa Forum Summit, which of course could not help place, that the entire India, the kind of food basket India has, that not only it produces for its own 1.4 billion, but also exports. So he said, it's much more what the population of Africa. I mean, so they said, we're looking to countries like India, which have. So this tells you the long journey our farmers have made in this country. And in the last decade, how much of extra effort is being put in by the government across the pillars Mr. Anand mentioned in particular, because they are multi-pronged. as far as you said, what are the three takeaways? I mean, there could be many for different people, but I think some of the logistical issues that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation, so the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation, and one of the things is per drop more crop, which is talking of micro-irrigation drip. And this has been again going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000 when Mr. Atal Bihari was the Prime Minister, he sent a mission under then, I think, Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that there. I think that one of the technological-driven aspect is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about ENAM, using the technology for market access. Yes. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
16: Yes.
15: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector. Yes. And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze you know, the creation of post-harvest management structure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the large, the problems that have been affecting of this particular sector.
16: ओके मिस्टर मिश्रा आपके पास आते हैं जो मैंने अभी मिस्टर आनंद मिस्टर प्रसाद से पूछा वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी फिगर्स में आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख दो तीन इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन में
17: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था वो है एमएसपी का फिक्सेशन पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है उसमें इन्फ्लेशन कितना है उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था आज भी वही फैक्टर जरूर है लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा और 2018 से पहले आप देख लीजिए बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा सरकार को खरीदना पड़ेगा लेकिन 2018 में जब लिया आज देख लीजिए पॉसिबल है सबके सामने 8 साल हो गया सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका लेकिन आज जो देखिएगा ये खरीफ और रबी सीजन गया है इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है पहले तो 30% तक शुरुआत में थी क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है फार्मर को बेटर प्राइस मिला है उसमें कोई दो राय नहीं है कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है और मस्टर्ड का देख लीजिए अभी मस्टर्ड का सीजन है एमएसपी से ऊपर है चना का देख लीजिए चना ऊपर है व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस मार्केट प्राइस तो लगभग सारे जो रबी क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है
16: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को
17: बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है काफी अच्छी बढ़ोतरी क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया पल्सेस मिशन लॉन्च किए और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है एक रिफॉर्म जरूर है कि जिन्होंने कोशिश किए थे, जो तीन फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया, जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे कोई भी स्कीम हो।
16: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमिटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है, और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
14: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए, इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
16: जी।
14: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट थे। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया के तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
16: जी।
14: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
16: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने

0: जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं वो गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं,
1: जी
0: अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान
1: जी
0: परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका। तो
1: हाँ,
0: ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है, एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था, जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे, और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है। ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
0: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर है वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
1: जी बिल्कुल। एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन, 2.5 टाइम्स इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी, द क्वालिटी ऑल्सो, द फिशरीज, द एलाइड सेक्टर्स, दे हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड, एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है,
1: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: तो पैक्स से अपेक्स का प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज।
2: जी बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए

0: 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया, यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में, अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो
1: जी
0: एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं, तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए,
1: जी
0: यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाए, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए, और वो
1: जी
0: फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी
0: आप कुछ
1: जरूरत के
0: ऐसे
1: अनुसार
0: चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है, और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और
1: जी
0: ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए,
1: जी
0: ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे, लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओस होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओस को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी, उनको बिजनेस बढ़ाना है। और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं, और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट ऑफ जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years. Can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
2: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past two decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
1: Right.
2: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
2: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
3: Thank you.
0: Thank you very much.
2: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.
5: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर. शाम के 7:44 हुए हैं. कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन. कीजिए थोड़ा सा इंतजार.

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के मशोबरा में किया प्रदेश के पहले महिला नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पहाड़ों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण बन रहा है प्राकृतिक आपदाओं का कारण। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग। और कोकसर की ओर से रोहतांग पास जाने के लिए अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे जिम्मेदार, संवेदनशील और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नागरिक बन सकें। राज्यपाल आज शिमला में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमारी पहचान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के मशोबरा में महिलाओं के लिए प्रदेश के पहले नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में नशा, विशेषकर चिट्टे की चुनौती, केवल कानूनी व्यवस्था का विषय नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय संकट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआत से चिट्टे की चुनौती को गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने संजौली में नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया।
6: समर फेस्टिवल शिमला का आगाज हर वर्ष होता था, इस बार इस कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम को जोड़ा गया है जो चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12 हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीमें वो सम्मिलित हो रही है और इसमें चिट्टा मुक्त वॉलीबॉल जो हमारा ये आयोजन है इसके लिए आज शिमला समर फेस्टिवल से आज इसकी शुरुआत। मशोबरा में पहला डी एडिक्शन सेंटर जो हमारी लेडीज है उनके लिए खोला जा रहा है।
5: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्वतों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। रामनाथ कोविंद आज कुल्लू के घुड़दौड़ स्थित ऋषि भूमि योग आश्रम परिसर में नवस्थापित ऋषि भूमि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति और मानव का संबंध अत्यंत गहरा है और हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए इसके साथ सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना चाहिए। तीन दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन दो का सम्मेलन आज चंडीगढ़ में आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कर रहे हैं। पठानिया बीती रात ही इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। उनके साथ विधायक संजय रतन, केवल सिंह पठानिया, नीरज नैयर, राकेश जम्वाल, रीना कश्यप और कमलेश ठाकुर भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कल 9 जून को सम्मेलन में विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने में जागरूक नागरिक, समाज और युवा विधायकों की भूमिका विषय पर अपना संबोधन देंगे। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं में और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने टांडा मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर का सरकार द्वारा स्थानांतरण किए जाने का विरोध किया है। डॉक्टर जनकराज ने आज कहा कि एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर के तबादले का हजारों मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस तबादले को तुरंत रद्द करने की मांग की। डॉक्टर जनकराज ने हृदय रोग विभाग में और अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करने का भी सरकार से आग्रह किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि माता पिता का त्याग व समर्पण ही बच्चों की सफलता की असली नींव है। प्रोफेसर सिकंदर कुमार आज सरस्वती विद्या मंदिर शिमला द्वारा मेधावी और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य किताबी ज्ञान या डिग्रियां हासिल करना नहीं, बल्कि एक आदर्श चरित्र का निर्माण करना है। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में चाहे सफलता के किसी भी सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन अपने गुरुजनों का स्थान हमेशा सर्वोपरि रखें और उनका सम्मान करें। उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती विवाद पर पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में कहा कि अनुशासन समिति की बैठक में नीरज भारती घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी। विनोद जिंटा ने यह भी कहा कि भविष्य में यदि कोई नेता या कार्यकर्ता इस तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने नीरज भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 5-6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप भारद्वाज ने नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीप भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब उसके नेता आपसी गुटबाजी में उलझकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इसका उचित जवाब देगी।
7: कांगड़ा से संबंध रखने वाले नीरज भारती जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पे जिस तरह से आरोप लगाए हैं, किस तरह से सूट केस में हिमाचल प्रदेश से पैसे इकट्ठे करके दिल्ली जा रहे हैं या मुख्यमंत्री के कार्यालय में बंट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में इसलिए नहीं लाया कि वो इस तरह के कार्य, इस तरह की कुरीति करें, और वो आरोप भी इनके अपने लोग जो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उन पे लगा रहे हैं। जो भी आरोप है वो गंभीर है और हिमाचल की जनता आने वाले 2027 में इसका जवाब देगी।
5: लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोक्सर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसडीएम कुनिका एकर्ज ने कहा कि ये निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इन निर्देशों के तहत रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है।
8: यही अनुरोध रहेगा समस्त टूरिस्ट जो विजिट कर रहे हैं रोहतांग पास के लिए फ्रॉम कोक्सर साइड कि आप लोग ऑनलाइन पासेस के लिए अप्लाई कर लें rohtangpermits.hp.gov.in पे, अन्यथा पुलिस बैरियर पे आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा।
5: अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता अब से थोड़ी देर बाद करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी और अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल जनसेवा, पारदर्शी प्रशासन और समावेशी विकास की एक सशक्त मिसाल है। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस अवधि में देश ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व प्रगति की है और आम नागरिकों का शासन व्यवस्था पर विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जवाबदेही शासन की नई संस्कृति स्थापित की है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिला भाजपा द्वारा आयोजित मोदी सरकार के 12 साल विकास के नाम कार्यक्रम को भी संबोधित किया। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में फिर से मौसम के बिगड़े तेवरों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य के 4 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश के मैदानी इलाकों में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को कड़क धूप का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां सुबह शाम मौसम सुहावना बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना आवश्यक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के मशोबरा में किया प्रदेश के पहले महिला नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पहाड़ों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण बन रहा है प्राकृतिक आपदाओं का कारण। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग। और कोक्सर की ओर से रोहतांग पास जाने के लिए अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
9: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और एफएम शिमला पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी शिमला है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
3: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया। हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था मुझे याद है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
2: देखिए 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना संचार शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें हमारे यहाँ हर तीन कोस पे एक बोली बदल जाती है और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है। इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी, और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो हैं उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स हैं वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है। आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
3: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरपल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र हैं और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है या पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी। माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
4: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे। तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर्स क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा। मनोरंजन का साथ, महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार, जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
3: रामानुज प्रसाद सिंह,
4: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने एफएम रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
3: अच्छा।
4: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा सर हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सेटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलो अप क्या है? तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है, बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
3: देखिए, जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो?
5: देखिए, 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
3: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
5: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहाँ महात्मा गांधी आए थे। इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई, और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। 3 तरह के ब्रॉडकास्टर से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है, और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न कटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
3: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा, इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया, जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया।

0: अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
1: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन, उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पर डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं, तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
0: बच्चन जी हो, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा हो,
1: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे, तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
0: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया, वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से, अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैट्रिक रिकॉर्ड हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था, लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से बात करते थे, लोगों से भी बात करते हैं। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना
0: जी कीजिए,
2: क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे
0: जी।
2: और उनके समाचारों को हम इकट्ठा

0: काम करते थे और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करेस्पोंडेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्यता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा

0: प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं। मैं विद्यालय स्तर परिवारी बारे को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय तंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे। लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है। ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पर जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है। और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
1: और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
5: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद रेडियो वाला ही है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाले आपका नाम है।
5: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए।
4: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
6: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
6: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
4: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर के चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाने से कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कहीं पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे, वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा। तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
3: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामायिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: तो, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, मीडिया क्लिपिंग आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासकर समाचारों के प्रति,
3: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार है वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है,
1: बिल्कुल,
3: और जितने लोग भी कार से सफर
1: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो रेडियो,
3: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं, तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
1: बिल्कुल।
7: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
7: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
8: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
9: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, किसी को कोई पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड
4: हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
4: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का अभी मैंने कुछ दो तीन पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 बरसों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
10: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
11: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
12: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात के 8:45 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
13: लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
14: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
13: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
15: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
13: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
16: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
13: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,500,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक कि लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
7: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
5: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
8: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: World Yogasan Championships with 114 medals, including 102 gold today. Japan came second with 11 medals, including 3 golds, while Argentina took third, led by Nabila Baraza's 2 golds and 3 silvers. Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. Sensex shed 719 points to close at 73,524. NSE Nifty slipped 244 points to settle at 23,123. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents gallantry awards to armed forces and police personnel at defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Vishakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on Air app. That's all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात की 9:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। एक ही कलाकार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत और रात के सुरीले सफर में आप सबका स्वागत है। हाजिर हैं हम आज का ये कार्यक्रम लेकर। और श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे संगीतकार रहे हैं जिन्होंने शोर शराबे से दूर रहकर अपनी धुनों से एक अलग पहचान बनाई है। उनकी रचनाओं में मिट्टी की खुशबू थी, लोक संगीत की आत्मा थी और भारतीयता का सुंदर रंग था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही संवेदनशील और प्रभावशाली संगीतकार के बारे में जिनकी धुनों ने समानांतर सिनेमा, सामाजिक फिल्मों और क्षेत्रीय फिल्मों को एक अलग संगीतात्मक पहचान दी। हम बात कर रहे हैं संगीतकार जेपी कौशिक की।

श्रोताओ, जेपी कौशिक ने बहुत ही कम फिल्मों के लिए संगीत दिया और अपने संगीत से अपनी एक बेहतर पहचान बनाई।

बम्बई रात की बाहों में इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले की आवाज में ये गीत है, इसे संगीतबद्ध किया संगीतकार जेपी कौशिक ने।

दिख जा। गैरों से घर दिल मिलता है।

0: संगीतकार जेपी कौशिक द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ गीत आप सुन रहे हैं आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में। श्रोताओं, जेपी कौशिक हिंदी फिल्म जगत के उन संगीतकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने व्यावसायिक चमक दमक से अलग हटकर सार्थक सिनेमा को अपनी धुनों से सजाया। उन्होंने हिंदी के साथ साथ हरियाणवी, राजस्थानी और गुजराती फिल्मों में भी संगीत दिया। उनका नाम विशेष रूप से फिल्मकार के ए अब्बास की फिल्मों से जुड़ा रहता है। उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और सरलता का अनूठा मेल देखने को मिलता है। दोस्तों, जेपी कौशिक की चर्चा हो और साथ हिंदुस्तानी फिल्म का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वही फिल्म थी जिससे महानायक अमिताभ बच्चन ने हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। फिल्म का निर्देशन के ए अब्बास ने किया और संगीत जेपी कौशिक ने दिया। कार्यक्रम में श्रोताओं, जेपी कौशिक द्वारा संगीतबद्ध किया एक और गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी। आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
3: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आकाशवाणी धर्मशाला के साथ श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से। एक ही कलाकार कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं और संगीतकार जेपी कौशिक की फिल्मों से कुछ गीत यानी उनके द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। जेपी कौशिक ने जिन प्रमुख हिंदी फिल्मों में संगीत दिया उनमें शामिल है शहर और सपना, हमारा घर, आसमान महल, बम्बई रात की बाहों में, साथ हिंदुस्तानी बस्ती और बाजार, धमाका, सिस्टर और सांची। जेपी कौशिक की धुनों में एक अलग ही अपनापन था। वे गीतों को सिर्फ संगीत नहीं देते थे बल्कि भावनाओं को सुरों में पिरो देते थे। आइए अब सुनते हैं उनकी संगीतबद्ध एक और खूबसूरत प्रस्तुति फिल्म सिस्टर से।

श्रोताओं, संगीतकार जेपी कौशिक ने कई हरियाणवी फिल्मों जैसे चंद्रावल, पनघट, लंबरदार, धन पराया आदि में भी संगीत देकर क्षेत्रीय संगीत को पहचान दी। जेपी कौशिक उन संगीतकारों में रहे जिन्होंने ये साबित किया कि मधुर संगीत के लिए बड़े

सांझी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, संगीतकार जेपी कौशिक का संगीतबद्ध किया, दिलराज कौर का गाया। आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में श्रोताओं हमने बात की, संगीतकार जेपी कौशिक द्वारा संगीतबद्ध किए फिल्मों के गीत सुनवाए, उनके जीवन के बारे में हमने बात साझा की। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और कलाकार के संगीत सफर के साथ। तब तक बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर अब लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। पहाड़ों की इस गूंज भरे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं ये लोकगीत जिसे आवाज़ दी है निम्मो चौधरी ने।

निम्मो चौधरी का ये गाया लोकगीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, रात का ये वक्त पहाड़ों की ढलानों पर धीरे धीरे सन्नाटा उतर चुका है। कहीं दूर किसी गांव की टिमटिमाती रोशनी, देवदार के पेड़ों से गुजरती ठंडी हवा और वादियों में तैरती लोक संगीत की ये मधुर गूंज, ऐसा लगता है मानो पूरा हिमाचल अपनी लोक धुनों के साथ कोई कहानी कह रहा हो। इन्हीं सुरों, इन्हीं रंगों और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ इस समय प्रस्तुत कर रहे हैं हम कार्यक्रम पहाड़ों गूंज पहाड़ों की। और इस कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपके रेडियो सेट्स पर गूंजेगा अब तिलक राज की आवाज में।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप जुड़े हुए हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ के माध्यम से और हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों के इस समय आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हिमाचल की पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरत वादियों से नहीं बल्कि यहाँ के लोक जीवन से भी है। पहाड़ों में रिश्तों की गर्माहट, मेलों की रौनक और लोकगीतों की मिठास आज भी उसी तरह जीवंत है जिस तरह सालों पहले हुआ करती थी। अब सुनिए करनैल राणा को कार्यक्रम में आगे।

करनैल राणा को अभी आपने सुना इस लोकगीत में। दिनभर की भागदौड़ के बाद जब पहाड़ों में रात गहराने लगती है तो लोक धुनों का ये जादू और भी गहरा महसूस होने लगता है और लोक संगीत का यही जादू बिखेर रहे हैं हम इस समय गूंज पहाड़ों के कार्यक्रम में। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला लोकगीत इसे गाया है गुलशन पाल ने।

हिमाचल की खूबसूरती को बयां करता ये लोकगीत अभी आपने सुना गुलशन पाल का गाया। लोकगीत केवल मनोरंजन नहीं होते, ये पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों, भावनाओं और संस्कारों को भी संजो कर रखते हैं। यही कारण है कि समय कितना भी बदल जाए, लोक संगीत की मिठास कभी भी कम नहीं होती। हर त्यौहार हर मौसम पर लोकगीत बने हैं और सुने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। ऐसा ही एक लोकगीत आपके रेडियो सेट्स पर।

पिंकू देवी की आवाज में ये लोकगीत अभी आपने सुना, गूंज पहाड़ों की। हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम, इसका आनंद इस समय आप ले रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, आधुनिकता के इस दौर में भी हिमाचली लोक संगीत अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। नई पीढ़ी भी इन गीतों को नए अंदाज में प्रस्तुत कर रही है, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत और भी मजबूत हो रही है। इसी तरह जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और लुत्फ उठाते रहिए हमारे इस कार्यक्रम का। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ये लोकगीत जिसे गाया है ऋषि कुमार ने।

0: ये था आज का हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। आप सुनिए कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत। सितारों से सजी इस रात की रवानी के साथ, कुछ अनकही बातों और अनसुनी एक कहानी के साथ, संगीत की महफिल फिर सज चुकी है दोस्तों, आपकी पसंद और हमारी मेजबानी के साथ। फिल्मी गीतों इस सफर में आपका स्वागत है और सजीव फोनिन ये कार्यक्रम यानी लाइव फोनिन ये प्रोग्राम रहता है और फोन के माध्यम से आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं और कुछ चुनिंदा फिल्में हम लेकर आते हैं। उन फिल्मों में से किसी भी फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आप कर सकते हैं। फोन नंबर नोट करें 0182224391, 0182222491 ये स्टूडियोज का नंबर। और जो फिल्में आज इस वक्त हमारे पास हैं वो फिल्में हैं बेताब, चांदनी, धर्मात्मा, ढाई अक्षर प्रेम के, दिल है तुम्हारा, हाँ मैंने भी प्यार किया, हम है राही प्यार की, होगी प्यार की जीत और हीरो। इन फिल्मों में से किसी भी फिल्म के गीत के लिए फरमाइश कीजिए। और फरमाइश करने के लिए आपको क्या करना है? जी हाँ, डायल करना है हमारे स्टूडियोज का नंबर 0189222431 और इस नंबर के माध्यम से बात कीजिए हमसे। हेलो हेलो जी, नमस्ते, नाम बताइए। नाम एक बार फिर से बताएंगे जी। किशोरी लाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: पंचरुकी
0: जी, पंचरुकी से। फरमाइश बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे? फिल्मों के नाम सुने आपने?
1: बेताब।
0: बेताब फिल्म का गीत, कोई खास फरमाइश है या कोई भी गीत सुना दें? जी, आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपने कॉल किया, कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया।

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी, नमस्ते जी, परिचय दें अपना।
1: जगदीश कंबोजिया जी पंडोर से।
0: जी जगदीश जी, कैसे हैं
1: अच्छे हैं जी।
0: जी? बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं
1: कौन कौन सी फिल्में
0: जी? इस वक्त हमारे पास है चांदनी, धर्मात्मा, ढाई अक्षर प्यार के, दिल है तुम्हारा। जी चांदनी फिल्म का।
1: हाँ जी
0: जी, कोई भी गीत सुनवा दें।
1: कोई सा सुना दो।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने कॉल किया, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपको आपकी पसंद का गीत यानी आपकी पसंद की फिल्म में से गीत सुनवा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए।

0: श्रोताओं, महफिल अभी सजी है और फोन लाइन भी खुली है, और अगर इन फिल्मों में से किसी फिल्म का गीत है आपकी पसंद तो हमें कॉल कीजिए और इस महफिल का हिस्सा बनिए। 01892 4922 4391 स्टूडियोज का नंबर। हेलो,
1: व्हाट योर कॉल ऑन
0: जी। श्रोता हमसे जुड़ने की कोशिश में होते हैं और कई बार फोन कॉल जो है होल्ड पर चली जाती हैं।

0: हेलो
1: हेलो जी मैडम जी
0: जी नमस्ते जी, पसंद आपके गीत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नाम बताएं अपना।
1: सुखविंदर
0: है जी। सुखविंदर जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पंजाब से।
0: जी पंजाब से बात हो रही है। खाना पीना हो गया?
1: ना खा रहे हैं।
0: जी चलिए, कार्यक्रम सुन रहे हैं। फिल्मों के नाम सुने आपने?
1: नहीं मैम, सुने नहीं।
0: जी फिल्में हैं इस वक्त हमारे पास, धर्मात्मा, ढाई अक्षर प्रेम के, दिल है तुम्हारा, हीरो, हाँ मैंने भी प्यार किया, हम है राही प्यार की, होगी प्यार की जीत।
1: हीरो के लिए नहीं कि पुरानी?
0: जी हीरो पुरानी फिल्म है ये।
1: जी
0: कौन सा गीत सुनेंगे इस फिल्म का? जी कोई भी गीत आपको इस फिल्म का सुना रहे हैं। और कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।

मोहब्बत में जितना सुकून है, मिलन में जितना सुकून है, जुदाई भी उतनी ही गहरी है। और इसी एहसास को अपनी अनोखी आवाज से अमर कर दिया रेशमा जी ने इस गीत के साथ।

संगीत का सफर जारी है और इस सफर के अगले हमारे हम सफर शायद आप हों। फोन कीजिए और अपनी पसंद का गीत सुनिए। जो फिल्में आज हमारे पास इस वक्त है वो फिल्में

0: है धर्मात्मा ढाई अक्षर प्रेम के, दिल है तुम्हारा हाँ मैंने भी प्यार किया, होगी प्यार की जीत और हम है राही प्यार की। बात करें अगले कॉलर से। हेलो हेलो जी, फ़ोन कॉल कटा नहीं, शायद फ़ोन मिलाकर नींद में चले गए हमारे श्रोता, कई बार इंतज़ार ज़्यादा हो जाता है। हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्ते जी,
1: पूछना चाहता हूँ कि मधुर आवाज़ आपके 10 बजे कौन किसकी सुनाई दे रही है?
0: जी मैं नीलम बात कर रही हूँ।
1: नीलम जी नमस्कार
0: जी। नमस्ते जी, अपना परिचय दें सुनने वालों को। हाँ जी
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर तहसील मुकेरिया के गांव मेहतापुर से महिंदर सिंह राणा।
0: जी राणा जी, कार्यक्रम में स्वागत है, किस फिल्म का गीत आपको सुनवाया जाए?
1: धर्मात्मा फिल्म का सुना दीजिए, वो फिरोज खा की है ना?
0: जी जी जी,
1: उसके में मोहम्मद रफी की आवाज में शायद कव्वाली के रूप में होगा गाना
0: जी। कोशिश
1: मेरे को याद नहीं
0: जी, कोशिश करते हैं आपकी।
1: सबसे पहले तो मैं आप सभी को आकाशवाणी के जो 90 वर्ष होने के उसकी सभी को दिल से गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ
0: जी। आपको भी और सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की शुभकामनाएं हमारी ओर से, और आप जैसे श्रोताओं का साथ है तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं और कोशिश करते हैं।
1: देखिए जी, देखिए जो कुछ भी सीखा है हमने वो आकाशवाणी से ही सीखा है
0: जी।
1: आकाशवाणी में हम सभी वर्ग के लोगों के लिए जितना भी मनोरंजन भी होता है और जितनी भी शिक्षा की बातें होते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, आकाशवाणी के जरिए ही होती हैं।
0: जी,
1: जो श्रोता कर फोन करते हैं उनके विचारों को सुनने के बाद ही हम अपने उसके पता चलता है कि दूसरे मतलब प्रांत में क्या उनका रहन सहन है, क्या उनकी संस्कृति है
0: जी, बिल्कुल,
1: और कैसी सभ्यता है। तो इसीलिए हमको भी जागृत होना पड़ता है
0: जी। बिल्कुल सही कहा आपने, आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिससे एक दूसरे के साथ हम जुड़ते हैं और इस तरह से ही हमारा प्यार बढ़ता है। यही प्यार आप बनाए रखें और सभी श्रोता भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आपको धर्मात्मा फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं और उम्मीद करेंगे आपको ये गीत पसंद आए।
1: ठीक है नीलम जी, जो भी आप सुना देंगे तो बहुत अच्छा
0: जी।

0: जी हाँ बिल्कुल, बहुत खूब और बहुत प्यारे श्रोता हैं हमारे, और अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमसे बात करते हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला, और आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम गीत हमारे पसंद हमारी गीत आपकी श्रोताओं। और इस कार्यक्रम में अब हम आगे अगली फ़ोन कॉल लें, उससे पहले हम श्रोताओं से कुछ बात करना चाहेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के साथ आप जुड़े हुए हैं तो ये साथ हमारा आगे चलने के लिए हमें और प्रेरणा देता है। और जब बात होती है सजीव फ़ोन इन कार्यक्रमों यानी लाइव फोन इन प्रोग्राम में, उसमें आपका साथ बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप फोन करेंगे, हमसे बात करेंगे, अपनी फरमाइश बताएंगे, तभी ये कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। अगले कॉलर से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते जी, नाम बताएं।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मुझे गाना आकाशवाणी के ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आकाशवाणी 90 वर्ष हो चुकी है
0: जी,
1: लग रहा है।
0: जी सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, और सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं हमारी ओर से भी। बहुत बुलंद आवाज में आपने बात शुरू की। बताइए, हमारे पास जो फिल्में हैं उन फिल्मों में से किस फिल्म का गीत आप सुनेंगे? फिल्में हैं ढाई अक्षर प्रेम के, दिल है तुम्हारा, हाँ मैंने भी प्यार किया, होगी प्यार की जीत, और हम है राही प्यार के।
1: हम है राही प्यार के, वो मेरी नींद मेरा चेहरे में लौटा दे।
0: जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं कार्यक्रम में। आपने
1: मैं ये कहना चाहता हूँ, गर्मी का मौसम चल रहा है
0: जी,
1: तो गर्मी में जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खीर और जैसे जे इनका मौसमी फल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा ज्यादा पानी पीना चाहिए, पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए, कि पशु पौए हैं तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी बांध आते हैं तो उनका ख्याल रखना चाह रहे, पानी तो टाइम से देना चाहिए गर्मी के मौसम, और ज्यादा ज्यादा पानी ज्यादा पीना चाहिए, और वृक्ष लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। और
0: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने सुनने वालों को दिया है। और पेड़ हम काटते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो काटने भी पड़ते हैं, लेकिन वृक्षारोपण हम करें समय समय पर तो प्रकृति का संतुलन जो है वो बना रहता है।
1: क्योंकि मुझे आकाशवाणी ये भी सिखाती है कि आकाशवाणी इसी चक्र में इसी माध्यम से आकाशवाणी 90 वर्ष आज दिन 8 तारीख को, तो बहुत अच्छा लगता है। आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो आकाशवाणी की ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आकाशवाणी मुझे ये भी सिखाती है, क्योंकि आकाशवाणी सिखाती है वृक्ष लगाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, और पानी रखना चाहिए, तो आकाशवाणी ने मुझे सब कुछ दिया है। और आकाशवाणी नहीं होती तो उतना ज्ञान भी नहीं होता, और आकाशवाणी सब कुछ बात भी करना सिखाया है, सब कुछ सिखाया आकाशवाणी ने।
0: जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखते हैं श्रोता भी सीखते हैं, और साथ साथ हम भी श्रोताओं से बहुत कुछ सीखते हैं। कार्यक्रम में आपने कॉल किया, कॉल के लिए शुक्रिया।
1: मैडम जी, कहना चाहता हूँ, आकाशवाणी सटीक जानकारी देती है, कोई फ्रॉड जानकारी नहीं मिलती है उसके, सटीक जानकारी मिलती है
0: जी,
1: कोई फ्रॉड वाली जानकारी नहीं।
0: जी सराहना के लिए शुक्रिया। अपनी पसंद का गीत सुनिए, आज की कॉल के लिए शुक्रिया जी, आपका
1: धन्यवाद।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम इस समय आप सुन रहे हैं पसंद आपकी गीत हमारे। ये कार्यक्रम है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने आकाशवाणी धर्मशाला के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, और आप भी इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं। 01892224391 ये स्टूडियोज का नंबर है। समय 10:32:11 और अब जो फिल्में हमारे पास हैं उन फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुने। बैराग, दो रास्ते, एक फूल दो माली, फर्ज, गीता मेरा नाम, हमराज, नीला आकाश, राजा और रंग, सच्चा झूठा, संगम। ये अब हमारे पास फिल्में हैं। इन फिल्मों में से किसी भी फिल्म के गीत के लिए श्रोता फरमाइश कर सकते हैं 01892224391 के माध्यम से। आप हमसे जुड़े। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत।
1: मैं ज्योत्सना पठानिया पठानकोट से। मैं सारिका कपूर की आवाज में हाँ मैंने भी प्यार
0: जी बिल्कुल जी हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। बताइए ज्योत्सना जी, खाना पीना हो गया?
1: हाँ जी, हाँ जी, आपकी वेट कर रहे थे कि कब आप शुरू करें तो हम सुने।
0: जी बहुत अच्छा, ऐसे ही अच्छा लगता है हमें, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं और समय समय पर कॉल भी करते हैं, हौसला अफजाई भी आप करते हैं।
1: हम सारे इतने कॉल करते हैं फॉर्मूल की तरह, ये आपकी लाइनें सारी बंद रहती हैं।
0: आपको आपका फोन नहीं लगा क्या?
1: लग गया, मेरा लग गया, लेकिन अभी तक आधे घंटे से ट्राई कर रही थी तो बंद आ रही थी।
0: जी बिल्कुल, रात का समय है, लोग फ्री होते हैं तो सब कोशिश यही करते हैं कि फोन मिले और बात हो जाए।
1: हाँ जी,
0: आपको इस फिल्म का हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनवा रहे हैं। आपने कार्यक्रम में कॉल किया, कॉल के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू

हाँ, मैंने भी प्यार किया फिल्म का श्रोताओं ये गीत हम सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन इस गीत में आवाज़ें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक की, और हमारी जो श्रोता है उन्होंने फरमाइश की है सारिका कपूर का गाया गीत सुनने के लिए, तो उन्हीं का गाया गीत उन्हीं को सुनवा रहे हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, हमारे श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम में शिरकत करना हमारे लिए जमीन पर चांद सितारों के आने से कम नहीं। ये थी फरमाइश ज्योत्सना पठानिया जी की। अब बारी हो सकती है आपकी भी, मिलाइए 01892224391 ये नंबर, हमसे बात कीजिए। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार जी।
0: जी अपना परिचय दीजिए।
1: जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील ठाठरी गांव कंठी से आपका छोटा भाई पुष्कनाथ शर्मा बात कर रहा हूँ। दीदी जी।
0: जी पुष्कनाथ जी, बताइए कौन सी फिल्म से आपको गीत सुनवाया जाए आज?
1: दीदी जी आपके पास कौन कौन सी पुरानी फिल्मों में?
0: फिल्में हैं बैराग, दो रास्ते, एक फूल दो माली, फर्ज, गीता मेरा नाम, हमराज, और भी फिल्में हैं।
1: एक फूल दो माली फिल्म का सुनाओ।
0: जी एक फूल दो माली फिल्म से आपको गीत सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम में आपने कॉल किया, कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपने पसंद का गीत सुनिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय माता दी।
0: जय माता दी।

0: बैराग दो रास्ते, फर्ज गीता मेरा नाम, हमराज नीला आकाश, राजा और रंक सच्चा झूठा, संगम, इन फिल्मों में से कोई ऐसा गीत है जो आपको इस वक्त याद आ रहा है और उस गीत को सुनने का ख्याल आपके मन में बार बार आ रहा है तो फिर इंतज़ार किस बात का। 01892224391 ये नंबर मिलाइए और हम तक आइए, हमसे बात कीजिए और अपनी फरमाइश का गीत सुनिए। हेलो जी, 01892224391 यानी 01892224391 ये है धर्मशाला स्टूडियोज का नंबर। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी, कार्यक्रम में स्वागत है, पसंद आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में स्वागत।
1: हाँ जी नमस्कार जी, मैं डाटा से बात, तिलक राज नाम मेरा
0: जी। तिलक राज जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: आप अपनी मर्जी फरमाइश सुना दो कोई अच्छी सी।
0: जी आपको अपनी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको ये गीत पसंद आएगा और आपके रेडियो सेट तक हम पहुंचा रहे हैं अपनी पसंद का ये गीत, उम्मीद है आप इसे पसंद करें और साथ साथ गुनगुनाएं।

0: नीला आकाश फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी आशा भोसले की युगल स्वरों में। आइए बात करें अगले कॉलर से। हेलो
1: नमस्कार बहना
0: जी। नमस्ते भैया जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी।
0: जी सुरेश जी बताइए कौन सी फिल्म का गीत आपको सुनवाया जाए?
1: मुझे बता दें फिल्में जी, मैं तो
0: जी फिल्में हैं बैराग दो रास्ते फर्ज गीता मेरा
1: बैराग का ही सुना रहे हैं जी।
0: जी
1: बैराग शहर में
0: जी सारे शहर में
1: आप जी जी
0: जी बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। कॉल किया आपने कार्यक्रम में, आपका बेहद शुक्रिया। आपने फरमाइश का गीत सुनिए
1: जी। नमस्कार जी
0: जी जी सारे शहर में तो क्या सारी दुनिया में हमारे श्रोताओं सा कोई भी नहीं है।

श्रोताओ, आपकी आवाज़, आपकी पसंद दोनों का इंतजार है हमें, और उसके लिए आपको उठाना होगा फोन और मिलाना होगा स्टूडियोज का नंबर 01892224391।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: जी नमस्ते
0: जी, नाम बताएं अपना।
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं।
0: जी कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको, कार्यक्रम में कॉल किया है।
1: कौन कौन सी फिल्में हैं?
0: संगम, सच्चा झूठा, राजा और रंक, हमराज, फर्ज, दो रास्ते।
1: राजा का सुनवा देना।
0: जी राजा और रंक का।
1: अच्छा राजा है का राजा रंग है?
0: जी राजा और रंक फिल्म है।
1: राजा और रंग। अच्छा राजा और रंग का सुनवा देना।
0: जी कॉल के लिए शुक्रिया, आपको गीत सुनवा रहे हैं। इस गीत के बाद एकदम से यूं ही बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्ते जी, कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हैं आप, सबसे अंत में आपकी कॉल लगी है। जल्दी से बता दीजिए आपकी फरमाइश, पहले नाम बता दें।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से
0: जी।
1: और आप कोई भी गाना सुना दो और आपको पूरी टीम को आकाशवाणी 90 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा है।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की राहें कैसी भी हो, मुश्किल हो, आसान हो, अपनों का साथ अगर मिल जाए तो सफर खूबसूरत बन जाता है। और आज के इस सफर को बेहद खूबसूरत बनाया हमारे श्रोताओं ने अपने साथ के साथ।

0: सभी श्रोताओं का कॉल के लिए शुक्रिया, और जिन श्रोताओं की कॉल आज नहीं मिली वो अगले कार्यक्रम में हमसे बात करने की कोशिश करें। महफिलें खत्म नहीं होती, बस अगली मुलाकात तक ठहर जाती हैं। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे, फिर आपसे बातें होंगी और फिर आपकी पसंद के गीतों के साथ एक और रात महकाएंगे। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम के साथ, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और इस कार्यक्रम को आपके रेडियो सेट तक पहुंचाने में सहयोग दिया तकनीकी विपिन कुमार ने। अब आकाशवाणी दिल्ली से
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।